ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ਪਸ਼ੂ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸਿਮਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।

सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ते ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। अॼु शुक्र जो ॾींहुं आहे ऐं महीने जी चौथी तारीख़ आहे। हिन वक़्तु भारत जा सुबुह जा 6:30 थी चुका आहिनि। असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीति आहे। सभ खां वल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तफ़सीलो पेश कयो वेंदो। 6:40 ते तव्हां गज़ल ऐं गीत जो प्रोग्राम ॿुधंदा। तंहिंखां पोइ प्रोग्राम जे आख़िर में तव्हां ख़ासि ख़ासि ख़बरूं पेश कयूं वेंदियूं। इहे त हुई असांजे प्रोग्राम जी तस्वीर। हींअर अचो त भगत कंवर राम साहिब जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

پرانے تفسیر۔ भारत सरकार ने जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR पर भारत जी लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी एंड लोकल करेंसी इशर रेटिंग में एक दर्जो तरक्की करे BBB+ का A- करंट जे फैसले जो स्वागत कयो है गडु ही स्थिर आउटलुक कायम रखियो वियो है JCR भारत जी कंट्री सीलिंग में भी एक दर्जो तरक्की करे ए कई है ही रेटिंग अपग्रेड भारत जी मजबूत माली वाधारो वाधारे जी बुनियाद के मजबूत करण में माली नीतियों जी ए माली व्यवस्था जी सुठी मजबूती जी वजह खां आए JCR नोटिस कयो वयो है त भारत जी माली व्यवस्था मजबूत निजी खपत ए सरकारी निवेश जे समर्थन का वडे वाधारे दर कायम रखी है सांख्यिकी ए कार्यक्रम अमलदारी मंत्रालय MOSPL पारां जारी कया वा हैं। वास्तविक GDP अनुमान मुताबिक माली साल FY26 में भारत जी सही GDP वाधारे जी दर 7.8% मजबूत रही माली साल FY27 जी पहली तिमाही में भी वाधारे जी गति कायम रही आए एं सही GDP में 7.8% वाधारी दर्ज कई वही जड़े वैश्विक स्तर ते मुश्किल हालात मौजूद आहिन एजेंसी सरकार पारा उत्पादकता जे वाधारे ए माली वाधारे दीठा वारन नितिन जी लगातार अमलदारी ते भी जोर दिनो वयो है इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जे वाधारे ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST जी अमलदारी शामिल आहे इन नितिन भारत जी माली बुनियादी के बुनियाद के वधिक मजबूत कयो आहे एजेंसी राजकोषीय खर्च जी गुणवत्ता में सुधार के भी स्वीकार कयो आहे खास तौर ते पूंजीगत खर्च विशेष रूप सा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में निवेश ते वधिक जोर दिनो वियो आहे JCR नोटिस कयो आहे त केंद्र सरकार जो राजकोषीय घाटो माली साल 2024-25 में 4.7% खां घटजी माली साल 2025-26 में 4.4% भी थी पयो आहे जडहिं पूंजीगत खर्च उच्च स्तर ते कायम रहियो आहे JCR भारत जी माली व्यवस्था जी समूची मजबूती में जरूर सुधार भी निशानदेही कई आहे बैंकिंग क्षेत्र जी एसेट क्वालिटी मजबूत थी आहे जेके इंसॉल्वेंसी ए वैकल्पिक कोड जी स्थापना सरकार पर पूंजी उपलब्ध करण ए RBI जी मजबूत निगरानी खां मदद मिली आहे बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी समूरी ए मुनाफा खोर जी स्थिति मजबूत रही है गैर बैंकिंग माली क्षेत्रन जी एसेट क्वालिटी ए पूंजी पर्याप्तता में भी सुधार आयो है जेके देशी माली व्यवस्था वधिक मजबूत थी आहे बाहरी क्षेत्रन जे बारे में एजेंसी नोटिस कयो आहे त भारत जो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खातो घाटो नियंत्रण में आहे जेके सेवा क्षेत्रन जे बैलेंस में सरप्लस जो समर्थन हासिल आहे भारत जे भरसा समूरी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद आहे जे कर्ज समय बाहरी कर्जे का काफी वधिक आहे ई मुदे विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी माली झटकन जे मुकाबले में भारत जी माली व्यवस्था के मजबूत झोल ए सुरक्षा दींदा है भारत जी माली बुनियाद जी मजबूती लगातार माली वाधारे प्रभावी ए माली नीतियों राजकोषीय स्थिति में सुधार ए मजबूती माली व्यवस्था जी समर्थन खां वधिक मजबूत थी रही है इहो भारत जी मजबूत ए लचीली माली वाधारे बेहतर थींदड़ राजकोषीय स्थिति मजबूत माली व्यवस्था ए मजबूत बाहरी माली स्थिति जी झलक पेश करे थो इहो गौर करण लायक आहे त भारत के पिछले एक साल
दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन्स रेटिंग में तरक्की हासिल किया है। मॉर्निंग स्टार DBRS मई 2025 में भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार कयो। इन खां पोए S&P ग्लोबल रेटिंग अगस्त 2025 में ए जापान की रेटिंग में इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन INCCREL सितंबर 2025 में भारत की सॉवरेन्स रेटिंग के अपग्रेड कयो। हाल ही में जापान की कह रेटिंग एजेंसी पारा भारत की सॉवरेन्स रेटिंग में कयल कई बी तरक्की आहिन। ही तरक्की सरकारी आकलन जे हिक दिन पो आई आहिन, जै में अप्रैल जून तिमाही दौरान भारत जी GDP में 7.8% जो वाधारो दर्ज कयो वयो है। सितंबर 2025 में जापानी क्रेडिट रेटिंग

फाइनेंसिएटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक आरईटीएल भारत की लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बीबीबी मां बीबीबी प्लस ते अपग्रेड कयो आहे। गडी भारत की अर्थव्यवस्था माली व्यवस्था जे स्टेबल आउटलुक के कायम रखियो हो। इनका पहली अगस्त 2025 में एससीपी भारत की सॉवरेन रेटिंग के बीबीबी खां बीबीबी ते अपग्रेड कयो होया। जेसीआरएए खां बी ताई रेटिंग स्केल में अनुपात चिन्ह का वधिक प्लस या घटती माइनस निशानी जोड़े थी। जैसा रेटिंग स्केल में गडियल सूरत हाल के दिखाई हुए है। स्टेबल आउटलुक जो मतलब आहे त रेटिंग नजदीकी भविष्य में बदलण जी संभावना कम आहे। त इंडियन एक्सपेस जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चयो आहे त भारत जी माली व्यवस्था माली साल 2026-27 में 6% खां वधीक वडे वाधारे तक कायम रखण जी उम्मीद आहे। हिन खां मेन कारण खराब मुंद जी हालत जे कारण खाधे जी चीजन का वधिक दाम ए ओला एशिया में वधन तनाव करण ऊर्जा जी वधिक कीमत आहे। तंहिंखां बावजूद महंगाई जी दर आरबीआई जे निर्धारित लक्ष्य सीमा अंतर रही आहे। पर एजेंसी हिन गाल के भी उजागर कयो आहे त राजकोषीय खेत्र में कुछ ठहल चुनौतियूं मौजूद आहिनि जंहिंजे कारण राजकोषीय घाटा वडे स्तर ते रहण जी प्रवृति रखे थो। इन चुनौतियों में केंद्र ए राज्य सरकार जे विच दुख्यो राजकोषीय संबंध राज्य में असमानता कम करण लाए राजकोषीय हस्तांतरण की व्यवस्था ए चुनाई भी चक्रन जे प्रभाव में अचण वारो राजकोषीय प्रबंध शामिल

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: तफ़सीलूं ॿुधी रहिया आहियो। हाणे वक़्तु अची चुको आहे गीतनि ऐं गज़लनि जो। प्रीत असांजी पुराणी सुषमा जी द्वारा अमी ऐं मम्मी पिचर

0: वाहड़े घड़ा वज वजड़े घड़ा वज वजड़े घड़ा वज वजड़े घड़ा
1: वज वजड़े घड़ा वज वजड़े घड़ा
0: वो घड़ा।

0: बुद्धि राय आयो
1: हियर वाहवारी घड़ा मास्टर चंद्र पारा हाणे तां जिंदगी गजल श्री घनश्याम वासवानी जी आवाज में बुद्धता।
2: वाह वाह रे घड़ा वजू।

तव्हां ॿुधी रहिया आहियो गीत गज़ल जो प्रोग्राम। हाणे तव्हां कुझु ख़ासि ख़बरूं ॿुधो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐं बेल्जियम जे हमरुतबा वॉट डी पीवर

सरगोशी भागीदारी के मजबूत करण लाए चयो बेल्जियम दहशतगर्दी खिलाफ भारत की जंग की हिमात कई। भारत ए बेल्जियम डिफेंस कोऑपरेशन ते मुआदे ते दस्तखत कया। अचण वाले पंज साल में डुफहर्फी व्यापार ए ड्यूड़ो कटण ए सेमी कंडक्टर क्रिस्टल मिनरल्स ए एडवांस टेक्नोलॉजीज जे शोबन में सहकार वधाण ते राजी थिया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल अगेणे क्वार्टर में 7.8% जीडीपी वाधारे जी कामयाबी हासिल करण ते एमएसएमई जी सराहना कई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर यूक्रेन जे सदर वोलोडिमिर जेलेंस्की सां मुलाकात कई कि रूस यूक्रेन जंग के खत्म करण लाए प्राइम मिनिस्टर मोदी जे कॉल जो खैर मुकदम कयो। एम बैडमिंटन में भारत जो बेहतरीन शटलर कियांबी श्रीकांत चाइना मास्टर जे मेन्स सिग्नल फाइनल में क्वार्टर फाइनल में अड हांगकांग जे सी चेकू यू सा मुकाबलो कंदा।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 लॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त। तव्हां सां सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनोसिस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी

0: योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने चीन की हांगकांग टीम के विरुद्ध महिला क्रिकेट एशिया कप के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. This is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit

इस कृष्ण भजन के साथ ही आज का संगीतिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम, जिसमें हम भक्ति गीत लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे और जय श्री कृष्ण। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ एक बार फिर स्वागत है आपका गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। आज की सुबह है कुछ खास, क्योंकि आज हम याद करेंगे उस प्यारे से नटखट कान्हा को, जिसकी मुस्कान में यशोदा मैया का वात्सल्य है, जिसकी बांसुरी में प्रेम की धुन है और जिसके नाम में ही मन को सुकून देने वाली शक्ति है। तो क्यों ना आज की सुबह की शुरुआत करें श्री कृष्ण के मधुर फिल्मी भक्ति गीत के साथ। तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत।

ब्लफ मास्टर फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। दोस्तों, कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, कान्हा ने भी कभी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे कंस का अत्याचार हो या कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का साथ दिया और यही आज की सुबह का ये जो संदेश है हमारा, यही है कि मुश्किलें रास्ता रोक सकती हैं लेकिन आपके हौसले को नहीं रोक सकती। फिलहाल सुनते हैं लगान फिल्म का ये गीत।

कान्हा का बचपन माखन की मटकी, गोकुल की गलियां और गोपियों की शिकायतें, लेकिन इन शरारतों में भी एक ऐसी मासूमियत थी कि जिसने कृष्ण को हर दिल का प्रिय बना दिया। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भी जरूरी है। एक मुस्कान, अपनों के साथ कुछ पल और मन से निकला भगवान का नाम, यही तो जीवन की असली दौलत है। चलिए सुनते हैं फिल्म मुगले आजम से ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

रूप बाल गोपाल का है तो दूसरा रूप है एक महान मार्गदर्शक का। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हुए तब कृष्ण ने उन्हें कर्म का संदेश दिया। कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। आज की सुबह हम भी यही संकल्प लें, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, मुश्किलों से घबराएंगे नहीं और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये गीत फिल्म गोपाल कृष्ण से हेमलता और साथियों की आवाजों में।

जी हाँ दोस्तों, कृष्ण की बांसुरी की धुन सिर्फ गोकुल को ही नहीं बल्कि सदियों से हर कृष्ण भक्त के मन को आकर्षित करती आई है। कहते हैं जब मन परेशान हो तो कृष्ण का नाम लीजिए, जब रास्ता समझना आए तो कृष्ण को याद कीजिए, और जब खुशियां मिले तो सबसे पहले उनका धन्यवाद कीजिए।

और अब गीतों भरी गुड मॉर्निंग की इस कृष्णमयी सुबह में एक छोटी सी बात बीता हुआ कल हमें अनुभव देता है, आने वाला कल हमें उम्मीद देता है और आज का दिन हमें अवसर देता है। इसलिए आज को पूरे उत्साह से जिए, कान्हा पर विश्वास रखिए और अपने कर्म पर भरोसा रखिए।

0: राधे राधे कहिए, कृष्ण का नाम लीजिए और मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और भाई हमें दीजिए इजाजत, इसी के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है और अब वक्त है समाचार प्रभात का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
2: I am very happy to announce that
3: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSP F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी

0: अग्नि का उपग्रह 5 को सफलता पूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram per AIR News Alerts ko follow kare.
6: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीय

0: पर्यावरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: देश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नैनाभिराम श्रृंगार

0: कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिन्दुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends 2 more aircraft with relief materials to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of 2020 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And now the news in detail. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. ISRO chairman V. Narayanan said the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18

0: off 64 balls, smashing 14 fours and 7 sixes. Mandana surpassed Mithali Raj to become the leading run scorer in women's international cricket. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have covered the Indian-Belgium ties getting a boost despite the challenging international environment. The Pioneer Rights in New Delhi and Brussels seek to convert strong economic links into a broader partnership built on trust. 100% chance of El Nino lasting till February 2027 and intensifying into a very strong event in the coming months, raising the risk of floods, drought and extreme heat across large parts of the world, according to World Meteorological Organization reports in the Sun Times. The Indian Express cites the decision of the Apex Court on bar councils have no disciplinary power over law students. And finally, the Times of India mentions the passing away of Gloria Steinem, the US activist and feminist, having a great influence on India on her during her trip to the country. The paper adds Steinem even featured in sari ads as a way of supplementing her income in India. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends 2 more aircraft with relief material to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, being celebrated across the country today. And in women's cricket, India storm into semi-final of T20 Asia Cup, beating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजरित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मुआवनत के लिए इमदादी सामान के साथ 2 और तैयारे वहां भेजे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और खवातीन क्रिकेट में दुबई में भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रन से करारी शिकस्त देकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। 27 घंटे की उल्टी गिनती के बाद सेटेलाइट EVOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F17 को सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से रात देर गए 2:55 पर छोड़ा गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: इसरो ने कहा है कि 2367 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को इसके छोड़ जाने के तकरीबन 18 मिनट बाद मुतालिका मदार में पहुंचा दिया गया। EOS-05 कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने वाला जदीद तर्ज का सैटेलाइट है और ये जमीन के मुतवाजी मदार में पहुंचाए जाने वाला पहला इमेजिंग सैटेलाइट भी है। ये सैटेलाइट कम वक्त में ही वसी इलाकों की तस्वीरें फराहम कर सकेगा, जिससे कुर्रे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मुस्तहकम होगी। सैटेलाइट से हासिल होने वाले डेटा का इस्तेमाल जरात, कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने में मुआवनत के लिए किया जाएगा। यह सैटेलाइट कुदरती आफात की सूरत में

0: प्रदेश में भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए मथुरा और वृंदावन में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश मथुरा में हजारों मंदिरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इनमें बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मथुरा और वृंदावन जय श्री कृष्ण के नारों की जाप के साथ भक्ति के माहौल से सरशार हैं। पूरे शहर में भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ब्रज मंडल और रियासत के दीगर हिस्सों में भी जन्माष्टमी पूरे जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है, लेकिन बड़ी तकरीब मथुरा वृंदावन में हो रही है, जहां आधी रात के जश्न के लिए सभी मंदिरों को फूलों, पत्तियों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। इस मौके पर लाखों अकीदतमंद पहले ही भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में आने वाले अकीदतमंदों को देखते हुए पूरे मथुरा शहर में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: गुजरात में भी जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण जी के बड़े मंदिरों में मजहबी तकरीबात और खुसूसी रसूम का सिलसिला जारी है। इनमें आलमी शोहरत याफ्ता द्वारिकाधीश, डाकोर और शामला जी मंदिर शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद पवित्र शहर द्वारका में जमा हो रहे हैं ताकि जन्माष्टमी की तकरीबात में शिरकत कर सकें। आज सुबह सवेरे पवित्र मंगल आरती के साथ मजहबी रसूमात का आगाज हुआ, जो दिन भर खुसूसी दर्शन और रिवायती कीर्तन के साथ जारी रहेगी। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर को रोशनियों और फूलों से सजाया गया है और जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ

0: 150 टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली ची क्यू का सामना करेंगी। श्रीकांत ने कल आलमी नंबर 9 खिलाड़ी कनाडा के विक्टर लाई को 21-18 21-19 से हराया था। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं अर्जुमंत।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के उनके हम मनसब बाद डी वेवर से मुलाकात की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि इस मुलाकात में तजारत सरमायाकारी बहरी उमूर और काबिल तजदीद तवानाई समेत कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। रोजनामा इनकलाब ने वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आलमी सतह पर जारी रुकावटों और मुताबिक चैलेंजों के बावजूद भारत दुनिया की बड़े मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत बना हुआ है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। खलाई रॉकेट की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुर्रे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सैटेलाइट EVOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंसरित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मावनत के लिए इमदादी सामान के साथ 2 और तैयारे वहां भेजे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और खवातीन क्रिकेट में दुबई में भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रन से करारी शिकस्त देकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वरगंगा। स्वरगंगा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत विजय कुमार जी से बांसुरी पर राग गुजरी तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विजय कुमार से बांसुरी पर राग गुजरी तोड़ी सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का बोलने केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है शिक्षा और शिक्षकों पर गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा जिंदल।
1: गांधी जी मानते थे कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ साक्षर होना नहीं है, बल्कि शिक्षा का अर्थ है चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भर बनना और मानवता की सेवा करना। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा का विरोध किया और बुनियादी शिक्षा तथा नई तालीम का विचार दिया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। उनका मानना है शिक्षा व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा के बाद व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए काम करे। वे कहते थे यदि हम देश को आजाद करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी। बच्चों को अंग्रेजी नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। 7 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए और उनकी शिक्षा अनिवार्य की जाए। पढ़ाई के साथ साथ कोई हस्तशिल्प, कटाई बुनाई, खेती बाड़ी भी सिखाई जाए। गांधी जी कहते थे हाथ और दिमाग साथ चले। स्कूल अपने खर्चे का कुछ हिस्सा बच्चों द्वारा बनाए गए सामान को बेचकर निकाले। गांधी जी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता मानते थे। उनके अनुसार एक आदर्श शिक्षक जैसा करेगा छात्र वैसा ही सीखेगा। आप जो उपदेश दे उसे पहले खुद जिए। शिक्षक का काम पैसा कमाना नहीं सेवा करना है। कम वेतन में भी काम करने का जज्बा हो। शिक्षक को भी कताई बुनाई आनी चाहिए ताकि वो बच्चों को सिखा सके। वे कहते थे शिक्षक को सादा जीवन, उच्च विचार वाला होना चाहिए। छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, डंडे से नहीं प्रेम से पढ़ाना चाहिए। कक्षा में भी सत्य बोलना और किसी से नफरत न करने की शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक गांव में जाए, लोगों को साक्षर बनाए और सफाई सिखाए। गांधी जी आज भी

0: गुरुजन सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते, भविष्य गढ़ते हैं। गांधी जी चाहते थे कि हर शिक्षक अपने छात्र से ये तीन सवाल पूछे। पहला, क्या तुम सच बोलते हो? दूसरा, क्या तुम अपने हाथ से कुछ काम कर सकते हो? और तीसरा, क्या तुम कमजोर व्यक्तियों की मदद कर सकते हो? अगर इन तीनों सवालों के जवाब हाँ है तो समझिए आपकी शिक्षा सफल है। महात्मा गांधी ने शिक्षक को केवल साक्षरता न मानकर बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगिक विकास का माध्यम माना। उन्होंने बुनियादी शिक्षा के जरिए शिक्षा को स्वदेशी हस्तशिल्प से जोड़ने और शिक्षकों को नैतिक मार्गदर्शक व चरित्र निर्माता के रूप में स्थापित किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि छात्र सहजता से सीख सके। पढ़ाई के साथ किसी उत्पाद हस्तशिल्प जैसे बुनाई, कृषि आदि से आत्मनिर्भर बने। गांधी जी शिक्षा को मानव के सर्वांगिक विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगिक विकास से है। उनका मानना था कि केवल साक्षरता ही शिक्षा नहीं है बल्कि यह इंसान की भीतरी शक्तियों को बाहर लाने का साधन है। महात्मा गांधी ने विद्यालय और महाविद्यालय दोनों स्तरों पर सभी शिक्षकों से छात्रों को नैतिकता और सदाचार को उचित शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। इस संबंध में शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश सुझाते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों में उच्च नैतिक मूल्यों और मजबूत चरित्र का विकास करना शिक्षा का कर्तव्य है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली को बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। उनका उद्देश्य मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना था और उन्होंने बच्चों को कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए गतिविधि केंद्रित शिक्षा की वकालत की। गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का आधार भारतीय संस्कृति है जो प्रत्येक बच्चे को उसकी जाति धर्म का ख्याल किए बिना मिलनी चाहिए। वास्तव में यह शिक्षा बच्चे को बुनियादी आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों से घनिष्ठ संबंध रखती है। शिक्षा बच्चे के भविष्य में होने वाली प्रवृत्तियों और संभावनाओं का भी ख्याल रखती है। जिस समाज में बच्चा पैदा हुआ है उस समाज की बुनियादी जरूरतों का ध्यान शिक्षा ही रखती है। वास्तव में शिक्षा देश की जनता और साधारण आदमी के लिए बनाई गई है क्योंकि देश का साधारण आदमी ही देश की नींव होता है। शिक्षा का अर्थ बच्चे के शरीर, मन और आत्मा का सबसे अच्छा विकास करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना नहीं बल्कि अच्छा चरित्र और नैतिक मूल्य पैदा करना है। विद्यालय ऐसा हो जहां बच्चा पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बनना सीखे। शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोजगारी से मुक्त कर सके और बालक के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुंमुखी विकास कर सके। बालक के सर्वांगिक विकास हेतु उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास कर सके। गांधी जी ने शिक्षा को सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं माना। उनके लिए शिक्षा का मतलब था सर्वांगिक विकास, शरीर, मन और आत्मा तीनों का विकास, बिना जाति धर्म के, भेदभाव के बिना सभी बच्चों को समान शिक्षा। उनका शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना था। शिक्षा को सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि कारीगरी, स्वास्थ्य, सफाई, नैतिकता भी सिखानी चाहिए। कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। वे बहुत ही बड़े शिक्षक और दार्शनिक और विद्वान हुए हैं। गांधी जी ने शिक्षा को बाजार नहीं मंदिर माना। उन्होंने शिक्षा को नौकर नहीं राष्ट्र का निर्माता माना। आज हमें अंग्रेजी और डिग्री के साथ साथ गांधी जी की नई तालीम को भी अपनाना होगा, तभी हम साक्षर भारत के साथ साथ संस्कारी भारत और आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। सच्ची शिक्षा वो है जो बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करे, समाज का उपयोगी सदस्य बनाए और देशभक्त इंसान बनाए। शिक्षक वो कुम्हार है जो मिट्टी जैसे बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाता है। गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना मान कहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, सुख ही सुख है वहाँ। अगर इमारत है देश तो नींव है शिक्षक। जीवन की हर मुश्किल का समाधान है शिक्षक। बिना गुरु के जीवन अधूरा सा लगता है क्योंकि ज्ञान का सच्चा वरदान है शिक्षक।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये

इसी साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वीके तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

नजर डालें आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद सुबह का ही प्रोग्राम में आज आप कृष्ण भजन सुनेंगे। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा और 9:50 पर खबरें नशर की जाएंगी। 10 बजे सुनिएगा प्रोग्राम शम्मे फरोजा और 10:05 पर आप सुनेंगे जन्माष्टमी के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम, यानी हम आपको सुनवाएंगे जन्माष्टमी के गीत। 10:30 पर कंट्रीवाइड प्रोग्राम होगा।

10:45 पर आज आप मेरी पसंद प्रोग्राम सुन सकेंगे। 11:30 पर कृष्ण जन्म रासलीला सुनवाई जाएगी। दिन में 12 बजे खबरें नशर होंगी। 12:10 से आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरे सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम होगा। सुर्खियों में प्रोग्राम होगा 12:45 पर। 1 बजे आलमी खबरें नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही।

0: इस भजन के साथ ही आज का सुबह का ही प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है आज सवेरे।
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। 1944 की अगर बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया था। वहीं 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया और 1967 में 6.5 तीव्रता वाले भूकंप की चपेट में महाराष्ट्र का कायोना बांध आया था, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद तथा लोक सेवक रहे बलदेव प्रसाद मिश्र का, जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा। वो भारत के एक ऐसे प्रथम शोधकर्ता थे जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी के बदले हिन्दी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डीलिट की उपाधि अर्जित की। बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी दर्शन पर विशेष कार्य किया। लगभग 85 प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कृतियां उनकी साहित्य प्रतिभा की परिचायक रही। 1923 से 1940 तक बलदेव प्रसाद मिश्र ने रायगढ़ रियासत के न्यायाधीश, नायब दीवान और दीवान के पद पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने लिखित द्वारा मुख्य रचनाओं में शामिल हैं श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, कौशल किशोर, जीवन संगीत, साकेत संत, मानस के चार प्रसंग।
2: Dear listeners, let's take a moment to remember a legend of Indian cinema, the unforgettable Mukri. Muhammad Umar Mukri began his journey in films alongside his school friend Dilip Kumar, debuting in Pratima back in 1945. What followed was a dazzling career spanning over 6 decades and more than 600 films. With his diminutive frame and impeccable comic timing, Mukri became a household name, bringing laughter and joy to millions. From classics like Mother India and Kohinoor to blockbusters like Amar Akbar, Anthony Lavaris and Bombay to Goa, Mukri's presence lit up the screen. He wasn't just a comedian, he was a storyteller who made audiences feel at home with his warmth and wit. Mukri's legacy reminds us that cinema is not all about heroes and heroines, but also about those who make us laugh, cry and reflect. His contribution to Indian film comedy remains timeless, and now, to honor his era and the spirit of his times, let's listen to a song that carries a message beyond generations, Mohammad Rafi's immortal anthem from Dhul Ka Phool. Tu Hindu banega, na Musalman banega, insaan ka insaan ki aulaad hai, insaan banega. A song that reminds us of unity, humanity and the power of art to bring people together.

और अब श्रोताओं हम आगे बढ़ते हैं और याद कर लेते हैं एक और शख्सियत को। दादा भाई नेहरू जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय राजनीति का पितामह इन्हें कहा जाता है। वे दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक रहे। श्री दादा भाई नेहरू जी का शैक्षिक पत्र अत्यंत उज्जवल रहा। 1845 में एल्स्टन कॉलेज में गणित के प्रधान अध्यापक रहे वो, और यहां एक अंग्रेजी अध्यापक ने उन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी। और श्रोताओं अब हम जानकारी दे रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में। वे साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक रहे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता हिन्दी साहित्य के इतिहास में सदाबहार माना जाता है। प्रेम, त्याग, सामाजिक मर्यादाओं और भावनात्मक द्वंद को केंद्र में रखकर लिखा गया ये उपन्यास हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में गिना जाता है। प्रयागराज की स्मृतियां भी उनके लेखन में दिखाई देती हैं। गुनाहों का देवता में प्रयाग के नगर देवता की कल्पना उनके शहर से गहरे लगाव को दर्शाती है। उनकी भाषा और कया शैली ने पाठकों के मन पर स्थायी प्रभाव भी छोड़ा है। इसके अलावा उनके कई उपन्यास काफी लोकप्रिय रहे, जिसमें सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग काफी लोकप्रिय रहे। और श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्य

गीतकार और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त के बारे में। इनकी रचनाओं में रूणा सत्य अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है। हिंदी साहित्य में उन्हें कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन एक मूर्धन्य कथाकार के रूप में इन्होंने कथा साहित्य में अपना स्थान बनाया। इनके द्वारा लिखित मुख्य रचनाओं में शामिल है खंड काव्य अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वा दल, बापू, काव्य ग्रंथ, दैनिकी नकुल, जय हिंद, पाथे, मृणमयनी तथा आत्मसर, और उपन्यास अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद भी इनके काफी लोकप्रिय रहे। और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक ऋषि कपूर के बारे में। जी हां, आज हम उनको याद कर रहे हैं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। एक बाल कलाकार के रूप में काम कर उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म अमर अकबर एंथनी, चांदनी, प्रेम, नसीब अपना अपना, खानदान, दीवाना काफी लोकप्रिय रही। इसके अलावा दामिनी में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की कुछ चुनिंदा फिल्मों से ये प्यारा सा गीत।

0: ज्यादा तादाद में 355 लाशें बरामद की गई हैं। वजीर आजम बालेंद्र शाह ने कहा है कि इस सानहे से मुंसलिक आबो हवा की तब्दीली का मामला बैन अक्वामी बिरादरी के साथ लाजमी तौर पर उठाया जाना चाहिए, जबकि लापता मकामी अफराद के कुनबे के लोग अलामती आखिर रसूम अदा कर रहे हैं। इस दौरान नेपाली फौज की क्यादत में मुश्तरका बचाव टीमें अपनी तलाश कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और सुरंगों से मुतालिक भारतीय बचाव टीम ने सियाब्रुवेसी में अपना बेस कायम कर लिया है ताकि कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जा सके। खवातीन क्रिकेट में कल रात दुबई में ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में भारत हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का निशाना मिला था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर्स और दो गेंदों में महज 56 रन पर आउट हो गई। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुरे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EVS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजमद करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मुआवनत के लिए इमदादी सामान के साथ दो और तैयारे भेजे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। और खवातीन क्रिकेट में दुबई में भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रन से करारी शिकस्त देकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है अखबार जरी का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसको अकल फहम समझ दानिश जैसे बातनी औसाफ से मालामाल किया, उसको अच्छे और बुरे को परखने की सलाहियत और अपना माफी जमीर अदा करने की कुव्वत वाफर मकदार में अता की। इसीलिए हमारे अकीदे के मुताबिक हजरत इंसान से ही वो सारे सवालात होंगे जो दुनियावी जिंदगी के नशीब व फराज से भी ताल्लुक रखते हैं, उसके मजहबी अकायद से भी और समाजी व खानगी जिंदगी से भी। दुनिया की दूसरी मखलूकात अकल व फहम से ताल्लुक रखने के बावजूद इसलिए काबिल मुआवजा नहीं है क्योंकि उनको अकल होने के बावजूद यह कुदरत हासिल नहीं कि वो अपनी वारदात कल्बी किसी दूसरे तक पहुंचा सकें। खूबियों और खराबियों के मजमुए हजरत इंसान में सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपनी फिक्र को दुरुस्त रखे और अपने मुताले भी और दूसरों के ताल्लुक से भी। इससे इंसान खुद ब खुद बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। मुस्बत फिक्र के नतीजे में इंसान अपनी इसलाह की कोशिश करता है और वो देर सवेर कभी न कभी कारामद आदमी बन जाता है। खालिक़ कुल मखलूकात ने इसी अगर से ऐसे कामों से बचने की तलकीन की जिसके असरात बेहतर न मुरतब होते हों। इन्हीं से पहले नंबर पर बदगुमानी है जो बहुत सी खराबियों और बीमारियों की जड़ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरह अल हिजरात में वाज़ह तौर पर इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों गुमान से बहुत ज्यादा बचो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। यानी परवरदिगार आलम ने इंसानी नफ्सियात के पेश नजर उसे इन हदूद में भी दाखिल होने से रोक दिया जहां से बदगुमानी की हदूद शुरू होती हों। बदगुमानी के ही कबील की एक और बीमारी वहम है। वहम का मफहूम ही हकीकत के बरक्स है, यानी वो बात जिसका हकीकत से मजबूत ताल्लुक न हो। सोचना चाहिए कि जब किसी बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता तो फिर उसकी ना कोई दलील होती है और न ही उसका कोई सबूत। हकीकत यह है कि ये दोनों बुराइयां या इनमें से कोई एक बीमारी इंसान को लग जाती है तो उसे अंदर ही अंदर घोल कर रख देती है। अगर इन बीमारियों को इंसान के बातिन की दीमक कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि जो शख्स भी बदगुमानी या वहम की मरस का शिकार हो जाता है वो कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि वो माशरे के हर फर्द को अपना दुश्मन समझता है। दुनिया में हम किसी इंसान की सोच पर तो कदम नहीं लगा सकते, कम अज कम अपनी इसलाह तो कर सकते हैं और ये काम जरा भी मुश्किल नहीं। किसी मुफक्किर का कौल है कि अगर आदमी अपने उयूब पर और दूसरों की खूबियों पर नजर रखे तो वो एक न एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन जब किसी के अंदर वहम और बदगुमानी का मरज दाखिल हो जाए तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। वो हमेशा इस गलत फहमी का शिकार रहता है कि दुनिया में उसका कोई हमदर्द और खैर ख्वाह नहीं है। वो हरेक को शक की नजरों से देखता है, कभी किसी पर यकीन नहीं रखता और एक लम्हा ऐसा आ जाता है कि वो अपनी जात से भी बदगुमान हो जाता है। اس لیے ان ایوب سے بچنے کی کوشش

0: कोशिश करते रहना चाहिए और अपने अंदर इस जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए कि दुनिया में कोई इसका दुश्मन नहीं है, कोई इसका बदख्वाह नहीं है। जब ये औसाफ इंसान में दाखिल हो जाते हैं तो वह खुद ब खुद अपने आप को इन उलूब से अलग कर लेता है जिनसे उसकी शख्सियत मजरूह होती है या उसके वकार पर कोई हर्फ आता हो। वहम और बदगुमानी के मुर्तकिब अफराद बेयकीनी और बेएतमादी की वजह से दुनिया की किसी नेमत से सही तरीके से महसूस नहीं हो पाते। उन्हें मुस्तकिल तौर पर यह खदशा रहता है कि उनसे हसद करने वाले उनकी नेमत छीनने का सबब न बन जाए। दुनिया के हर मजहब ने अपनी तबाह करने वालों को इस दुनिया में इस अंदाज से जिंदगी गुजारने की तलकीन की है जिसमें न तो उनका वजूद दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस हो और न ही वो बिलावजह दूसरों को अपना दुश्मन समझकर अपनी जिंदगी को बेसहमति का शिकार बना लिए। गीबत, झूठ, चुगली, हरामखोरी बेशक शुबा बड़े मोहलिक अमराज हैं। इन उयूब में मुबतला हजरात दूसरों की दिलाजारी के सबब बनते हैं जो यकीनी तौर पर बड़ी खराब बात है, लेकिन वहम बदगुमानी के शिकार अफराद दूसरों के साथ साथ अपने दिल दुखाने के सामान भी खुद ही फराहम करते हैं और इस दलदल में धंसते ही चले जाते हैं। इसलिए हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरों को अपना हमदर्द और खैर ख्वाह समझे। बहुत से मामलों में यकसुई, गोशा नशीनी, किनारा कशी मुफीद साबित होती है, लेकिन किसी को अपना बदख्वाह समझकर उससे बेरगबती या नफरत का इजहार बहुत ही बुरी बात है, इससे बचना चाहिए। बेहतरीन माशरे की तश्कील तो हर इंसान के लिए लाजमी है, लेकिन बतौर खास उन हजरात के लिए जो अपने आप को रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन से वाबस्ता समझते हैं, उनके लिए तो लाजिम है कि कुरान और हदीस की तालीमात को अपने लिए हिरज़ जा बनाएं। कुरान करीम ने इन बुराइयों के करीब भी जाने से इसलिए मना किया है कि कहीं इसकी पैरवी करने वाले हुदूद गुनाह में दाखिल न हो जाएं। जो हजरात इस बीमारी में मुबतला हो जाते हैं उन्हें किसी भी तरह इत्मीनान कल्ब या शरह सदर हासिल नहीं हो पाता। वो दूसरों के ताल्लुक से तो बदगुमान रहते ही हैं, खुद अपनी जात से भी उनका यकीन उठ जाता है और वो बेयकीनी में मुबतला रहते हैं। इसका शिकार बसा औकात वो हजरात भी हो जाते हैं जिनके तकवी पारसाई की अवाम खास शहादत देते हैं। दरअसल वहम एक मरस की तरह इंसान के शरियानों में दाखिल हो जाता है और इंसान के आसाब पर सवार होकर उसे हमेशा बदगुमानी में मुबतला कर देता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो मुकम्मल नहीं है। मसलन तहारत के लिए पानी के सिलसिले में शक होने लगता है, इस बर्तन के बारे में बेयकीनी की कैफियत रहती है जिसमें पानी लिया गया है, और फिर सिलसिला यही नहीं रुकता बल्कि मुसलसल इस वहम में मुबतला रहता है कि न तो उसको पाकी हासिल हुई है और न ही उसकी इबादत काबिल कबूल हुई है। इसमें बज़ाहिर ये ज़ाती मामला है जिसे आरज़ा कहकर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वहम दूसरे अफराद से मुतालिक होने लगता है तो वो यकीनन बदगुमानी में बदल जाता है जिससे हमें हर हालत में बचते रहना चाहिए। वक्त और फिक्र दोनों का ज़िया होता है, हमें इससे ही बचने की तलकीन की गई है। मिल्लत इस्लामी की तहारत और नज़ाफ़त और इबादत और रियाजत के लिए शरीयत इस्लामिया ने जो उसूल मुकर्रर किए हैं और जो तहरीरी सरमाया फराहम किया है उससे हमें यकीन कर लेना चाहिए कि जो चीज हमें पाक नजर आ रही है वो पाक ही है और उस पाकी से जो नतीजे बरामद होंगे वो भी पाक ही होंगे। अगर ये यकीन हमारे दिलो दिमाग में रासिख हो जाए तो हम वहम बदगुमानी की मोहलिक बीमारियों से निजात पा सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे अख़बार सर्री का प्रोग्राम शम्मे फ़रोज़ा। आज का मौजू था वहम और बदगुमानी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर सुनिए कृष्ण जन्माष्टमी के गीत।
0: अल्लाह ने इंसान

0: हमें अपने जन्माष्टमी के गीत सुने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम कंट्री वाइज। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अशोक कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते
1: अशोक जी। भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, जल संकट की बात हो या फिर कुछ इलाकों में भूजल स्तर गिरने की बात कही जाती है, तो जल को बचाने के लिए कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम परिस्थिति अपने सामने देख रहे हैं, इसमें आम नागरिकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी चीज की इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है?
2: जल के संकट के बारे में आपने बताया, बट एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे पिछले कई दशकों से जितने भी बारिश आ रहे थे उतनी बारिश अभी भी आ रही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाटर मैनेजमेंट में वी आर नॉट एबल टू वाटर मैनेज द वाटर प्रॉपरली। इसलिए ये जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जल आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदला करने के बाद ही हम मैक्सिमम वाटर सेव कर सकते हैं। वो देखते हैं, आंकड़े बताएंगे तो तकरीबन 1000 से 1100 mm रेनफॉल हर साल हमको मिलते हैं। कभी महीने में इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो हर साल बारिश जितना आना है वो आते रहते हैं, और तकरीबन 4000 billion cubic meters पानी हमको मिलता है। और जब बारिश अधिकतम होता है तो कभी कभी फ्लड्स होता है, बाढ़ हो जाते हैं और पानी बह के चले जाता है, और 6 महीने के बाद जब समर आ जाता है तो पानी की दिक्कत बढ़ जाते हैं, कई जगह पर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो अगर हम ये जो बारिश में जितने पानी आता है उसी को हम संभाल के रखे, जन भागीदारी से संभाल के रखे और समर में यूज करेंगे, तो हमारा वाटर समस्या एकदम बहुत हल हो जाएंगे। इसलिए जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें।
1: अशोक जी, आप कई सारी योजनाओं से जुड़े रहे हैं, नेशनल वाटर मिशन की बात हो या फिर कैच द रेन अभियान की बात हो, तो ये जो अभियान हम देखते हैं आज की डेट में, इनका क्या महत्व है जल संरक्षण के लिए, और जो हमारे सामने भूजल का संकट है या फिर पीने के पानी के पर्याप्त उपलब्धता की बात करते हैं उसके लिए?
2: जैसे मैंने बताया, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट। भारत में बहुत सारे जल भूगर्भ से, मतलब अंडरग्राउंड वाटर से निकाल के सिंचाई के लिए यूज करते हैं, पीने के पानी के लिए यूज करते हैं। अगर हम अंडरग्राउंड से पानी को खींचते रहे और वापस उसको रिचार्ज नहीं करते, तो एक दिन पानी तो खत्म हो ही जाएंगे। तो इसलिए 2021 से हमने नेशनल वाटर मिशन की तरफ से और प्रधानमंत्री के आदेश में हमने एक कैच द रेन कैंपेन शुरू किया, जिसका जिक्र आपने किया था। कैच द रेन कैंपेन में यह है कि स्लोगन था, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां पर से जब भी पर से पानी का संचयन करना है। तो ये कार्यक्रम जन भागीदारी से हम कर रहे थे, क्योंकि ये बारिश सब जगह में होते, खेत में, घर में, गांव में, शहर में, सब जगह में बारिश पड़ती है। वो बारिश के पानी को अगर हम वहीं के वहीं संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल बढ़ जाता है, और ये पानी हम यूज करके समर में भी हमारे काम में आ जाते हैं। इसलिए ये जो कैच द रेन कैंपेन वॉज वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, एंड प्रधानमंत्री तो 2021 से इसके बारे में बोलते रहते थे, उन्होंने ही ये कैंपेन 2021 में देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के रूप में

0: स्टार्ट किया था।
1: अशोक जी, जल संकट की जब हम बात करते हैं तो भारत के विकास और सामाजिक स्थिरता की भी यहाँ पर बात करना जरूरी हो जाती है, और साथ ही भारत में नदियों और जल स्रोतों की सफाई भी एक बड़ा टास्क हमारे लिए है, ताकि जो भी जल हमारे पास अभी उपलब्ध है उसको इस तरह से प्रभावी बनाया जाए कि ताकि उसको आराम से इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? क्या आधुनिक समय में जो हमारे पास उपकरण है, यंत्र है, उनका इस्तेमाल करना, या फिर जन भागीदारी और जन जागरूकता?
0: वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया मैंने, और साथ ही साथ पिछले कई सालों से हमने देखा कि ये रिवर पोल्यूशन को भी एड्रेस करने के लिए काफी काम हो रहा था। उसमें एक था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नमामि गंगे, जब हमने सब लोगों को मिला के जन भागीदारी से गंगा नदी को साफ करने के कार्यक्रम में जुट गए थे। तो ये पिछले कई सालों से अभी एनजीटी के मार्गदर्शन में हम कई जगह में वाटर रिवर्स के पोल्यूशन के लेवल मॉनिटर करते हैं, और वाटर पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करके बताते हैं कि इस एरिया में वाटर पोल्यूटेड है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है करके। तो अमृत स्कीम के अंदर और नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के स्कीम के अंतर्गत और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत कई कार्यक्रम हमने शुरू किया, क्योंकि ये जो जल में पोल्यूशन आता है रिवर्स में मुख्यतः, वो ज्यादातर सीवेज की वजह से होते हैं। शहर से गंदा पानी नदियों में छोड़ते हैं और वो गंदा पानी अच्छे पानी से मिलके वो पानी को खराब करते थे। तो ये पिछले कई सालों से हमने एसटीपी बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ पे ये स्वेज वाटर को ट्रीट करके अच्छा पानी नदी में छोड़ने का कार्यक्रम किया। इसमें काफी सफलता भी हुई है, मगर बहुत सारे काम अभी बाकी है। बहुत शहरों में अभी ये एसटीपी बनाना है और उसको चालू कराना भी है, ये कार्यक्रम अभी चल रहा है।
1: अशोक जी, अभी आपने शहरों में पानी की पाइपलाइनों से होने वाली लीकेज की बात की है, और जो अच्छा पानी होता है उसमें गंदा पानी मिल जाता है, उससे भी समस्या आती है। तो प्रधानमंत्री ने इसके लिए कहा है कि सही योजना, पक्के इरादे, पर्याप्त संसाधन और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इसको एक अवसर में बदला जा सकता है, ताकि जो भी हमारे सामने इससे संबंधित दिक्कतें आ रही उनको दूर किया जाए।
0: एक्चुअली देखा जाए तो कई सालों से प्रधानमंत्री पानी के जो मैनेजमेंट के बारे में जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात की थी। जैसे इन्होंने कल बताया था कि सबका प्रयास के साथ हमको जल के क्वालिटी और क्वांटिटी के दोनों में मैनेज करना पड़ता है। वाटर सिक्योरिटी में समस्या आता है तो उसमें दो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, एक तो वाटर क्वांटिटी के मुद्दे होते हैं और दूसरा वाटर क्वालिटी के होता है। ये वाटर क्वांटिटी के लिए जैसे मैंने बताया, हम अगर रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे तो हमको पानी मिल सकता है, अगर हम वाटर यूसेज को रिड्यूस करेंगे तो भी हमको पानी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम एक जगह पे 10 लीटर या 50 लीटर पानी यूज करते हैं, अगर उसका यूसेज रिड्यूस करके 10 लीटर या उससे कम करेंगे तो हमको बचत मिल जाता है, वो बचत पानी का ना सेविंग होता है। तो ये वाटर स्कैर्सिटी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हम पानी जो बचत करते हैं वो दैट बी वाटर जनरेटेड सोर्स होती है। सेकेंड, हमको एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर सिक्योरिटी में, एक तो रीयूज ऑफ वाटर और रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर और रिसाइक्लिंग ऑफ वाटर, ये सब इंडस्ट्री एरिया में होते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो वाटर सिक्योरिटी के, जो वाटर क्वालिटी के बारे में बोलेंगे, तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने बताया, अगर हम टीम्स तैयार करें और टेक्नोलॉजी को यूज करके और प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्रीकल्चर में 85% वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं इंडिया में, उनका वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत पुअर है, 30% या 33% वाटर यूज एफिशिएंसी है। अगर हम अच्छे टेक्नोलॉजी यूज करके, अच्छा इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके या ड्रिप इरिगेशन के ऐसे यूज करेंगे तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ऑफिशियल हम स्कीम्स तैयार करके लोगों को वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का सलाह दे और उनका सपोर्ट दे, जैसे अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स बताएंगे या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रचार करें, तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं और डेफिनेटली हमारा वाटर समस्या कम हो सकता है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न बना करके बल्कि जन भागीदारी से जोड़ने और जल उत्सव को बढ़ावा देने की बात कही है। आज के समय में जब जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना बदस्तूर जारी है, लेकिन भूजल का दोहन भी उतना ही हो रहा है, तो क्या जन भागीदारी अकेले इस समस्या का समाधान कर सकती है, या फिर हमें कानून या फिर आर्थिक प्रोत्साहन या स्थानीय संस्थाओं को इसके लिए आगे लाना पड़ेगा?
0: जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, सबका प्रयास है, सबको इन्वॉल्व करके जन भागीदारी से ही हम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया ग्राउंड वाटर का दोहन, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करने वाला देश है। हम पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए और ये इरिगेशन के लिए बहुत पानी ग्राउंड से निकाल के यूज करते हैं, तो हमको एक तो उसकी यूज कम करना पड़ता है, दूसरा उसमें रिचार्ज करने के लिए भी हमको प्रयास करना है। तो जन भागीदारी में अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो बहुत पानी हम बचा सकते हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, डैम्स बनाते थे, तो ये जो बारिश में जो पानी गिरते हैं वो एक साथ बह के कई एक जगह पर जाकर हम इकट्ठा करके वहां पे बड़े बड़े डैम्स बनाते, बतरागनांगल डैम ऐसे बनाते थे। बट अभी तो ये डैम्स बनाने में बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि वहां के एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम आता है, सबमर्जेंस के इश्यू आते हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें होते हैं। इसीलिए डिसेंट्रलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम दो कैप्स रेन कैंपेन जो प्रधानमंत्री ने किया वो किया। इसमें क्या किया, ये जन भागीदारी में होते हैं, बिकॉज हर एक व्यक्ति, हर एक गांव वाले, हर एक शहर वाले, हर एक आदमी इसमें अभियान में जुट सकते हैं। अपने घर में, अपने खेत में जितने भी बारिश आते हैं उसको अगर वो संचय करके रखेंगे तो वी कैन सेव ए लॉट ऑफ वाटर, वो तो भूजल का स्तर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसे डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक कैंपेन एंड ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री ने पानी बचाने वाली तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने की बात कही है और दुनिया के जो बेहतरीन तरीके हैं उनसे सीखने पर जोर दिया, यानी कि हम केवल अपने देश तक सीमित अगर ना रहें, भूजल बचाने के बारे में, जल संरक्षण के बारे में पूरी दुनिया से अगर अच्छी बातें सीख सकते हैं तो ये बहुत आवश्यक सी चीज है। आपको क्या लगता है इससे?
0: कई स्टेट लाइक इसराइल और नेदरलैंड्स, वो पानी में उनका बहुत दिक्कतें थे, तो उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी की यूज करके कई नए नए आविष्कार चला के पानी का बचत किया है, पानी का वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा है और जनता का जो वाटर की समस्या का हल निकला। आप देखे जाए तो इसराइल के ऐसा देश है जहां पे हमसे बहुत कम बारिश गिरती है और वहां पे 92% से ज्यादा पानी वो रिसाइकिल करके यूज करता है। एग्रीकल्चर में वो उसका जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एडवांस है, प्रिसिशन इरिगेशन बोलते हैं, जितना पानी चाहिए मतलब बूंद बूंद के हिसाब से वो मेजर करके पौधे को देते हैं और वो पौधा 100% वाटर यूज करते हैं। वो बड़ा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है बट ये एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहां पे जो रिसाइकिल का जो सिस्टम है वो इसराइल में यूज करता है। सिमिलरली नेदरलैंड में फ्लड को मैनेज करने के लिए वो कई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत सारे सिंगापुर में और श्रीलंका में है। तो हम बाकी देशों से भी जानकारी ले सकते हैं बट हमारे भारत में भी इतिहास में भी देखा जाए तो प्राचीन काल में भी हमारे जो पूर्वजों ने पानी को संभालने के लिए काफी कार्यक्रम किए थे, वो पानी को महत्व देते थे और कई जगह पे हमने टांगा देख सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी के बारे में सब जानते हैं और रानी की भाव है जो गुजरात में, तो कई जगह में ऐसे स्टेपल्स भी है। आपको याद है मोहनजोदड़ो में भी औरंगाबाद की बात करते थे और ड्रेन्स की बात करते थे और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात है। तो हमारे देश में भी बहुत सालों से वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोडक्ट चलते आ रहा था बट साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री ने कहा बाकी देशों से भी हम लर्न कर सकते हैं और उसका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी अशोक जी, हमारे देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में जो पानी इस्तेमाल होता है वो उपचारित करके उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें किस तरह की योजना बनानी चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए कि जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ पानी उसको हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके अन्य कामों में?
0: देखो दिस इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक तो जो पानी हम सुवेज से या इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी निकलते उसको ट्रीट करके हम इरिगेशन में, सिंचाई में काम लगा सकते हैं। सिंचाई में 100% प्योर वाटर देने की जरूरत नहीं है बट इसमें अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट करके हम ये पानी हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो 100% प्योर होना चाहिए। अगर हम सुवेज वाटर को ट्रीट करके सफिशियंट पैरामीटर्स सफिशियंट ला करके थोड़ा फॉस्फोरस ज्यादा रहता भी अब प्रॉब्लम है, वो इरिगेशन यूज करते हैं, वो पानी हम पी नहीं सकते मगर इरिगेशन के लिए काम आ सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स पे वाटर ट्रीट करके हम पानी सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं क्योंकि जहां पे तापमान बढ़ने से आइस और ग्लेशियर मिलकर के वो किसी लेक में डाल के वहां से वो पानी बहुत जोर से बाहर आ जाते हैं, इसी की वजह से वो बाढ़ हुए थे। इसमें हमारे वैज्ञानिकों को बहुत साउथ सैटेलाइट इमेजरी सब यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वी कैन प्रेडिक्ट दी फ्लो वाटर फ्रॉम दिस लेक्स. तो अगर हम सैटेलाइट मैपिंग करके या ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करके गॉल्फ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मिल्टिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो देन वी कैन प्रेडिक्ट फ्लड एंड रिड्यूस द डैमेज, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेफिनेटली हमारे IITs और टेक्नोलॉजी ISRO जैसे इंस्टीट्यूशंस को इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं.
1: जी अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए. तमाम प्रश्नों

0: उत्तर देने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

बैजू बावरा फिल्म का नगमा अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए। फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा अभी आप सुन रहे थे राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश समाज फरमाइए फिल्म है गोकुल का चोर, आवाज है सुधा मल्होत्रा की।

मंगेशकर की आवाज में ही नगमा अपने लम्हे फिल्म से सुना। अब सुनिए पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल को, फिल्म है बाजीराव मस्तानी।

इस नगमे के साथ ही आज का मेरे पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है कृष्ण जन्म रास लीला।

0: कंस महाराज की जय। कंस महाराज की जय।
1: दीवान जी कहो, दीवान जी हमारी प्रजा में सब कुशल तो है, हमने जो अपने पिताजी को जेल में डाले तो ठीक क्यों ना।
2: जी महाराज आपकी सब जगह जय जय जय रही है, और ब्राह्मण के मुंह में लड्डू की जगह पत्थर भरवाए दिए गए हैं। जब यज्ञ हवन सब महाराज की आज्ञा से बंद करवाए दिए हैं।
1: अच्छा तो गाना बजा रहे हो दरबार।
2: क्यों आज्ञा महाराज,

0: दीवान जी
1: हाँ महाराज,
0: पिताजी की अक्कल तो सठियाए गई है, तो बिल्कुल तो आप जेल में डाल दियो हमने।
1: महाराज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: और दीवान जी
1: हाँ महाराज,
0: अब आवश्यक कार्य तो हमें ही करने हैं।
1: हाँ महाराज।
0: दीवान जी
1: हाँ महाराज,
0: वो जो हमारी बहन देवकी है शादी की योग्य है गई है, वाके लिए कोई भर तलाश करो।
1: यह काम को तो पंडित कालीदास जी कर सके, पंडित कालीदास जी।
0: हाँ। तो पंडित कालीदास जी।
1: ए दूत हम है, पवन की गति सो जाओ और पंडित कालीदास को बुलाए के लाओ। या जल्दी से लाओ पंडित कालीदास को बुलाए के। आपकी महाराजा धीराज महाबली कंस महाराज ने याद कियो है।
0: हाँ
1: कंस ने याद कियो।
0: हाँ
1: कंस ने याद कियो। कंस ने याद कियो महाराज।
0: हाँ कंस ने याद कियो महाराजा धीराज, कंस ने याद कियो।
1: हाँ महाराज, पंडित कालीदास जी दरबार में उपस्थित हैं।
0: कैसे याद कियो महाराज?
1: एक तहसिलो, दो तहसिलो, बारह आठ अठारह, बारह आठ अठारह, इल्लो बिल्लो तिल्लो, राखे देव तुम्हें तहसिलो।
0: कालीदास, ये इल्लो बिल्लो तिल्लो कहाँ लगाई है?
1: अजी सरकार, एक सहस्त्र नेत्र वाले, दो सहस्त्र नेत्र वाले, बारह आठ अठारह नेत्र वाले और एक नेत्र वाले।
0: कालीदास, कौन एक नेत्र वाले?
1: अजी महाराज, हमारे गुरु शुक्राचार्य जी।
0: और दो नेत्र वाले?
1: अजी भगवान विष्णु।
0: क्या लगाई है? विष्णु विष्णु कौन विष्णु? कैसा विष्णु? कहाँ रहे हैं वो विष्णु?
1: अरे वही विष्णु जो आपके डर से क्षीर सागर में रह गए हैं।
0: बहुत अच्छा। और तीन नेत्र वाले कौन
1: महाराज? नहीं नहीं, अरे वो वही भगवान शंकर तीन नेत्र वाले आपकी रक्षा करें।
0: अब हमारी बहन देवकी के योग्य कोई फर बताइए, ताकि पिताजी को गद्दी से हटाए दे के बाद हम अपनी जिम्मेदारी को पहला कार्य यही कर सके।
1: महाराज बहुत ही उत्तम विचार है, बहुत ही उत्तम विचार है। जहाँ तक देवकी के वर देखने को प्रश्न है, तो महाराज यह विश्व में ऐसा दूसरा राजा कहाँ है जो आपकी बराबरी कर सके।
2: हाँ महाराज, पंडित कहेगा कि ठीक कह रहे हैं महाराज।
1: पर हाँ महाराज, एक वर बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुशील, बटेश्वर निवासी सूरसेन जी के पुत्र श्री वसुदेव जी हैं।
0: कालीदास तुम ठीक कह रहे हो, हमारी बराबरी कौन कर सके है। अच्छा यदि तुम ठीक समझो तो मैं वसुदेव से कह दो कि देवकी से विवाह के लिए बारात लेके आ जाए।
1: जो अर्जन

0: महाराज झावर तो उधार दी नहीं गई है, अब बसदेव जी जायरे की कह रहे हैं।
1: अच्छा
0: हाँ महाराज,
1: मेरे रथ को सजवाओ, मैं स्वयं देव जी को पहुँचाए भेज जाऊंगा।
0: जो आ जाऊंगा।

0: the heart in a
1: मेरा काम तहत है मेरा काम नहीं ऐसा नहीं है सके ऐसा नहीं है सके नहीं है सके।

0: वसुदेव, या तो कहा भरोसा है कि तुम हमारे संग में कोई छल लाए करोगे। बोला वसुदेव, बोलो, कछु तो बोलो। अच्छा दूत, इनको हथकड़ी बेड़ी डाल के कारागार में बंद
1: करो। आज्ञा महाराज। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूं, या तो भी कोई उपाय करें, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी।

0: रहा हूँ।
1: कहो पृथ्वी जी, कहाँ बात है?
0: हे ब्रह्मा जी, आप देवी भगवान विष्णु के पास चलो, तो मेरे सातन को चली जाऊंगी।
2: अच्छा पृथ्वी जी, अच्छा पृथ्वी जी, हम सभी मिलके भगवान विष्णु के समीप ही सागर में चले हैं।

0: कहो पृथ्वी जी, कहो महादेव, आज यह क्षीर सागर में कैसे अन्न भयो?
1: महाराज, आप तो सबन की घट घट की जान विवारी हो। नाथ, यह समय पृथ्वी पे अपार दुख के बादल छाए रहे हैं, विपदान के पहाड़ खड़े हैं और दिशी दिशान में त्राय त्राय मच रही है, त्राय त्राय मच रही है। पापी कंस के अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोक लोकन में चीत्कार है रहे है भगवान।
0: अभी मति हो देवताओं, अभी मति हो, शरणागत की रक्षा।

देवी वसुदेव के घर में जन्म लूंगो और गोकुल में बाल चरित करूंगो। तुम सब गोपी गाय बछड़ा ग्वाल बाल बनी है मेरी।

0: हम सुन रहे थे कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर रासलीला। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: अब आप अर्जुन अली खान से खबरें सुनिए। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट JSLV-F17 के जरिए कुरैश के मुशाहदे से मुतालिक अपना सैटेलाइट EOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की एहतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीम बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मुआवनत के लिए इमदादी सामान के साथ दो और तैयारे वहां भेजे हैं। और खवातीन क्रिकेट में दुबई में भारत ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में हांगकांग को 137 रन से करारी शिकस्त देकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट JSLV-F17 के जरिए कुरैश के मुशाहदे से मुतालिक अपना सैटेलाइट EOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। 27 घंटे की उल्टी गिनती के बाद सैटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट JSLV-F17 को सतीश धवन खलाई मरकज के दूसरे लॉन्च पैड से रात देर गए 2:55 पर छोड़ा गया। इसरो ने कहा है कि 2367 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को इसके छोड़े जाने के तकरीबन 18 मिनट बाद मुतालिक मदार में पहुंचा दिया गया। EOS-05 कुरैश का मुशाहिदा करने वाला जदीद तर्ज का सैटेलाइट है और यह जमीन के मुतवाजी मदार में पहुंचाया जाने वाला पहला इमेजिंग सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट कम वक्त में वसी इलाकों की तस्वीरें फराहम कर सकेगा जिससे कुरैश का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मुस्तहकम होगी। सैटेलाइट से हासिल होने वाले डेटा का इस्तेमाल ज़राअत कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में मुआवनत के लिए किया जाएगा। यह सैटेलाइट कुदरती आफात की सूरत में बर वक्त जानकारी फराहम कर सकेगा और इस तरह मुतालिका हुकाम को एमरजेंसी सूरतेहाल से निपटने की खातिर फौरी तौर पर इकदामात करने में मदद मिलेगी। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने कहा है कि इस मिशन से कुरैश का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मुस्तहकम होगी और मुतालिका खिदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी। इस मिशन से अंदरूनी मुल्क तैयार की गई खलाई रॉकेट की तकनीक में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की भी अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट JSLV-F17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी इख्तरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की एक और गिरां कदर कामयाबी और मुल्क के लिए एक फख्री लम्हा करार दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने JSLV-F17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने को सराहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज कयादत के तहत भारत की खलाई सलाहियत नई बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है जिससे आलमी सतह पर एक खलाई ताकत के तौर पर हमारी पोजीशन मजबूत से मजबूत तर हो रही है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीम बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल इस मुश्तरका कमेटी के सरबराह होंगे।

में लोकसभा से जो सरकर्दा नाम शामिल हैं उनमें भर्तृहरि महताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी कमेटी में शामिल होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 12 अगस्त को गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद गौर वखोज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को भेजे जाने की मंजूरी दी थी। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक कानून 2010 में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना भी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। इस फोरम में ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के सुदूर और आला जुडिशियल रहनुमा शिरकत करेंगे। मस्कोड़ा फोरम के जरिए इंसाफ की फराहमी, बैन अवी तनाजियात के तस्फीये, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मामलात पर तबादले ख्याल का मौका फराहम होगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत पहले दिन जुडिशियल वफूद के सरबराहों के साथ कई दोतरफा मीटिंगें करेंगे। वो रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मुत्तहदा अरब अमारात, बेलारूस, कजाखिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के जुडिशियल रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1282 हो गई है, जबकि इस सानहे के एक हफ्ते से ज्यादा गुजरने के बाद 5000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक चितवन में सबसे ज्यादा तादाद में 355 लाशें बरामद की गईं। वज़ीर-ए-आज़म बरिंदर शाह ने कहा है कि इस सानहे से मुंसलिक आबोहवा की तब्दीली का मामला बैन अल-अक़वामी बिरादरी के साथ लाजमी तौर पर उठाया जाना चाहिए, जबकि लापता मकामी अफराद के कुनबे के लोग अलामती आखिरी रसूम अदा कर रहे हैं। इस दौरान नेपाली फौज की क्यादत में मुश्तरका बचाव टीमें अपनी तलाश कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और सुरंगों से मुतालिक भारतीय बचाव टीम ने सैयब रुबेसी में अपना बेस कायम कर लिया है ताकि कार्रवाइयों में तेजी लाई जा सके। भारत ने नेपाल के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदाद और राहत कार्रवाइयों में मदद फराहम करने के लिए इमदादी सामान के साथ मजीद दो तैयारी भेजे हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर दोनों C-130J तैयारे कठमंडू में उतरे हैं। इमदादी सामान नेपाल के साइंस और टेक्नोलॉजी और इख्तरा के वजीर महावीर पन के सुपुर्द किया गया। आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए मथुरा और वृंदावन में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश मथुरा में हजारों मंदिरों को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इनमें बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इश्कॉन मंदिर और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर मुर्मू ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की हयात और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफे को मानवीयत अता की। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के रूहानी पैगाम से बेलौस खिदमत की तरगीब मिलती है, जिसने हमेशा इंसानियत को रहनुमाई फराहम की। उन्होंने दुआ की कि भगवान श्रीकृष्ण की अकीदत का ये मौका हर किसी की जिंदगी में मजबूत तवानाई लेकर आए और सबको कुव्वत फराहम करे। खवातीन क्रिकेट में कल रात दुबई में ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में भारत हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का निशाना मिला था, लेकिन इसकी पूरी टीम 16 ओवर्स और 2 गेंदों में महज 56 रन पर ऑल आउट हो गई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हवाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से हवाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कोरायर्स के मुशाहदे से मुतालिक अपना सेटेलाइट EOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में मिस मैरी फिल्म का नगमा भी आपने सुना। अब सुनिए हेमंत कुमार और सुधा मल्होत्रा को फिल्म है नरसिंह भगत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा भी आपने सुना, फिल्म थी टक्कर। अब सुनिए खुददार फिल्म का नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ।

0: गीताबत और मन्ना डे की आवाजों में ये नगमा आपने देवदास फिल्म से सुना। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है दादा भाई नौरोजी।
1: हमारी तहरीक आजादी के अव्वलीन दौर में जिन कौमी रहनुमाओं ने मुल्क व कौम की क्यादत की उनमें दादा भाई नौरोजी का नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 ईस्वी को बम्बई में पैदा हुए थे। उनके वालिद नौरोजी पालन जी की वफात उनकी पैदाइश के 4 बरस बाद ही हो गई थी, इसलिए दादा भाई की तालीम और तरबियत उनकी वालदा मानक बाई की निगरानी में हुई। इब्तदाई तालीम की तकमील के बाद उन्होंने 1845 ईस्वी में एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए पास किया और फिर वो इसी कॉलेज में नेचुरल फिलोसफी और हिसाब के असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हुए। बाद अजा 1855 ईस्वी में वो तिजारत के सिलसिले में लंदन चले गए, मगर हिंदुस्तान आते जाते रहे। 1856 ईस्वी में उन्हें लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में गुजराती का प्रोफेसर नामजद किया गया और तकरीबन एक दहाई तक वो इस मनसब पर काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने तालीम के फरोख के सिलसिले में बड़ी अहम खिदमात अंजाम दी। वो लिवरपूल काउंसिल और नेशनल इंडियन एसोसिएशन से वाबस्ता रहे। 1865 ईस्वी में उन्होंने WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी कायम की और उसके सदर मुंतखब हुए और ताहयात उसके एजाजी सदर रहे। उन्होंने लंदन ज़ोरोअस्ट्रियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बुनियाद रखी और उसके सेक्रेटरी मुंतखब हुए। हिंदुस्तान वापसी पर वो बड़ौदा के दीवान मुकर्रर हुए, मगर वाली रियासत और अंग्रेज रेजिडेंट से इख्तलाफात के सबब मुस्तफी हो गए। 1875 ईस्वी में उन्हें बम्बई म्यूनिसिपल कारपोरेशन का रुकन मुंतखब किया गया और फिर कारपोरेशन की टाउन काउंसिल का मेंबर चुन लिया गया। 1876 ईस्वी में वो फिर लंदन जा बसे, मगर फिर हिंदुस्तान में उन्हें बम्बई का जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किया गया और वो दूसरी मरतबा बम्बई म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मेंबर मुंतखब हुए। 1885 ईस्वी में उन्होंने बम्बई की मजलिस कानून साज की रुकनियत कबूल कर ली और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के नायब सदर बनाए गए। इसी साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के कयाम के सिलसिले में उन्होंने गरा कदर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने फासेट कमेटी, पब्लिक सर्विस कमीशन, वेलबी कमीशन और इंडियन करेंसी कमीशन के रूबरू शहादतें पेश करके हिन्दुस्तान के मसाइल की जानब बरतानवी हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई। उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स की रुकनियत का शरफ हासिल था। दादा भाई नौरोजी एक नामवर सहाफी भी थे। उन्होंने वॉयस ऑफ इंडिया नामी अखबार जारी किया और गुजराती जरीदे ज्ञान प्रकाश की अदारत की। उन्होंने गुजराती हफ्तरोजा रास्त गुफ्तार जारी किया और वॉयस ऑफ इंडिया को इंडियन स्पेक्टेटर में जम कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान के बेशुमार रसायल और अखबारात में हिंदुस्तान से मुतालिक मजामीन लिखे और अपने वतन के मसाइल से लोगों को वाकिफ कराया। उन्होंने पॉवर्टी ऑफ इंडिया के उनवान से एक किताबचा कलम बंद किया और लंदन से पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामी एक किताब शाये की। दरअसल वो हमारी मुल्की मईशत के सिलसिले में बहुत फिक्रमंद रहा करते थे। हिंदुस्तान से गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने कई मंसूबों को अमली शक्ल देने की कोशिश की। उन्होंने ईरानी फंड, पारसी जिम्नेजियम, बेवाओं की शादी की अंजुमन, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम भी कायम किए। उन्होंने अपनी नायाब किताबों का तोहफा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पेश किया था। दादा भाई नौरोजी ने 3 मरतबा इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत की और हर बार उन्होंने इस अंजुमन के वकार में इजाफा किया। 1906 ईस्वी में तीसरी मरतबा कांग्रेस की सदारत करते हुए कहा था कि हम किसी एहसान के तालिब नहीं, हम सिर्फ इंसाफ के हुसूल के मुतमन्नी हैं। हम पूरे मसले को एक ही लफ्ज में खुद मुख्तार हुकूमत के नाम से मौसूम कर सकते हैं या इस किस्म के स्वराज से ताबीर कर सकते हैं जो इंग्लिस्तान या उसकी नौ आबादियात में राइज है। वो बरतानवी इंतजामिया के नुक्ताचीन थे और हिंदुस्तान के इस्तेहसाल पर खफा थे। वो एक बड़े मुकर्रर थे और सामईन पर अपनी तकरीर से जादू कर देते थे। वो समाजी मुसलह भी थे और हिंदुस्तानी खवातीन की तरक्की और उनकी तालीम के सिलसिले में हमेशा सरगर्म रहे। ہندوستان اور برطانیہ میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے خیالات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ سادگی پسندی اور بلند خیالی میں یقین رکھتے تھے اور اس کی چلتی پھرتی مثال تھے۔ وہ بڑے محب وطن اور قوم پرور تھے۔ دفشا عیدل جی واچا کے الفاظ میں وہ ہندوستانی سیاسیات اور اقتصادیات کے عظیم مفکر تھے۔ وہ ہر ہندوستانی کی مدد کرنا اپنا فرض تصور کرتے تھے۔

0: सुन रहे थे आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में लगान फिल्म का नगमा। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है प्रस्तुत।

0: कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और बेल्जियम के बीच सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभुदयाल और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री श्री थियो फ्रैंकिन और अधिकारियों व बिजनेस लीडर्स का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भी भारत आया है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री डी वेवर की यह पहली भारत यात्रा है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर प्रभु दयाल। अम्बेसडर दयाल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: अम्बेसडर दयाल, बेल्जियम के प्रधानमंत्री की मौजूदा यात्रा के संदर्भ में क्या आप हमें भारत बेल्जियम संबंधों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि बता सकते हैं?
2: बेल्जियम यूरोपियन देशों में बिल्कुल पहले स्तर पर है जिन्होंने भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की थी सितंबर 1947 में, जब भारत जस्ट आजादी हुआ था। और इस तरह से धीरे धीरे करके एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बन गई दोनों कंट्रीज में, जो कि स्थापित है डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और प्लूरलिज्म के आइडियाज पे। तो ये एक हिस्टोरिक फाउंडेशन है जिसके बैकड्रॉप में बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर बार्ट डी वेवर अभी भारत आए हुए हैं, और उनकी जो यात्रा 2 से 4 सितंबर की है, ये एक तरह से माइलस्टोन है बायलैटरल एंगेजमेंट्स में। जो भारत और ईयू का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है हाल में, उसके साथ एक तरह से ये कोइंसाइड करती है। तो कई डिकेड से जो इकोनॉमिक टाइज है भारत और बेल्जियम के, वो बहुत अच्छे रहे हैं, और बायलैटरल ट्रेड $13 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन बायलैटरल ट्रेड के अलावा जो हमारी रिलेशनशिप है, ये बड़ी डाइवर्सिफाइड है, और कई क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब में हमारे जो रिश्ते हैं फैलते जा रहे हैं। और अब तो कुछ स्ट्रेटेजिक डोमेन्स जैसे स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन, इन तक भी हमारे संबंध अब बढ़ गए, और जो हमारे कई स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको और ताकतवर बनाने की कोशिशें, जैसे भारत की जो एक कोशिश है परमानेंट मेंबर बनने की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका बेल्जियम हमको हमेशा से सपोर्ट करता है। तो इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण।
1: अम्बेसडर दयाल, हम कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बेल्जियम संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में क्या कहा।
3: फ्रेंड्स, इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज हमने इन संभावनाओं को ठोस परिणामों में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फ्रेंड्स, बेल्जियम की कंपनीज के लिए हमने भारत में इन्वेस्टमेंट फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म का गठन किया है। हमने इंडिया बेल्जियम बिजनेस फोरम को एक रेगुलर मैकेनिज्म बनाने का निर्णय लिया है। हम दोनों देशों की फाइनेंशियल, फिनटेक और रेगुलेटरी संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे, और इन सभी पहलों से हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे।
1: अम्बेसडर दयाल, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना ज्वाइंट प्रेस वार्ता में, तो दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और गहरा करने का एक संकल्प लिया है, और दोनों नेताओं का ये मानना है कि अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना किया जा सकता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि दोनों देशों के बीच में $13 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है, और दोनों नेताओं का ये मानना है कि अगले 5 वर्षों में उसको दुगना किया जा सकता है। आपके विचार में ये कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिन पर दोनों देश साझेदारी को दुगना करने के लिए और अपना ध्यान दे सकते हैं?
2: अभी तक जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत हद तक डायमंड ट्रेड पे बेस्ड रहे हैं, लेकिन अब जो है हम कोशिशें कर रहे हैं कि ये कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक फैल जाएं।

0: और जो हमने स्पेसिफिकली टारगेट किए हैं सेक्टर्स वो हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र है, इसमें बेल्जियम का जो एक आईमेक इंस्टीट्यूट है वो भारत के इकोसिस्टम में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो रहा है। तो इसके अलावा दोनों कंट्रीज हैं वो फोकस कर रही हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे, फार्मास्यूटिकल्स, लाइफ साइंसेज, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसको फिनटेक कहते हैं, मैरिटाइम, पोर्ट लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम्स पे भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है दोनों देशों की तरफ से। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से ब्लूप्रिंट है, ये भारत और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे उसको बहुत बढ़ावा मिला है। और साथ ही साथ हमारे जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाए गए उनसे कोशिश है कि क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट तेजी से हो सके।
1: अम्बेसडर दयाल, आगे बढ़ते हुए आपने कार्यक्रम की शुरुआत में इंडिया ईयू एफटीए का जिक्र किया था, तो इसी में आपसे मैं थोड़ा और विस्तार से ये जानना चाहूंगी कि आखिर भारत ईयू पार्टनरशिप जो एफटीए में हुई है उससे भारत बेल्जियम के आर्थिक साझेदारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
0: देखिए, जो इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे जो भारत और बेल्जियम के बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस है इनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे ट्रेड बैरियर्स हटते हैं और ग्रोथ की नई दिशाएं खुलती हैं, नए रास्ते खुलते हैं। अब जो भारत का ईयू के साथ ट्रेड बढ़ रहा है उसमें बेल्जियम जो है वो दूसरे स्थान पर है। जो हमारे ईयू कंट्रीज के साथ ट्रेड है उसमें बेल्जियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, नंबर दो पे आ रहा है। और इसकी वजह से बेल्जियम को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अगर टैरिफ कम होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पे, केमिकल्स और मशीनरी पे, इन सब से जो ये बायलैटरल ट्रेड बहुत बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा जो ये ईयू और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे जो कस्टम्स ड्यूटीज कम हुई हैं दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और ईयू की तरफ से, और जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस है वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इसकी वजह से जो ट्रेडिंग प्रोसीजर्स है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज वो बहुत बढ़ती जाएंगी। इसके अलावा देखिए, जो ओवरऑल पार्टनरशिप जैसे तंदुरुस्त होती है तो जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं जैसे डायमंड ट्रेड, इनको ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ावा मिलता है और इनकरेज मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एक लीगल फ्रेमवर्क ज्यादा अच्छे होने की वजह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और बेल्जियम का, इससे जो सप्लाई चेन है उसको तंदुरुस्ती मिलेगी और साथ ही साथ जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इनके लिए भी बहुत अच्छा रास्ता खुलेगा।
1: अम्बेसडर दयाल, आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि कई सारे एमओयू पे भी हस्ताक्षर किए हैं दोनों ही नेताओं ने, डिफेंस के क्षेत्र यानी कि रक्षा के क्षेत्र और ऊर्जा के क्षेत्र में। तो आप क्या हमें संक्षेप में दोनों ही एमओयूज के जो महत्वपूर्ण विभिन्न पहलू हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं।
0: देखिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है इसमें दोनों नेशंस ने बड़ा महत्वपूर्ण विस्तारित क्षेत्र से संबंधित एमओयू साइन किया है, जिसमें कोलैबोरेशन होगा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन्स के संबंध में, और साथ ही साथ जैसे ऑफशोर विंड, सोलर एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और स्टोरेज प्लांट्स ऐसे जो पंप स्टोरेज से यूज करते हैं, इन सब से संबंधित कोऑपरेशन की बात है। तो ये जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो जैसे हम बना रहे हैं ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट और एक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो दोनों देश मिलकर स्थापित हमने की है आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा में, तो इसके साथ ही जो डिफेंस सेक्टर इसमें हमारे दोनों देशों ने बड़े इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए हैं जिनका फोकस है इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप पे और साथ ही साथ मिलिट्री एक्सचेंजेस पे, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे और एजुकेशन पे। अब जैसे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में यह है कि दोनों कंट्रीज साथ मिलकर कंबाइंड एफर्ट से एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर बनाएंगे। खासतौर पे बेल्जियन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भारत के मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोलैबोरेट करके एक टैंक बनाएगी जिसका नाम रखा गया जोरावर लाइट टैंक। तो ये जो टैंक प्रोजेक्ट है, जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन की जो स्थापना की गई है और जो हम इसमें बढ़ावा देख रहे हैं, इस संबंध में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है।
1: बेल्जियम

0: प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर का कहना है कि वो दिसंबर में ब्रसल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को और गहराई मिलेगी और मजबूती मिलेगी और उनके साझा भविष्य की ओर एक मजबूत कदम होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: मिस्टर मोदी, बिफोर आई कंक्लूड, लेट मी से हाउ मच आई लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू इन ब्रसेल्स इन दिसंबर एंड मेबी एंटवर्प। इट विल बी सच अ ग्रेट ऑनर टू रिसीव यू ऑन एन ऑफिशियल विजिट ऑन द ओकेशन ऑफ द साइनिंग ऑफ द ईयू इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। योर विजिट विल प्रोवाइड एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू आवर कन्वर्सेशन। इंडिया एंड बेल्जियम हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री दैट रीचेस बैक सेंचुरीज। टुडे वी हैव शोन दैट वी आल्सो शेयर अ फ्यूचर। आई केम टू न्यू दिल्ली बिकॉज़ आई बिलीव द बेस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप इज येट टू कम एंड आफ्टर आवर कन्वर्सेशन टुडे आई एम इवन मोर कन्विंस्ड ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर एंड थैंक ऑल ऑफ यू।
0: आखिर में अम्बेसडर दयाल, बहुत ही संक्षेप में आपसे आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। जब हम किन्हीं दो देशों को देखते हैं तो उनके बीच में पीपल टू पीपल टाइज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जब हम भारत और बेल्जियम को देखें जिनके इतने पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो आपके विचार में भारत और बेल्जियम के पीपल टू पीपल टाइज कितने प्रगाढ़ हैं और कैसे इनको मजबूती मिल रही है?
2: देखिए, जो पीपल टू पीपल टाइज है इंडिया और बेल्जियम के बीच में, इनकी जो स्थापना इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण होती है कि हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, लगभग 35,000 नागरिकों का, जो बेल्जियम में रहता है और वहां काम करता है। साथ ही साथ हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो हमारे रिश्ते हैं वर्ल्ड वॉर वन तक पहुंचते हैं, जहां लगभग 130,000 भारतीय सैनिकों ने लड़ाई की थी बेल्जियम में, बेल्जियम बचाने के लिए। इसकी वजह से वहां पर एक मेमोरियल बनाया गया है जिसको कहते हैं मेनिनगेट मेमोरियल, बेल्जियम में है। साथ ही साथ देखिये, आज के युग में एंटवर्प में जो ग्लोबल डायमंड ट्रेड है, इसमें भारत के बिजनेसमैन वहां हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एजुकेशनल एक्सचेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, भारत से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स अब बेल्जियम में हैं, जैसे सिटीज खासतौर पे उनको आप देखेंगे ब्रसल्स में और ल्यूगो में एवरी ईयर वो जाते हैं, और इसकी वजह से जो लोकल टेक वहां है और एकेडमिक सेक्टर्स, उनको बड़ा फायदा होता है। साथ ही साथ देखिए, दोनों कंट्रीज को जो कल्चर से बहुत प्यार है, कल्चरल फेस्टिवल्स से, बेल्जियम में भारत की जो मूवीज है बॉलीवुड की, इनको बहुत चाहा जाता है, और इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स जो है वहां पर बड़ी पॉपुलर है, और इससे ये हमेशा जो कल्चरल टाइज है इनको बहुत बढ़ावा मिलता है। तो मेरे विचार में ये पूरी जो टोटल पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये बहुत तंदुरुस्त और अच्छी है और सही दिशा में बढ़ती जा रही है।
0: अम्बेसडर दयाल, आप आज आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने इतने विस्तार से हमें भारत बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों पर जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और बेल्जियम के बीच सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से आलमी खबरें सुनिए। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट JSLV F-17 के जरिए कुरे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सैटेलाइट EOS 05 کامیابی کے ساتھ چھوڑا ہے۔

मेरा मेरे से 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुरे अर्ज के मुशाहदे से मुतालिक अपना सैटेलाइट EOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा है। सरकार ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 का जायजा लेने के लिए 31 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट आज नई दिल्ली में शुरू होने वाले ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम की मेजबानी करेगी। भारत ने नेपाल में सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी राहत और बचाव कोशिशों में मुआवनत के लिए इमदादी सामान के साथ दो और तैयारे वहां भेजे हैं। तो ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: ये सच्चे दोस्तों की कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो दिल के कोने में हमेशा के लिए बस जाती हैं, जिनका हर सीन कल्ट बन जाता है। इस फिल्म में हमें मनोज बाजपेयी, जीडी चक्रवर्ती, सौरभ शुक्ला, परेश रावल, उर्मिला मातोंडकर, गोविंद नामदेव, मकरंद देशपांडे, शेफाली शाह, नीरज वोरा, सुशांति सिंह जैसे एक्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपने अपने रोल में भरपूर अभिनय किया है। और ये फिल्म ऐसी रही जो रिलीज होते ही फ्लॉप साबित तो हुई, लेकिन हफ्ता बीतते बीतते ही अचानक थिएटर्स में मूवी के टिकट ब्लैक में बिकने लगे और आगे चलकर फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। बॉलीवुड की बेहतरीन गैंगस्टर बेस्ड क्राइम थ्रिलर फिल्मों में से एक ये फिल्म रिलीज के कई साल बाद तक फैन फॉलोइंग के साथ आगे बढ़ती रही। इस फिल्म के बारे में करेंगे आगे और भी बातें, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम।
1: मैं आपको दे डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, वेलकम बैक। आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, आपका शो चल रहा है एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं 1998 की फिल्म सत्या के बारे में। 90 के दशक में जहां गैंगस्टर फिल्मों को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाते थे, वहीं सत्या फिल्म ने मुंबई अंडरवर्ल्ड का असली चेहरा सामने रखा। फिल्म में किरदारों को आम इंसानों की तरह दर्शाया गया, तो जुर्म की दलदल में फंसे हुए लोगों को बिल्कुल ऐसा दिखाया गया जैसे जीवन के सामने वो दृश्य चल रहा है। अपराधियों के मानवीय पहलू जैसे उनका परिवार, उनका सुख दुख और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत करीब से दिखाने की कोशिश है सत्या। इस फिल्म में भीखू मात्रे और उसकी पत्नी प्यारी मात्रे उर्फ शेफाली शाह का किरदार इसके बेहतरीन उदाहरण है। तो फिल्म के बारे में आगे भी बात करेंगे। और सत्या में जो इस फिल्म में सत्या बने थे वो थे मनोज बाजपेयी। रामगोपाल वर्मा ने शुरुआत में मनोज बाजपेयी को मुख्य किरदार सत्या के रोल के लिए साइन किया, लेकिन जैसे जैसे स्क्रिप्ट पर काम बढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म के सबसे अहम गैंगस्टर किरदार भीखू मात्रे के लिए एक ऐसे अभिनेता की जरूरत है जिसकी हिंदी पर मजबूत पकड़ हो। इसके बाद मनोज बाजपेयी को भीखू मात्रे का आइकॉनिक रोल मिला और मुख्य भूमिका जेडी चक्रवर्ती के पास चला गया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

इस फिल्म के सभी कलाकार, एक्टर्स और इस फिल्म से जुड़े सभी लोग दोस्तों न्यूकमर्स थे, जिन्हें राम गोपाल वर्मा अपने साथ लाए। मुंबई अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर बेस्ड इस फिल्म में सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि फिल्म के कई सीन सेट पर ही लिखे गए और जिस समय ये फिल्म आई उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया, वहाँ के लोग, सारे पहलुओं को निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने इस कहानी में पिरोकर बनाई थी सत्या। जानते हैं, जिस दिन फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी उस दिन इस फिल्म की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, जिसमें मनोज बाजपेयी द्वारा निभाया गया भीखू मात्रे का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया। उनका संवाद मुंबई का किंग कौन भीखू मात्रे आज भी कल्ट माना जाता है। इस दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो चलिए सुनते रहिए मेरे साथ एक ही फिल्म से में आज सत्या फिल्म का ये सफर।

1998 की रिलीज फिल्म सत्या रामगोपाल वर्मा की फिल्म की बात हो रही है, एक ही फिल्म से के आज के सफर में। और आप सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हम बताना चाहते हैं, ipradiodelhi@gmail.com पर आप बता सकते हैं आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हमारा जो हमारी प्रतीक्षा है आपके संदेशों के लिए, और आप सुनते रहिए हमारे साथ इस सफर में आज की कहानी। फिल्म की पटकथा और संवाद अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला ने लिखे। उन्होंने किरदारों की भाषा को मुंबई या टच में रखा, जैसे कल्लू मामा सौरभ शुक्ला ने उस रोल में काम किया, और उनका जो गाना था गोली मार भेजे में, उस गीत ने ये कमाल कर दिया कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में बना था दोस्तों, बिना कोरियोग्राफर के शूट हुए। और जानते हैं इस गीत के फिल्मांकन का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा ये रहा कि फिल्म के संपादक अपूर्व असरानी बी रोल शूट करने गए थे और तब वर्ली में पूनम चेंबर्स की बिल्डिंग गिरी थी, इसलिए पुलिस किसी को वहां जाने नहीं दे रही थी। तब अपूर्व ने स्लम के पीछे वाले रास्ते से चुपके से वहां पर प्रवेश किया और 2 शॉट ले लिए। वही शॉट टाइटल में बम ब्लास्ट के रूप में दिखाए गए और गीत गोली मार भेजे में वो शामिल किए गए। तो चलिए सुनते हैं इस

इस फिल्म को पसंद करने वाले बहुत सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके संदेश हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और अमित आहूजा जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी जानकारी उन्हें बहुत रोचक लग रही है। बहुत शुक्रिया। और अगला संदेश है हीरामणि वर्मा का, दतरंगी भाटापारा से, उन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जन्माष्टमी की बधाई के साथ एक ही फिल्म से की प्रस्तुति को सुन रहे हैं हमारे श्रोता साथी संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और उसी तरह हमारे एक श्रोता साथी हैं, ये हैं सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से और इन्हें भी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, और उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद है और जानकारी भी अच्छी लग रही है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांतिनगर सोनीपत से और उन्हें भी कार्यक्रम बहुत रोचक लग रहा है। और हमारे साथ हैं प्रेम सागर, शुभ, लता, खजाना गेट अमृतसर से, वो भी कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे एक और श्रोता साथी हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंगनिया, नमन ढिंगनिया और अपार ढिंगनिया, और इसी तरह से शाइना हसन, सैयद मसरूर, अक्सा अदीब, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं। भवरपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन हैं और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक कार्यक्रम सुन रहे हैं। और धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद और बेबी आलिया और अयान बाबू सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और जानकारी उन्हें बहुत अच्छी लग रही है और उन्हें ये फिल्म भी पसंद है। जी बहुत शुक्रिया। और आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, एक ही फिल्म से के इस सफर में। और सत्या से जुड़ी बातें, सत्या का संगीत विशाल भारद्वाज ने तैयार किया, गाने के बोल गुलजार ने लिखे, विशाल भारद्वाज का संगीत और संदीप चौटाला का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की जान बने। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के थ्रिल को कई गुना बढ़ाने वाला था। फिल्म की शूटिंग के लिए हैंड हेल्ड कैमरों और रियल लोकेशंस यानी मुंबई की जो तंग चौल थी उनका चयन किया गया और वहां ही सारी शूटिंग हुई। और दर्शकों ने ये महसूस भी किया होगा कि खुद उस माहौल को उन्होंने उस फिल्म में भी देखा होगा। सत्या ने बॉलीवुड को जो घिसे पिटे फॉर्मूले थे उससे बाहर निकाला और नए निर्देशकों को, उन्होंने अभिनेताओं को तरक्की के लिए नए रास्ते खोलकर दिखाए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

क्लाइमेक्स में गणपति विसर्जन वाला मर्डर स्क्रिप्ट में था ही नहीं और एडिटिंग में विसर्जन के फुटेज देखकर राम गोपाल वर्मा ने डुप्लीकेट मूर्ति बनवाकर इसे शूट करवाया था। और भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक सत्या ने फिल्मों में यथार्थवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक ये फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें मनोज बाजपेयी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और कई फिल्मफेयर पुरस्कारों से उसे नवाजा भी गया था। और इस फिल्म में से सत्या की कहानी और गीत की समीक्षा आप जब सुन रहे हैं तो आप ये भी देख रहे होंगे कि इस फिल्म की एक एक रवानी आपके भीतर झूमने लगी होगी, आपको याद आने लगा होगा अगर आपने ये फिल्म देखी है तो। और अगर नहीं देखी है तो आपसे गुजारिश है कि इस फिल्म को जरूर देखिए। चलिए फिलहाल सुनते हैं इस जानकारी में आज की अंतिम प्रस्तुति ये गीत।

देखी फिल्म से कि आज के इस सफर में आप थे मेरे यानी मनीषा के साथ, तो आशा करते हैं आपको आज की जानकारी आई होगी पसंद और इसी फिल्म के इस गीत के साथ एक ही फिल्म से के इस सफर को करते हैं हम समाप्त। अब मुझे यानी आपकी दोस्त और आपकी होस्ट मनीषा बोस को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही समय में आप समाचार सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: दिल्ली केंद्र तो
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह EOS-05 के सफल लॉन्च नूं भारत के पुलाड़ खेतर नूं परिभाषित करन वालिया समर्थावां दा चलकारा दस्या। ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम नवी दिल्ली विच शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण दे जन्म दिवस का त्यौहार जन्माष्टमी आज देश भर विच श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है।

0: शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भगवान कृष्ण दियां लीलावां ते संदेश भारतीय सभ्याचार ते दर्शन विच जीवंतता लियांदे ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि भगवान कृष्ण दा जीवन ते संदेश मनुखता नूं सच धर्म कर्तव ते सदाचार दे मार्ग ते चलण लई प्रेरित करदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान कृष्ण दे संदेश जो मनुखता दा निरंतर मार्गदर्शन करदे ने विच निस्वार्थ कर्म दी प्रेरणा है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इस मौके सारयां नूं शुभकामनावां दिंदिया एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कामना कीती कि हर घर विच खुशियां दा वास होवे। ए खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल @EIRRN जलंधर। उपराष्ट्रपति अते पंजाब यूनिवर्सिटी दे एक्स ऑफिशियो चांसलर सीपी राधा कृष्णन अज पंजाब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे दौरे ते ने। इस मौके पंजाब यूनिवर्सिटी विच हो रहे समारोह च श्री राधा कृष्णन पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया अते साबका केंद्रीय मंत्री मनीष तिवाड़ी ते होर पतवंते भी शामिल ने। उपराष्ट्रपति पंजाब यूनिवर्सिटी टैक इनोवेशन फोरम दा भी उद्घाटन करनगे जो यूनिवर्सिटी दे खोज कार्ड अते स्टार्टअप इकोसिस्टम नूं मजबूत करन विच इक वड्डा कदम है। नेपाल तिब्बत विच आए भयानक हड़ां कारण मरण वाले दी गिनती वध के 1282 हो गई है। नेपाल पुलिस मुताबिक चितवन विच सब तो वध 359 मौतां होईयां ने। इस तो बाद नवलपरासी पूरब विच 218, नवलपरासी पश्चिम विच 208, नवाकोट विच 185, रसुआ विच 140, गोरखा विच 72, ताडिंग विच 60 अते तनाऊ विच 38 मौतां होईयां ने। काठमांडू दे अस्पतालां विच पीड़ितां दे इलाज दौरान 2 होर मौतां होईयां। आफत जोखम घटाउण ते प्रबंधन बारे राष्ट्रीय अथारिटी ने दस्सिया कि कल शाम तक 5053 लोगों के लापता होने की खबर है। इस दौरान नेपाल ने पीड़ितों की पहचान करने डीएनए टेस्टा की वरतों भी शुरू कर दी है। एक वड्डे बचाव यत्न विच पोटेकोशी दरिया च अचानक खड़ा कारण त्रिशूली तीने पनबिजली प्रोजेक्ट विच एक सुरंग विच फसे 2 लोगों 10 दिन बाद जिंदा बचाया गया है। नेपाल फौज के लोक संपर्क डायरेक्टोरेट मुताबिक बचाव वर्करा ने सुरंग के अंदरों आवाजा सुनिया तो फसे हुए लोगों संपर्क कायम करने तो बाद कार्रवाई तेज कर दी। एमरजेंसी टीमां ने हुण तक 12,000 तो वध लोकां नूं बचाया है। सरकार ने विदेशी योगदान नेम सोध बिल 2026 ते 31 मैंबरी सांझी संसदी कमेटी दा गठन कीता है। इस सोध दा मुख उद्देश किसे भी गैर सरकारी संगठन जां संस्था वल्लों विदेशी योगदान दी वरतों नूं वधेरे पारदर्शी बनाउणा अते संस्थावां दे अधिकारियां दी जवाबदेही यकीनी बनाउणा है। खेडा विच वियतनाम विच पिकल बॉल विश्व कप विच टीम मुकाबले दे पहले दिन भारत जेतू रहा। यह टूरनामेंट 6 तरीक तक जारी रहेगा। इस नाल लीग पड़ा नूं समाप्त हुंदा है। भारत ने लीग पड़ा विच एंटीगुआ अते बारबुडा इसराइल ते चेक गणराज नूं हराया है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन विच सात्विक साईराज रणकी रेड्डी अते चिराग शेट्टी दी भारतीय जोड़ी अज शाम चीन दे शेंजन विच सेमीफाइनल विच थां बनाउण लई डेनमार्क दी जोड़ी खिलाफ मैदान च उतरेगी। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:10 ते शुरू होने का अनुमान है। भारतीय जोड़ी ने कल रात फ्रांस दे टोमा जूनियर पोपोव अते क्रिस्टोफ प्रोपोव नूं 21-17, 22-24, 21-9 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल विच थां बनाई। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह EOS-05 के सफल लॉन्च नू भारत के पुलाड़ खेतर नू प्रभाषित करने वाली समर्थावां दा झलकारा दस्या। ब्रिक्स चीफ जस्टिस फोरम नवी दिल्ली विच शुरू हो गया है। भगवान श्री कृष्ण दे जन्म दिवस का त्यौहार जन्माष्टमी आज देश भर विच श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन विच सात्विक साईराज रणकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दी भारतीय जोड़ी अज शाम सेमीफाइनल विच थां बनाउण लई डेनमार्क दी जोड़ी खिलाफ मैदान च उतरेगी। इस दे नाल ही साडा यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमीन का मुशाहिदा करने वाले EOS-05 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ दागने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के खलाई शोबे की बढ़ती हुई सलाहियतों का इजहार होता है। मरकज नेपाल में लापता अफराद के करीब तरीन रिश्तेदारों के लिए डीएनए की शिनाख्त की खिदमात फराहम करेगा। तराकुम सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1282 हो गई है। ਨੈਕਸਟ ਕਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ।

0: फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जिसमें इंसाफ की फराहमी और तनाज़ात को हल करने से मुताल्लिक दौरे हाजिर के मामलात पर बातचीत की जाएगी। आज पूरे मुल्क में भगवान कृष्ण के यौम पैदाइश जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश में कल तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और चाइना ओपन बैडमिंटन में आज शाम क्वार्टर फाइनल में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क की एक जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट EOS-05 के साथ खलाई रॉकेट GSLV-F17 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाब लॉन्च से भारत के खलाई शोबे की शानदार कारकर्दगी, इख्तिरा और बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने इसे इसरो की एक गिरां कदर कामयाबी और मुल्क के लिए एक फख्री लम्हा करार दिया। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आज सुबह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से खलाई रॉकेट GSLV-F17 के जरिए कुरे अर्ज के मुशाहिदे से मुताल्लिक अपना सैटेलाइट EOS-05 कामयाबी के साथ छोड़ा। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि इस मिशन से भारत की कुरे अर्ज के मुशाहिदे की सलाहियतों में इजाफा होगा और इससे मुताल्लिक खिदमात की फराहमी बेहतर होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इसरो ने कहा है कि 2367 किलोग्राम के सैटेलाइट को इसके छोड़े जाने के तकरीबन 18 मिनट बाद मुतल्लिका मदार में पहुंचा दिया गया। EOS-05 कुरे अर्ज का मुशाहिदा करने वाला जदीद तर्ज का सैटेलाइट है और ये जमीन के मुतवाजी मदार में पहुंचाए जाने वाला पहला इमेजिंग सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट कम वक्त में वसी इलाकों की तस्वीरें फराहम कर सकेगा, जिससे कुरे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मुस्तहकम होगी। सैटेलाइट से हासिल होने वाले डेटा का इस्तेमाल ज़रात, कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में मुआवनत के लिए किया जाएगा। यह सैटेलाइट कुदरती आफात की सूरत में बरवक्त जानकारी फराहम कर सकेगा और इस तरह मुतल्लिका हुक्काम को एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के खातिर फौरी तौर पर इकदाम करने में मदद मिलेगी। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इस मिशन से कुरे अर्ज का मुशाहिदा करने की भारत की सलाहियत मजीद मुस्तहकम होगी और मुतल्लिका खिदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी। इस मिशन से अंदरून मुल्क तैयार की गई खलाई रॉकेट की तकनीक में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की भी अक्कासी होती है। अनु मुरली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी को उनके मुल्क की जंग के बाद की तारीख में तवील तरीन अरसे तक लगातार वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरकरार रहने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये हुसूलिया भी उनकी क़यादत पर इटली के अवाम के भरोसे और एतमाद की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि उनकी दोस्ती भी भारत इटली खसूसी दिफाई शराकतदारी को मजबूत बनाने में शामिल रही है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि वो दोनों मुल्कों के अवाम के लिए एक खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के मकसद से करीबी तआवुन जारी रखने के लिए पुरउम्मीद हैं। वज़ारत खारजा नेपाल में अचानक सैलाब के पेश नजर भारत से ताल्लुक रखने वाले लापता अफराद के बराह रास्त हयातियाती रिश्तेदारों के DNA प्रोफाइलिंग की खातिर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, रियासती फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरियों में खिदमात दस्तियाब कराएगी। वज़ारत खारजा ने कहा है कि भारत में रिहाइश पजीर फर्स्ट डिग्री हयातियाती रिश्तेदार मखसूस मराकज पर अपने हयातियाती नमूने जमा करा सकते हैं और DNA प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1282 हो गई है, जबकि कुदरती आफात के खतरात को कम करने और इसके बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी NDRRMA ने कल शाम तक 5053 अफराद के अब भी लापता होने की खबर दी है। नेपाल पुलिस के मुताबिक चितवन में सबसे ज्यादा तादाद में 359 लाशें बरामद की गई हैं, जबकि नवलपरासी ईस्ट में 218, नवलपरासी वेस्ट में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, गार्डिंग में 60 और तनाहू में 38 अमवात हुई हैं। दरियासना काठमांडू में अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 अमवात हुई हैं। नेपाल ने लाशों की शिनाख्त करने के लिए DNA इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राहत और बचाव कार्रवाई के दौरान 10 दिन तक भोटेकोशी सैलाब में फंसे रहने के बाद नेपाल के त्रिशोली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग से 2 लोग जिंदा बचा लिए गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही।

0: हैं। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के सुदूर और आला जुडिशियल रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। मस्कूरा फोरम के जरिए इंसाफ की फराहमी, बैन अल-अक़वामी तनाज़ात की तस्वीरें, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की से मुतालिक मौजूदा मामलात पर तबादले ख्याल का मौका फराहम होगा। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत पहले दिन जुडिशियल वफूद के सरबराहों के साथ कई दोतरफा मीटिंगें करेंगे। वो रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, बेलारूस, कजाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज़्बेकिस्तान के जुडिशियल रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। आज भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मथुरा और वृंदावन जय श्री कृष्ण के नारों की जाप से जय कृष्ण के नारों की जाप के साथ भक्ति के माहौल से सरचार हैं। बीज मंडल और रियासत के दीगर हिस्सों में भी जन्माष्टमी पूरे जोशोखरोश के साथ मनाई जा रही है, लेकिन बड़ी तकरीब मथुरा वृंदावन में हो रही है, जहां आधी रात के जश्न के लिए सभी मंदिरों को फूल पत्तियों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इस मौके पर लाखों अकीदतमंद पहले भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। मुल्क और बिरन मुल्क से बड़ी तादाद में आने वाले अकीदतमंदों को देखते हुए पूरे मथुरा शहर में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की हयात और तालीमात ने भारतीय सकाफत और फलसफे को मानवीयत अता की। उन्होंने हरेक को भगवान श्री कृष्ण के नजरियात को अपनाने और एक शमूलियाती और विकसित भारत की तामीर के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की हयात और उनका पैगाम इंसानियत को सच्चाई, फर्ज की अदायगी और नेक अमल अंजाम देने की तरगीब देती है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के रूहानी पैगाम से बेलौस खिदमात की तरगीब मिलती है, जिसने हमें हमेशा इंसानियत को रहनुमाई फराहम की। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने कल तक के लिए मध्य प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मुल्क के शिमाल मशरकी इलाके में भी शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और बिजली की सूरतहाल बदस्तूर जारी रहेगी। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने बलूचिस्तान के ज्यारत और सुराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती दस्तों पर किए गए दो हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मकामी मीडिया की खबरों के मुताबिक दोनों हमलों में फौजी हमले के 25 अफराद हलाक और बहुत से अफराद जख्मी हो गए थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी किम अस्त्रूप और एएस रस्मुसन की डेनमार्क की जोड़ी से मुकाबला करेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जमीन का मुशाहिदा करने वाले ईओएस 05 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ दागने की सताइश की है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के खलाई शोबे की बढ़ती हुई सलाहियतों का उजहार होता है। मरकज नेपाल में लापता अफराद के करीब तरीन रिश्तेदारों के लिए डीएनए की शिनाख्त की खदमात फराहम करेगा। तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1282 हो गई है। ब्रिक्स का चीफ जस्टिस फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जिसमें इंसाफ की फराहमी और तनाज़ात को हल करने से मुतालिक दौरे हाजिर के मामलों पर बातचीत की जाएगी। आज पूरे मुल्क में भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. center to make available DNA profiling services for first

0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण

0: फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ सरदत्त मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष

0: सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन निगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। रेडियम व्यव 366.3 अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

जी दोस्तों, हमें मालूम है कि आपको भी हमारे इस कार्यक्रम में एक ही कलाकार का इंतजार रहता है। तो अब इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और लेकर हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर। आज मैं हूं आपके साथ अवनीश कुमार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। तो दोस्तों

आपने सुना जो एक गाना, और ये गाना दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था, और ये सुपर डुपर हिट सॉन्ग फिल्म दीवाना से था। और आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं, और अगर नहीं समझे तो एक और गाना सुनाते हैं, और इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अंदाजा लगा ही चुके हैं। और इस गाने को सुनकर आपको एक बार और आपका जो अंदाजा है वो पक्का हो जाएगा कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं।

दोस्तों, आज के हमारे कलाकार हैं दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर साहब। आज 4 सितंबर है और आज ही के दिन यानी उनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था और आज हम उनकी 74वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने बतौर अभिनेता 1973 में रिलीज हुई सुपर डुपर हिट फिल्म बॉबी से अपने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की।

दोस्तों, इसके बाद साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म नगीना में ऋषि कपूर के अभिनय को लोगों ने बेहद पसंद किया। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए काजल किरण, तारिक और जीनत अमान जैसे कलाकार। और बात करें अगर साल 1982 की, क्योंकि इसी साल रिलीज हुई थी प्रेम रोग। इस फिल्म में ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे के अलावा शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा और राजा मुराद मुख्य किरदार में थे। और इस फिल्म में जो इसकी स्टोरी थी, जो कहानी थी, उसमें विधवा पुनर्विवाह मुख्य केंद्र बिंदु था। तो 1982 में उस तरह की बातें करना और हमारी इस फिल्म के माध्यम से समाज को संदेश देना एक बहुत बड़ा कदम।

था और इस फिल्म ने ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले आपको इसी फिल्म से सुनाते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, अशफाक और अल्ताफ का मैसेज आया है। खतीजा बेगम, आफरीन कौसर और नीलोफर फातिमा का भी संदेश हमारे पास पहुंच चुका है और इन्होंने लिखा है कि अभिनेता ऋषि कपूर के बारे में आप बेहद ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं और उनकी फिल्मों के गीत सुनकर हमें बेहद आनंद आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, भले ही ऋषि कपूर साहब ने डेब्यू किया हो फिल्म बॉबी से 1973 में, लेकिन दरअसल उनकी शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके अलावा अगर उनकी लोकप्रिय फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं कर्ज, चांदनी, प्रेम रोग और सागर। ये सारी फिल्में उनकी यादगार रोमांटिक फिल्में थीं। इसके अलावा अगर उनकी विविध भूमिकाओं वाली फिल्मों की बात करें तो उन्होंने अग्निपथ, मुल्क और शर्मा जी नमकीन जैसी फिल्मों में गंभीर और अलग अलग किस्म के किरदार निभाए,

जो दर्शकों को बेहद पसंद आए। और एक फिल्म आई थी दामिनी, इस फिल्म में उनके साथ थे ऋषि कपूर के साथ में थे सनी देओल, अमरीश पुरी, और इस फिल्म से भी ऋषि कपूर साहब को अच्छी खासी पहचान मिली थी और सनी देओल पाजी को भी इस फिल्म से काफी अच्छी पहचान मिली थी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं इसी दामिनी फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये बेहद प्यारा सा नगमा।

0: दोस्तों आपके मैसेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का मैसेज आया है और इन्होंने श्री जी कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही लिखा है कि ऋषि कपूर पर केंद्रित ये कार्यक्रम बेहद अच्छा लग रहा है। तो जी आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

एक और संदेश आया है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम में ऋषि कपूर पर फिल्माए गाने आप सुना रहे हैं और ये गाने हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। ये संदेश आया है भावरपुर बसना से चंपा देवांगन राधेश्याम और जगदीश देवांगन का। इसके अलावा एक और मैसेज आया है जो कि आया है हमारे पास भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल पूजा परिहार का, और आप सब ने हमारे इस कार्यक्रम की तारीफ की है तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बात अगर करें ऋषि कपूर साहब की तो ये अपने जमाने में चॉकलेटी हीरो के रूप में बेहद लोकप्रिय रहे हैं। केवल तीन

वर्ष की उम्र में ही उनकी पहली झलक फिल्मी पर्दे पर दिखी थी। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपने पिता राज कपूर साहब के बचपन का किरदार निभाया था और अपनी अभिनय यात्रा में उन्होंने अधिकांश रोल रोमांटिक हीरो वाले किए, लेकिन कुछ हटकर किरदार भी निभाए, जैसे कि अग्निपथ फिल्म जिसमें उनके साथ में साथी कलाकार थे ऋतिक रोशन और भी लोग उस फिल्म में थे। और इसके अलावा एक फिल्म आई थी जिसका नाम है लैला मजनू, और इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने मजनू की भूमिका निभाई थी और इसे बेहद ही एक अलग पहचान मिली थी। अमर अकबर और अंथनी, इस फिल्म को हम कैसे भूल सकते हैं। ऋषि कपूर की यह फिल्म आज भी लोग याद करते हैं और इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। 7 मई 1970 को रिलीज हुई इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब ने बेहद ही यादगार किरदार अकबर का निभाया था और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी नीतू कपूर। प्रेम रोग फिल्म की बात हम कर ही चुके हैं जिसमें उन्होंने देवधर नाम का किरदार निभाया था। इसके अलावा अपने लंबे फिल्मी सफर में ऋषि कपूर साहब ने एक फिल्म की थी लव आजकल, और इसमें उनके साथी कलाकार थे सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण, और इसमें वे बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में नजर आए थे। तो बात करें अगर अग्निपथ की, तो पहली बार उन्होंने दमदार और जानदार शानदार किरदार, निगेटिव किरदार दरअसल निभाया था फिल्म अग्निपथ में, और उनके किरदार का नाम था राउफ लाला। और इसके अलावा 2013 में आई फिल्म डी डे जो मुंबई के माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित फिल्म थी और इसमें उन्होंने दाऊद का किरदार निभाया था। तो आप कह सकते हैं कि कपूर एंड सन्स, इसमें उन्होंने 90 साल के दादाजी का रोल प्ले किया था और उनके किरदार का नाम था अमरजीत। इस फिल्म में उनके साथ नजर आए थे सिद्धार्थ कपूर, आलिया भट्ट और फवाद खान। 102 नॉट आउट, इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे जो कि 2018 में आई थी, और इस फिल्म में उन्होंने 75 साल के बेटे का रोल प्ले किया था। वहीं पर अमिताभ बच्चन ने उनके पिता का किरदार निभाया था जिनकी उम्र होती है 102 साल। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ऋषि कपूर साहब ने अपनी फिल्मों के किरदार में कितनी विविधता रखी है और यही दर्शकों को बेहद पसंद आई है। तो एक और सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी चांदनी जिसमें उनके साथी कलाकार थे श्रीदेवी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं चांदनी फिल्म से श्रीदेवी और ज्वाला मुखर्जी की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

ಹೇ ಮದೆ.

दोस्तों एक और संदेश आया है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट और पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु खुराना का। इन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है, जी बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। इसके अलावा और भी बहुत सारे संदेश हमारे पास आए हुए हैं और हम सारे संदेश को शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है, तो अगर कुछ संदेश शामिल न हो पाए तो आप बिल्कुल ही नाराज मत होइएगा, हम अगले कार्यक्रम में आपके संदेश को जरूर लेंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की और एक और गाना सुनते हैं, उनकी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी और ये काफी डिस्को वाला सॉन्ग है।

दोस्तों, ऋषि कपूर साहब की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक फिल्म आई थी वल्क, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनका किरदार बिल्कुल अलग सा था। इसमें उन्होंने बनारस के वकील मुराद अली मोहम्मद का ऐसा रोल निभाया था जिसका भतीजा आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है। इस फिल्म में उनके साथ थे तापसी पन्नू और प्रतीक बब्बर। हम आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन वे अपने किरदारों, अपने अभिनय और अपनी फिल्मी दुनिया के माध्यम से, अपनी फिल्मों के माध्यम से अपने फैंस के दिलों में हमेशा रहेंगे। तो इसी के साथ अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, फिर आपसे होगी किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात। तब तक सुनते रहे हमारा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार।

मुख्य कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे, कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम म्यूट।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, कुछ ही लम्हों में खबरें नशर की जाएंगी।

शमरुख फिल्म क्लब आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। और सामने लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश, दीवाना फिल्म का नगमा कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में, मौसीकार हैं नदीम शर्मा।

ए ऑल इंडिया रेडियो दा सिराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर अज तुहाडे कीते सुफियाना कलाम दा प्रोग्राम घेन के हाजर हां। पहला मैं तुहाको सूफी संगीत बारे कुछ दसेंदी हां। सूफी संगीत भक्ति संगीत दा ही एक रूप है। पुराने सूफी संता कविया ने बहु सूफियाना कलाम दोहड़े आदि लिखे हैं, जिन्हां विच बुले शाह, अमीर खुसरो, ख्वाजा गुलाम फरीद आदि दा नाम अगू आउंदा है। सूफियाना कलाम को गावण दा अपना ही एक अंदाज है। एक कवाली वाली कार गावण विच आउंदा है। इन ज्यादा वेंदा कि सूफी संस्कृति एक अलहदा ही संस्कृति है, जेड़ी सारा संसार भर विच मशहूर है, पर एशिया विच सूफी संस्कृति बहु फैली है। इंडोनेशिया तो अफगानिस्तान तो उथो मोरक्को तक सूफिया ने संगीत को अपनी गायकी दा केंद्र बना गिदा है। ते आओ सब तो पहला सुनेंदे हां बीबी नूरा दी आवाज विच ए सूफियाना कलाम। अल्लाहू दा आवाज आवे कुल्ली नी फकीर दी विचों।

उसे सुन रही थी चलकी मारे गए, जिसे लेखक सन विनोद शंकर दत्त। आम सुन दिया चंद पंजाबी गीत, सब तो पहला सुन दिया डॉली गुलेरिया दी आवाज च बड़ा ही खूबसूरत ते मकबूल गीत।

श्री कृष्ण युगा युगा तो साडी आस्था दा केंद्र रहे ने। कदी यशोदा मैया दे लाल हुंदे ने, कदी बिजदे

जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिन के रूप च मनाया जाता है जो रक्षा बंधन भाव रखड़ी तो बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी न मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी ते वासुदेव की अठवीं संतान सन। मथुरा का राजा सी कंस दृढ़ अत्याचारी। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन वधदे जा रहे सन। अचानक एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी भैन देवकी का अठवां पुत्र उसका नाश करेगा। यह सुनके कंस ने अपनी भैन देवकी नूं उसके पति वासुदेव समेत काल कोठरी विच ढक दिता। कंस ने भगवान श्री कृष्ण तों पहला देवकी दे घर पैदा हुई सत संताना नूं मार दिता सी। जब देवकी ने श्री कृष्ण नूं जन्म दिता तां भगवान विष्णु ने वासुदेव नूं आदेश दिता कि श्री कृष्ण नूं गोकुल विच यशोदा ते नंद बाबा दे कोल पहुंचा दिता जावे जिथे ओ अपने मामा कंस तों सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण दा पालन पोषण यशोदा मां ते नंद बाबा दी देख रेख विच होया।

वृंदावन कृष्ण दी माया विच डुबिया होया सी। हर कोई प्रेम ते सुख नाल जीवन बतीत कर रहा सी। भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप च कई लीलावां रचियां, वड्डे वड्डे दैंता ते दानवां दा नाश कीता। भगवान कृष्ण ने 16 साल दी उम्र च कंस दा भी नाश कर दिता। अपने माता पिता ते अपने नाना नू उत्थों रिहा करवाया। इसी तरह खेड़दे खेड़दे गावां चरांदे चरांदे कृष्ण दी बांसुरी दी तान सुनदे होए लोकां दे दिन गुजरन लगे। खेड खेड विच भगवान कृष्ण दी गेंद यमुना विच डिग पई। यमुना दा पानी नाग दे विष नाल काला हो चुकिया सी। गेंद दी तलाश विच कृष्ण ने यमुना च छलांग लगा दिती। ए देख के उन्हां दे सारे साथी भयभीत हो गए। कालिया नामक उस नाग ने 110 फणां नाल कृष्ण ते वार कीता। कृष्ण ने विराट रूप धारण करके उस दे फन ते मानो सारी पृथ्वी दा भार रख दिता। कृष्ण काली नाग दा अंत करन वाले सन कि नाग दियां पत्नियां ने विनती कीती। कृष्ण दे स्वरूप

कोई अभिलाषा छंद कर्म करने वाला मनुख ही अपने जीवन नु सफल बनाता है। आओ आज जन्माष्टमी के मौके भगवान श्री कृष्ण दी लीला दा आनंद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो कभी कभी व्रत तो सब लोग करते हैं और व्रत करना जरूरी भी है। तो व्रत करते हैं ना, जब हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें हम फलों का सेवन करते हैं जिसमें कि फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो व्रत के बहाने ही सही हम फल, ताजे फल खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, प्रसाद के रूप में हम पंजीरी खाते हैं जिसमें कि तरह तरह के मेवा पड़ी रहती हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ दूध के उत्पाद हैं, चाहे वो दही हो, ताज़ा दूध हो या देसी घी हो, सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी भी हैं क्योंकि प्रोटीन की मात्रा दूध से बने उत्पादों में होती है। तो एक तरफ व्रत भी हमारा हो जाता है और साथ साथ जब हम प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो उससे हमें पोषण भी खूब मिलता है।
1: बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हम त्योहारों पे, अवसरों पे, पर्व पे मतलब सब कुछ बनाते हैं जो हमारे मन की इच्छाएं होती हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भूल जाते हैं कि हमारे लिए कहीं वो हमें नुकसान ना दे दे, वो हमारे लिए आनंद का समय ना हो, कि कहीं मुश्किल वाला प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए हम ये सोचें कि हमें उस दिन वो खाना है जिससे जैसे फल खाएं तो उससे आपको पौष्टिकता मिलती है, आपको प्रोटीन मिलता है, आपको मतलब हर तरीके के त्योहार वाले दिन हर तरीके की चीज, जैसे दूध से बनी चीजें खाएंगे तो उससे आपको प्रोटीन भी मिलता है ना।
0: बिल्कुल, और कृषि जगत जो कार्यक्रम है उसमें हम किसान भाइयों के लिए खास जानकारी भी लेकर आते हैं। और अगर बागवानी की बात करें तो बागवानी से जुड़े जानकारी आज हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं और उसका विषय है इस महीने में बागवानी में होने वाले कार्य। इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जो किसान भाई अनाज वाली फसलें उगाते हैं निश्चित तौर पे वो शिकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो सब्जी है, फूल है, फल है, बागवानी फसलें उगाते हैं, तो उनको भी समय समय पर कृषि कार्य करने पड़ते हैं जिससे इन फसलों से वो अधिक उत्पादन ले सकें। और इस माह में कौन कौन से बागवानी कार्य किए जाएं इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब इस समय की जो सब्जियां हैं लगी हुई हैं उनके बारे में और जो हमारे किसान भाई आगे लगाना चाहते हैं तो उसके नर्सरी प्रबंधन के बारे में।
3: जी ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि किसान भाई जो भी खेती करते हैं और खेती से पहले किसान भाई को अपने आसपास के किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क जरूर रखें कि कौन सी बीज ले, कौन सा प्रमाणित सोर्स है, इन सारी चीजों की, आगे बीजों का हम लगाने का तरीका क्या है, आगे हम कैसे उसकी देखभाल करते हैं, इसके लिए विशेष ध्यान दें। क्योंकि किसान भाई लगाने के बाद अगर कोई बीमारी या कोई परेशानी आती है फसलों का नुकसान

0: होता है, उपज के पे भी प्रभाव होता है। तो ये जरूरी होता है कि किसान भाई को ध्यान देना जरूरी, एक समय का जरूर ख्याल रखें। और इस समय जैसे सितंबर का माह का महीना चल रहा है, कुछ सब्जियां जो बरसात वाली सब्जियां हैं जो कंटिन्यू चली आ रही है, जैसे हम बेल वाली सब्जियां मुख्य तौर पे है, तो बरसात के मौसम में उन सब्जियों को आप मचान सिस्टम पे लगाएंगे तो एक तो बीमारी भी कम आएगी, साथ ही साथ उसका फल जो होगा दाग भी नहीं रहेगा और स्वस्थ होगा। अभी आगे समय है, जैसे हम कुछ किसान भाई अगेती फूलगोभी की खेती करते हैं, तो उनकी पौध अगर तैयार हो गई है तो उसको लगाएं, और ये ध्यान रखें उसको मेड़ों पे लगाएं, क्योंकि अभी भी बरसात की संभावना रहेगी इस पूरे महीने में, क्योंकि प्लेन में लगाएंगे तो जल भराव की समस्या होगी तो फसल खराब होने की संभावना रहती है। तो अगेती अगर पौध तैयार है तो उसको अच्छे तरीके से मेड़ बना के उसकी रोपाई करें। साथ ही साथ जो सितंबर माह है, ये मुख्य रूप से जो अक्टूबर से रबी मौसम की शुरुआत होती है उसकी तैयारी करते हैं। तो जैसे रबी मौसम में जितनी भी सब्जियां लगाई जाएगी, जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, गोभी वर्गीय सब्जियों में मुख्य तरह से फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, गांठ गोभी है, इनकी किसान भाई इस मौसम में नर्सरी की तैयारी करें। और नर्सरी की तैयारी करने के लिए किसान भाई को ऊंची उठी हुई बेड, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, क्योंकि बीज बहुत कॉस्टली होता है, जितने भी आजकल सब्जियां लगाई जा रही है ये देखा जा रहा है कि जो भी सब्जियां हैं वो है जो बहुत कॉस्टली बीज आ रहे हैं, तो उसको अगर हम परंपरागत तरीके से डालते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो किसान भाई को ध्यान देना होगा उन बीजों को महत्व देखते हुए, उसकी कीमत को देखते हुए ऊंची उठी हुई बेड बना के, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर रखते हैं और लंबाई जो है 15 मीटर रखते हैं, और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर का रखें, और बेड के ऊपर जो हम लाइन बनाते हैं वो जो है 5-5 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाइन बने, और उन लाइन में बीज को आप सावधानी से डालें दूरी का ध्यान रखते हुए, फिर उसको आपने अच्छी तरीके से ढक के, और ये ध्यान दे कि बीज लगाने से पूर्व किसान भाई बीज का उपचार और भूमि का उपचार अवश्य करे। तो हमने इसका विशेष ध्यान देना है और उसकी रख रखाव करते हुए ये लगभग 25 से 30 दिन में पौध तैयार हो जाएगी, तो आगे चल के हम उसकी रुपाई कर देते हैं। हम बात करते हैं जड़ वाली सब्जियों की, जो कि जड़ वाली सब्जियां अगेती कुछ किस्में हैं जिसको किसान भाई, जैसे पूसा की पूसा वृष्टि वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको किसान भाई आसानी से इस माह में लगा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने लगा भी चुके हैं, क्योंकि हम अगस्त सितंबर से बात करते हैं तो इसकी टाइमिंग होती है, और ये किसान भाई लगाएंगे तो फायदा ये होगा क्योंकि बेमौसम में अगर गाजर आएगा तो उसको कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो उसके लिए अच्छी तरीके से आप पूसा से बीज ले और जो प्रमाणित स्रोत है वहां से बीज लेके इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा हम मूली की बात करते हैं, मूली की भी कुछ अर्ली वैरायटी है, मिनू अर्ली करके वैरायटी है, पूसा की भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, उसको लेके आप लगा सकते हैं और उसको मेड़ों पे लगाना है। आजकल किसान भाई पहले परंपरागत तरीके से करते थे कि बीज को छिड़क के और मेड़ बना देते थे, लेकिन अब तकनीकी के साथ साथ बदलाव हुआ है और इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर चालित यंत्र आ गए हैं जो कि बीज को उसमें डाल के और बहुत अच्छे तरीके से कम बीज में, जैसे हम बात करते हैं कि अगर 1 एकड़ गाजर की बुआई करते थे या 1 एकड़ मूली की बुआई करते हैं तो उसमें बीज करीब डबल से ट्रिपल बीज लगते थे, लेकिन अब जो है बीज कम से कम में 1 से 1.5 किलो में गाजर का बुआई हो जाता है, नहीं तो ये 3 से 4 किलो लगते थे। वैसी मूली की हम बात करते हैं कि 4-5 किलो बीज लगते थे, लेकिन अब 2 से 3 किलो में इसकी बुआई हो जाती है। तो इसका किसान भाई जरूर ध्यान दें कि हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हमें कम से कम लागत में, क्योंकि विशेषज्ञ का किसानों का ये उद्देश्य होना है कि कम लागत लगा के हम अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इस पे हमें ध्यान देना होगा। इसके अलावा बात करेंगे कि आगे आने वाली जो सर्दियों की सब्जी में पत्तेदार सब्जी भी मुख्य रूप से सर्दियों में ही की जाती है, जैसे मेथी की बात करते हैं, पालक है, धनिया है, सरसों साग है, इन चीजों के भी हम किसान भाई कुछ अक्टूबर नवंबर तक जाते हैं लगाने के लिए, लेकिन कोशिश करें बीज का उपचार करके, भूमि का उपचार करते हैं और इसको देख रेख प्रॉपर केयर में करेंगे तो अभी जो किसान भाई इन चीजों को लगाएंगे तो बाजार में जब आएगा तो उनको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। क्योंकि हमने किसान भाई को ध्यान देना होगा कि सभी किसान एक साथ करते हैं, जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि मार्केट में सभी किसान भाइयों का एक साथ प्रोडक्ट आता है, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे किसान भाई को रेट नहीं मिलता, तो पालक है, जैसे पालक की हम बात करते हैं, मूली की बात करते हैं, तो इनकी जुताई भी कर देते हैं क्योंकि उनको लागत वापस होने की संभावना नहीं रहती। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि जो भी हम सब्जियां लगा रहे हैं इस मौसम में, अगर हम अगेती करें वैसे ही, जैसे हम मेथी लगा लेते हैं, पालक लगा लेते हैं, धनिया लगा लेते हैं, सरसों साग लगा लेंगे, तो इनको बहुत अच्छा आपको मुनाफा प्राप्त हो सकता है। और सर्दियों की मौसम की सब्जियां हैं, इस मौसम में ही हम शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिसकी हम बीज द्वारा सीधे बुआई करते हैं, और बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसकी हम पौध का तैयारी करते हैं, तो अगले माह में जो लगाई जाएगी उसकी भी तैयारी हमें इस माह में करनी होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, काफी आपने विस्तार से बताया किस तरीके से जो हमारे किसान भाई आने वाले समय में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं या नर्सरी लगाना चाहते हैं उसके बारे में आपने बताया, लेकिन आगे आने वाला जो मौसम है, इस मौसम में काफी हमारे त्योहार भी पड़ते हैं, और जब त्योहार पड़ते हैं तो वहां पर फूलों की भी मांग होती है। जो हमारे फूल वाले पौधे हैं, तो उनकी किसान भाई किस तरीके से तैयारी करें जिससे कि उस समय पर जब मांग हो उस समय बेच करके अच्छा दाम कमा सके।
0: जी, हम जो परंपरागत तरीके से लोग धान गेहूं और इसमें खेती कर रहे हैं उससे हट के, क्योंकि किसान भाई को, क्योंकि हमारा दिनों प्रति जो है वो उसका आकार छोटा होते जा रहा है, तो हमें भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ किसान भाई जो परिनगरीय क्षेत्रों में है, जहां ड्रेन के माध्यम से खेती कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी किसान भाई इस फसल का लाभ उठा सकते हैं। हम बात करते हैं गेंदे की फसल की, कि जहां पे ड्रेन के माध्यम से सब्जियों की खेती हो रही है, ऐसे जगहों पे किसान भाई को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स और रासायनिक तत्व होते हैं जो कि सीधे तौर पर मानव जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमने किसान भाइयों को इससे थोड़ा सा हटके, हम अनाज वाली फसलों में जहां आय कम हो रही है और जहां पे ऐसे पानी की व्यवस्था है जहां से किसान भाई अगर सब्जी लगा के उसका इस्तेमाल करता है तो उसको नुकसान हो सकता है और उसका वातावरण और उसकी जमीन भी नुकसान हो रही है, तो इस दशा में किसान भाई ऐसे में बहुत ही एक अच्छा फसल है जो है, फूलों की फसल में हम बात करते हैं तो गेंदे की फसल है, और गेंदे की फसल लगाने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय है। जिन किसान भाइयों ने गेंदे के पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए हों, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा कि आगे आने वाले जो भी हमारे त्योहार होते हैं, खासकर हम अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं जिसमें दशहरा, दिवाली, बहुत सारे ऐसे हमारे पर्व होते हैं जिनमें इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, और उस टाइम किसान भाई को लगभग 150 से 200 रेट तक भी किलो के हिसाब से, कभी कभी तो देखा गया कि 300 रूपये किलो तक भी गेंदे के फूल बिकती है, तो ये एक बहुत सुनहरा मौका रहता है। तो किसान भाई को हमेशा ध्यान देना होगा, हमें समय को टारगेट करना है, फसल को टारगेट करना है कि कौन से मौसम में हम कौन सी फसल लगाएंगे। उसी तरह से जो गेंदे की फसल है ये अभी बहुत ही उत्तम समय है, और मैं थोड़ा सा तकनीकी रूप से उनको बताना चाहेंगे कि हम ये देखें कि लगाने के 45 से 50 दिन पे बड बनना शुरू हो जाता है, तो आप ये देखें दशहरा कब है, दिवाली कब है, उसके हिसाब से उस गैप अंतराल पर एक तो हमने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, जो हमें दशहरा में लेना है उस दशहरा को टारगेट करेंगे, जो हमें दिवाली में लेना है उसको दिवाली में टारगेट करेंगे, और अन्य पर्व है उसके तारीख के हिसाब से आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, और यह अंतर मात्र 10-15 दिन का होता है। और एक और चीज इसमें तकनीकी रूप से आप कार्य जरूर करें जो आमतौर पर किसान भाई नहीं करते, और वो है पिंचिंग का कार्य। हम पिंचिंग बोलते हैं कटाई करना, उसमें क्या होता है कि जब हम गेंदे की फसल लगाते हैं तो एक ही तना जो है सीधे बढ़ते रहता है, लेकिन अगर हम 30-40 दिन के आसपास जब बड बनने से पहले उसको 1 से 2 फीट छोड़ के पूरी कटाई कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि साइड से ब्रांचेज निकलते हैं, और जिससे क्या होगा कि आपको जितना ब्रांचेज होगा उतना बड होगी, और जब बडों की संख्या और फूलों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी नेचुरली ये होगा। एक और इसमें फायदा ये होता है, मान लीजिए बड बनना शुरू हो गया और फूल बन जाएगा और टाइम 10 दिन के बाद होगा, तो आप 10 दिन का समय जो है किसान भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने क्या करना है कि उसकी पिंचिंग कर देंगे तो ये जो बडों की संख्या है ये भी 10 से 15 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, किसान भाई को एक तो समय को भी आप टारगेट कर सकते हैं, इससे साथ ही साथ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ले सकते हैं। तो इसके लिए आप ख्याल रखें बीजों का ख्याल, क्योंकि उसमें क्या होता है कभी कभी देखने को मिलता है किसान भाई गेंदे लगा देते हैं लेकिन फूलों का उसमें आकार, साइज, रंग सब अलग अलग बनता है। तो ज्यादातर जो हमारे भारतवर्ष में गेंदे की ज्यादा डिमांड होती है वो है नारंगी, जो कलर होते हैं उसकी डिमांड होती है, और इसके लिए पूछा कि नारंगी वेरायटी बहुत अच्छी वेरायटी है, पंजाब गेंदा नंबर 1 की बहुत अच्छी वेरायटी है, और भी वेरायटी है, लेकिन वेरायटी किसी विश्वसनीय संस्था से लेने का पर्पज ये होता है कि उसमें जो वाइल्ड टाइप का जो फूल गेंदे का आता है वो नहीं आएंगे, और इसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती। और किसान भाइयों से भी कहूंगा कि ये एक ऐसी फसल है कि ये ट्रैप क्रॉप के रूप में भी आप सब्जियों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि गेंदे की फसल से एक तो फूलों की उत्पादन होगा ही होगा, साथ ही जैसे हम बात करते हैं गोभी की बात करते हैं, पत्ता गोभी की बात करते हैं, ब्रोकली की बात करते हैं, तो आप 5 लाइन ब्रोकली लगाते हैं, 5 लाइन फूलगोभी लगाते हैं, 2 लाइन गेंदे की भी लगाइए और चारों तरफ से जो बाउंड्री है उस पे 2-2 लाइन गेंदे की लगा देंगे तो एक तो बाहर से कीट नहीं आएंगे, साथ ही साथ इसमें एक केमिकल एल्थ्रिन छोड़ती है जो कि निमेटोड से भी राहत देती है। एक तो फायदा होगा कि हम उसके फूल बेच के पैसा कमा लेंगे, साथ ही हमें जो जमीन में निमेटोड की एक समस्या आती है उसे भी कंट्रोल कर रहे हैं। और आपका बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व जो हम रसायन स्प्रे करते रहते सब्जियों में वो ट्रैप कर लेगा, कीड़ों को बाहर आने नहीं देगा, जिससे कि आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से सब्जी और फूलों की बात करी, क्योंकि ये बरसात का जो मौसम होता है इस मौसम में बहुत से हमारे बागवान भाई फल वाले पौधे लगाते हैं, कुछ अपने सजावटी पौधे भी लगाए जाते हैं, तो ये पौध रोपण का भी महीना माना जाता है, इस समय क्या कुछ कर सकते हैं?
0: जी इस समय जिन किसान भाइयों ने जैसे पौध रोपण वैज्ञानिक तरीका है कि गर्मी के मौसम में हम मई के मौसम में गड्ढे खोद के छोड़े हुए हो, जिसे गड्ढा खुदाई करने का पर्पज ये होता है, सॉयल का जो गड्ढे की है सोलराइजेशन द्वारा ट्रीटमेंट हो जाता है जिसमें हानिकारक फंगस कीट बीमारी वगैरह उसमें नहीं आते, उससे फायदा हो जाता है। दूसरा क्या होगा, अब जो बारिश के मौसम में गड्ढे भरने का टाइम होता है तो उसमें विशेष ध्यान दें कि जो गड्ढे से आपने मिट्टी निकाला उसको वापस नहीं डालना है। सबसे पहले तो जहां पे भी आपने बगीचे लगाने हैं वहां की मिट्टी और पानी की आप जांच जरूर करावें, जिससे कि ये पता चल जाए कि हम उस जगह पे कौन सी फल वाले वृक्ष लगा सकते हैं। दूसरी चीज, गड्ढे में जो हम मिट्टी निकालते हैं बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि मिट्टी को वापस वही डाल देते हैं खाद मिला के, लेकिन हमें वो नहीं करना क्योंकि हमारा मिट्टी जो है 5 से 6 इंच का ही उपजाऊ है, तो जो हमने गड्ढे से मिट्टी निकालना वहीं पे आप फैला दें और 5-6 इंच की मिट्टी पे आपने जितनी मिट्टी है उतनी ही बराबर मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद और आप जिप्सम और नीम की खली का जरूर इस्तेमाल करके और मिक्स करके अच्छी तरह से आप गड्ढे को भर दीजिए। अगर बारिश हो रही है तो उससे मिट्टी बैठ जाएगी, अगर नहीं हो रही तो आप थोड़ा पानी डाल के मिट्टी को बैठाना जरूरी होता है, क्योंकि हम पौधे जब लगाते हैं अगर थोड़ा सा भी उसमें एरेशन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पौधे की सूखने की या जाने की संभावना रहती है। तो एक तो पानी लगाएंगे तो मिट्टी बैठ जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, फल वृक्ष जो होते हैं, हम अन्य फसल की बात करते हैं तो 3 से 4 महीने में उसकी क्रॉप साइकिल होती है, लेकिन अगर हम फल की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। जैसे हम घर बनाते हैं कि 100 साल तक चलता है, वैसे ही हमारा पौधे भी जो 25 से 30 साल का लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो उस अवस्था में हमें यह ध्यान देना होगा कि जहां पे वैरायटी की हम बात करते हैं, ज्यादातर यह देखा जाता है कि बाजार से किसान भाई लाते हैं और कलम वाले पौधे बता के लाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि 2-3 चीजें है। एक तो वैरायटी बेचने वाले को नहीं पता होता है, तो हमें वैरायटी का, क्योंकि वैरायटी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले भी चर्चा किए कि खेतों का साइज जो है छोटा है, और पहले क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े देसी पौधे लगाए जाते थे जिसकी संख्या करीब बहुत कम होती थी, हम एक एकड़ में लगभग 60 से 62 पौधे लगा लेते हैं, लेकिन अब ऐसी तकनीकी आ गई है वैरायटी के साथ एक एकड़ में किसान भाई 1500 तक पौधे लगा सकते हैं दूरी कम करके, क्योंकि उसका फैलाव कम होता है और हाइट कम होता है। तो ऐसी चीजों का हमने ध्यान देना है और विशेषज्ञों के आप संपर्क में रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको इन चीजों की जानकारी मिलती रहेगी समय समय पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने एक तो प्रमाणित स्रोत रखना है, वैरायटी का जरूर ख्याल रखना है, और लगाते समय विशेष ध्यान देना है कि जो आप कहीं संस्थान से लाते हैं तो आपने देखा होगा काले जो प्लास्टिक के पन्नी में उसके पिंड होते हैं, उस पिंड को बहुत सावधानी से उसकी तेज धारदार कोई भी ब्लेड से या चाकू से उसको हटा के और बहुत अच्छे बच्चों की तरह जैसे हम पालते हैं बहुत मासूमियत से रखते हैं कि उसका पिंड जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर पिंड ब्रेक होता है तो पौधे सूखने की 100% संभावना रहती है। तो आप उसका विशेष ध्यान दे रहे हैं कि लगाते समय पिंड ना टूटे, सावधानी से हटाके और जितनी पिंड की साइज है उतनी ही आप जो गड्ढे में है उसके सेंटर में उसकी मिट्टी निकाले और पौधे को रोपित कर दे। और विशेष ध्यान देना, ज्यादातर देखा जाता है किसान भाई के दिमाग में ये होता है कि जहाँ पौधे लगाया है वो एरिया गड्ढा रहे, उसे गड्ढा नहीं रखना है, उसको जमीन के सतह के बराबर पौधे लगाने के बाद मिट्टी और खाद मिक्स जो अपना मटेरियल है उसको भर के बराबर रखना है, मिट्टी के सतह पर मेड़ बनाइए। नहीं तो क्या होता है कि पानी हम डालते रहते हैं गड्ढे में और तने के संपर्क में हमेशा पानी रहता है और तने के संपर्क में रहेगा तो रूट रोटिंग की और तना जो गलन की बीमारी आएगी और पौधा वो चला जाता है। किसान भाई इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि बोलते हैं हम तो पानी और खाद समय से डालते फिर भी पौधा सूख गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें हमारी कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से पौधे सूखते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि लगाने के बाद जो मिट्टी के सतह के बराबर आपको पौधे का जड़ क्षेत्र भी रखना, थोड़ा सा ऊंचा ही रखिए, जिससे कि तने के पास पानी न पहुंचे और चारों तरफ से आप डोल बना के और उस डोल के अंदर में ही पानी देंगे, पौधे का विकास अच्छा होगा। और समय समय पे जो है कीट और बीमारियों और खादों का आप व्यवस्था करते रहे और पानी लगाते रहे। साथ ही साथ आप ये भी कोशिश करें कि पानी के लिए आप ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे पौधा कम से कम पानी और पानी की बचत भी हो जाएगी, तो आपको अच्छा फल का भी आप खेती कर सकते हैं और आप मुनाफा कमा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप अगर अपनी फसल जो भी लगाते हैं उसमें उन्नत किस्म लें और समय का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर उसकी निगरानी अवश्य करते रहें।
0: जी जी
1: डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप आए और बहुत

0: यही वैरायटी का आप चयन कीजिए, और जो भी आप वृक्षारोपण कर रहे हैं मेड़ बना के करें ताकि उनकी जड़ों में अधिक पानी ना जाए। और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग की भी बात की, और अगेती खेती करके आप कैसे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो ये तो थी जानकारी। और अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि योजना, जो कि हमारे किसान भाई, अधिकतर किसान भाई इसके बारे में जानकारी रखते हैं और उससे जुड़े हुए भी हैं, जिसमें कि प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सहायक राशि मिलती है, जो कि 2,000 की किश्तों में 4 महीने के गैप पर आती है। और अगर तो अभी बात करें 23वीं किश्त जो है जून के महीने में हमारे किसान भाइयों को जारी कर चुके हैं, और 24वीं किश्त का इंतज़ार किसान भाइयों को है। इसमें मुख्य जो ध्यान रखने वाली बात है कि योजना का लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आपका EKYC और आधार लिंक हो, तो आधार लिंक जरूर करवाएं।
1: और ये भी है कि जमीन का जो हक है किस तरीके से आप इसे जोड़ सकते हैं। किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन होना ज्यादा जरूरी है, और इसकी और जानकारी और किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, या पोर्टल पे जाकर आपको सब कुछ पता लग जाता है, और आप वहीं पर ही रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं ऑनलाइन। और क्या आपको पत्राचार साथ में इसके साथ जोड़नी है?
0: और अब कार्यक्रम में करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं मस्तराम यादव से ये कृष्ण भजन।

0: तो भाई आप सुन रहे थे मस्त राम यादव की आवाज में ये कृष्ण भजन।
1: और भाई याद दिला दें कि कल है शनिवार और शनिवार को हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जो कि फोन इन कार्यक्रम

0: है जिसमें आप हमें अपने पसंद के कलाकार और अपने पसंद के गीतों के बारे में बताते हैं, हमसे फोन के माध्यम से जुड़ते हैं और हम आपकी पसंदों को अधिक से अधिक कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: जगजीत सिंह की इस खूबसूरत गजल के साथ इस प्रोग्राम को यहीं संपन्न करते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। भारत दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा, जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 का और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
4: I am very happy to announce that GSLV-F17.
5: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने GSLV-F17 के माध्यम से EOS-05 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गौरव का पल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू समकालिक कक्षा से भारत के पहले चित्रण उपग्रह का प्रक्षेपण देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक और ऐतिहासिक छलांग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो और भारतीय उद्योग मिलकर भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि परिषद द्वारा सम्मेलन स्थल, वीआईपी और प्रमुख मार्गों, बाजारों तथा ब्रिक्स प्रतिनिधियों के ठहरने वाले क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता, हरित सौंदर्यीकरण, रखरखाव, ब्रांडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है।
6: सम्मेलन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए 17 प्रमुख गोल चक्करों, 11 होटल परिसरों और 10 एनडीएमसी भवनों पर सजावटी रोशनी की जाएगी। एनडीएमसी ने बताया कि सभी कार्य आगामी बुधवार तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं 15 स्थानों पर पुष्प सज्जित बोर्ड, 9 स्थानों पर फूलों के फव्वारे और 15,000 से अधिक गमलों से हरित सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए डिजाइन के अनुसार 309 स्थानों पर सम्मेलन की ब्रांडिंग पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने तथा धूल और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 5 प्रमुख स्थानों पर विशेष मिस्ट स्प्रे की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों पर विशेष स्वच्छता, गहन धुलाई, यांत्रिक सफाई और जलभराव से निपटने की 100% तैयारी कर ली गई है। श्री चहल ने कहा कि यह सम्मेलन भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, नेतृत्व क्षमता और विश्व के प्रमुख देशों के साथ मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित करेगा। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत कल नई दिल्ली में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अकबर रोड, मथुरा रोड, लोदी रोड, अशोक रोड, रिंग रोड सहित कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो सेवा का उपयोग करने और वाहन चालकों से निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करने तथा मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
7: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सभी लोगों और उनके परिवारों पर सदैव बना रहे। वहीं श्रीमती गुप्ता ने कहा कि मुरलीधर श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, कर्तव्य और धर्म के पथ पर अडिग रहने का साहस सिखाता है। दिल्ली सहित अक्षरधाम मंदिर परिसर में आज बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को श्रद्धा, भक्तिभाव और हर्षोल्लास से मनाया। कार्यक्रम के दौरान भक्ति संगीत, प्रार्थना, संतों के प्रेरक उद्बोधन और बाल तथा किशोरों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गईं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज गांधीनगर, कृष्णानगर, ईस्ट आजाद नगर, झील खुरंजा, गीता कॉलोनी और रामनगर सतनाम पार्क सहित कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें धार्मिक कार्यक्रम, रासलीला और मटकी फोड़ जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण इन क्षेत्रों में यातायात धीमा रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज मटकी फोड़ लीग सीजन 2 का आयोजन किया गया।
8: दिल्ली में आज जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंदिरों तथा प्रमुख स्थानों को भव्य आयोजन के लिए सजाया गया है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस प्राचीन परंपरा को आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं बिरला मंदिर, पूर्वी कैलाश और पंजाबी बाग स्थित इस्कॉन मंदिर तथा द्वारका स्थित इस्कॉन द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं में खास उत्साह है। दिन भर और देर रात तक भजन कीर्तन तथा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों जैसे गोकुल तथा वृंदावन में उनके बाल जीवन को दर्शाती झांकियां सजाई गई हैं। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर, रामलीला मैदान और रोहिणी के जापानी पार्क सहित कई जगहों पर यातायात प्रभावित रहेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का SRCC भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है तथा कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। प्रख्यात उद्योगपति सर श्रीराम द्वारा 1926 में स्थापित इस महाविद्यालय ने एक से बढ़कर एक विद्वान, पेशेवर, प्रशासक, उद्यमी, नीति निर्माता और राष्ट्र निर्माता दिए हैं। शताब्दी समारोह शिक्षक दिवस के दिन मनाया जा रहा है, जिससे ये अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्र कल समाज की नींव मजबूत करने में शिक्षकों और शिक्षाविदों के सहयोग को सम्मानित कर रहा है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के सभी 39 उपमंडलों में पहली बार विशेष प्रक्रिया से उपपंजीयकों की नियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों की नियुक्ति सूचना प्रौद्योगिकी आधारित रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव की उपस्थिति में पूरी की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस पर राष्ट्र सेवा में समर्पित सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू समाज में आत्मबोध, एकात्मकता और स्वाभिमान का भाव जागृत करना, सनातन संस्कृति की जीवन परंपराओं को सशक्त करना तथा सेवा को राष्ट्र कार्य का माध्यम बनाना परिषद की मूल प्रेरणा है। राजधानी में आज सुबह के समय हल्की धूप रही, वहीं दोपहर बाद राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल आमतौर पर बादल छाए रहने के और गरज तथा चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने व्यापक तैयारियां शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा

0: जो मतदाता 23-30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं वो 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट तलत। तो तलत का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और आगाज करते हैं इस खूबसूरत से सफर की एक बहुत ही बेहतरीन भजन के साथ। आज है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महोत्सव जिसे पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व धूमधाम से मना रहा है। आकाशवाणी की तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

जी, जब स्थिति विकट हो जाती है तब मना स्थिति यही कहती है कि आप अपने इष्ट को पुकारें, और जब ऐसा कोई खास दिन हो तब बहुत दिल से, बहुत दिल की गहराइयों से अपने इष्ट को याद किया जाता है।

जी कृष्ण कन्हैया आंखों का है वो तारा। और अब सुनते हैं हम अगला गीत। हमारा उम्मीद है कि आप कार्यक्रम पसंद कर रहे होंगे और गीत आपको अच्छे लग रहे होंगे।

अब किसी की मोहब्बत से कोई अगर जले तो फिर क्या करें, लेकिन हाँ मोहब्बत तो ऐसी चीज है कि किसी से भी किसी को हो सकती है। और जब बात हो कृष्ण जी की तो फिर मोहब्बत की जो सीमा है ना वो पार हो जाती है।

0: पलकें झुकें और प्रणाम हो जाए, पलकें झुकें और प्रणाम हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नजर कहां से लाऊं कान्हा, ऐसी नजर कहां से लाऊं कान्हा, कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए।
1: प्राण प्राण प्राण था मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। जन नन जन नन जन नन नन नन नन शान शान शान था।

रही, उत्साह रही, बल खाय रही, दिन दिन दिन दिन दिन

इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। आगे दे गया।

और बहुत ही खूबसूरत, मुझे मतलब सबसे प्यारा ये लगता है, और कितना खूबसूरत ये फिल्माया गया है और कितना प्यारा ये लिखा गया है। और एक ये जो है फिल्म वीर से, ये भी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा गीत।

और अब वक्त हो चला है कि आपसे विदा लें, और जन्माष्टमी के तौर पर और इस मौके पर अगर हम बांसुरी ना सुने तो फिर कुछ अधूरा सा रह जाता है। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ मैं यहीं इस बांसुरी धुन के साथ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज आप सुन सकते हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का

0: तीन दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का तीन दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, Possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी

0: किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
4: वी हैव एक्सटेंडेड आवर सॉलिडैरिटी एंड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ नेपाल।
5: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1,907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert @AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देशभर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
8: देशभर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देशभर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
3: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
9: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोड़ी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।
10: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय, वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The three-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries, including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
12: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. The three-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development, while facilitating an exchange of views among judicial leaders. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
11: Italian Prime Minister Giorgia Meloni today thanked Prime Minister Narendra Modi for his wishes on a government becoming the longest serving in the history of the Italian Republic. In a social media post, Ms. Meloni expressed confidence that India and Italy will continue to strengthen the bond between the two continents and work together to develop the India-Middle East-Europe economic corridor. She said that the ties between the two nations are right now stronger than ever before. Ms. Meloni's response came after Prime Minister Modi congratulated her on becoming the longest continuously serving Prime Minister in Italy's post-war history. In a social media post, Mr. Modi said, "This milestone is a reflection of the trust and confidence of the Italian people in our leadership." Prime Minister Modi emphasized that a friendship has also been instrumental in strengthening the India-Italy special strategic partnership. Mr. Modi further said that he looks forward to continuing close cooperation to build a prosperous future for the people of both the countries. This is Akashvani giving you the news.
7: Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube.
11: The External Affairs Ministry today said that 166 Indian nationals have been rescued in Nepal so far after flash floods hit the neighboring nation. Briefing media in New Delhi today, spokesperson in the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said 275 Indian nationals remain missing. He said India continues to be in close touch with the Nepalese government. He said India deeply appreciates the efforts of the Nepalese authorities in this regard. The spokesperson said the ministry has been regularly releasing the names of Indians who have been rescued. Mr. Jaiswal said 1,907 Indian nationals have safely crossed into Nepal from China. He said there are no Indian travelers who are stranded in the Tibetan Autonomous Region in China. Regarding India's support to flood-ravaged Nepal, Mr. Jaiswal said India will continue to provide assistance as per the requirements of the government of Nepal. He said in the coming days, India is planning to send more forensic kits, Bailey bridges and other materials that are requested by the government of Nepal.
4: In the wake of this tragedy, we have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal. As a close friend and partner, India responded promptly, and we will continue to support rescue, relief, reconstruction and recovery efforts in the country.
11: On the remarks of Nepal Foreign Minister, Mr. Jaiswal said, India has consistently maintained that the climate change is a common challenge and action in this regard must be based on the principle of common differentiated responsibilities and respective capabilities. Meanwhile, the death toll from

सामिन अब से कुछ देर बाद शुक्र 9:20 पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मुबारक मौके पर आप सुनेंगे खुसूसी तकरीर। मौजू है उर्दू शायरी में कृष्ण भक्ति। 9:45 पर खबरें नश्र की जाएंगी और 9:55 पर सेहत से मुतालिक चंद बातें पेश होंगी। रात 10 बजे सुनिएगा प्रोग्राम मार्केट मंत्रा। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुनते हैं शब के 10:30 से 11:30 तक। दौरानी प्रोग्राम शब के 11 बजे खबरें बरसगीर से का बुलेटिन नश्र किया जाएगा।

0: होता था, मुलायजा हो। कितने तो उसकी सुनने से धुन हो गए धनी, कितनों की सुध बिसर गई जिस दम वो धुन सुनी, कितनों के मन से कल गई और बेआकुली चुनी, कितने नर से लेके नारियां क्या कोढ़ क्या गुनी, सब सुनने वाले कह उठे जय जय हरी हरी, ऐसी बजाई किशन कन्हैया ने बांसुरी। रस्म कथा नजीर की इंतहाई तवील नज्म है, जिसमें किशन जी की बड़ाई, उनकी खूबियां, उनकी पैदाइश से मुतालिक रिवायत और फिर रुक्मणी की मोहब्बत अकीदत और किशन की शादी का जिक्र किया गया है। नजीर की कोई भी नज्म उनकी मोहब्बत और अकीदत से खाली नहीं। किशन जी की अजमत और खूबियों की तर्जुमानी नजीर ने सबसे ज्यादा की है। उर्दू शायरी की तारीख सिर्फ नजीर तक ही किशन भक्ति की अमीन नहीं, बल्कि उर्दू के तकरीबन हर बड़े शायर ने श्री किशन को खिराज पेश किया है, उनकी खूबियों का एतराफ और उनकी तकदीस का बयान किया है। फायज से लेकर मोहसिन काकोरवी तक जो रिवायत थी, उसे हर दौर में गंगा स्नान, किशन जी की बांसुरी, किशन और जसोदा जैसी नज्मों के जरिए बरकरार रखा गया। हसरत मोहानी मथुरा जी में अपनी भक्ति और अकीदत का इजहार यूं करते हैं, मथुरा का नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू इसी का, वो नूर सियाह था कि हसरत, सर चश्मा फरोग आगही का। नादिर काकोरवी की नज्म मुकद्दस सरजमीन के ये अशार मुलायजा हूं, तेरे बिंद्रा बन से उठा पहले हुहक का खरोश, क्योंकि दुनिया का वही पहला इबादत खाना था, वो कन्हैया और वो तेरा बांसली वाला कृष्ण, ये बाखुदा था बरगजीदा था नबी था या न था। उर्दू शायरी की तारीख गवाह है कि इन अजीम और मुकद्दस हस्तियों के जिक्र से हुब्बुल वतनी के जज्बात को जबरदस्त तकवियत पहुंची है। इकबाल ने स्वामी राम की अजमत के गुण गाए हैं, तो पाकिस्तान में शाहनामा इस्लाम के मशहूर शायर हफीज जालंधरी के यहाँ श्री कृष्ण पर बहुत अच्छी नज्में मिलती हैं। शाहनामा इस्लाम के तारुफ में सर अब्दुल कादिर ने लिखा है, उसने अपनी वसी हमदर्दी और सच्ची कुदरती शायरी के मैलान से कहीं कृष्ण के गुण गाए हैं और कहीं प्रीत के गीत सुनाए हैं। सूफिया इकराम ने भी कृष्ण भक्ति के मौजू को अपना पसंदीदा मौजू बनाया। कृष्ण उनके यहाँ आइडियल और हीरो की हैसियत रखते हैं। मौलाना अफकर मोहानी, अबर एहसनी गन्नौरी और बेदम शाह वारसी की बहुत सी नज्में हैं जो त्योहारों से मुतालिक भी हैं और कृष्ण भक्ति की मजहर भी। सीमा अकबर आबादी श्री कृष्ण की अजमत का यूं एतराफ करते हैं, दिलों में रंग मोहब्बत को इस्तवार किया, स्वाद हिंद को गीता से नगमजार किया, जो राज कोशिश नुत को जबां से खुल न सका, वो राज अपनी निगाहों से आश्कार किया, उदासियों को नई जिंदगी अता कर दी, हर एक जर्रे को दिल के बेकरार किया, जो मशरब उसका इस तरह आम हो जाता जहां से मह मोहब्बत का नाम हो जाता। किशन भक्ति से मुतालिक मीरा जी, नून मीम राशिद, सीमा अकबर आबादी, सागर निजामी वगैरह सभी के यहाँ गिरा कदर सरमाया है। कृष्ण जी से वालेहाना अकीदत और नगमगी में डूबी सागर निजामी की नज्म श्री कृष्ण के ये चंद शेर मुलाहिजा हूँ। बिंद्रा के घाट हैं फिर तुम्हारे मुंतजिर, मौजे आप मुंतजिर हैं सितारे मुंतजिर, बसरी की तान से सुबह शाम मस्त हूँ, अर्जो चरख मस्त हूँ बेनिजाम मस्त हूँ, नंद की कुटी में तुम मिसले महताब थे, मिसले महताब क्या असल आफताब थे, साहिले मुराद तक हिंदियों को लाओ फिर, ए गोपाल झूम कर बंसरी बजाओ तुम। कृष्ण भक्ति का यह अजमाली जायजा इस बात का सबूत है कि उर्दू शायरी ने हमेशा मुश्तरका तहजीब और मुश्तरका कल्चर की नुमाइंदगी की है। कौमी वहदत और बाहमी उख़वत व मोहब्बत के राग अलापे हैं। कृष्ण भक्ति से मुतालिक ये नज़में उर्दू शायरी का कीमती सरमाया भी हैं और निशाने इफ्तिखार भी।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मुबारक मौके पर सामिन अभी आप सुन रहे थे एक खसूसी तकरीर, मौजू था उर्दू शायरी में कृष्ण भक्ति। तहरीर और पेशकश डॉ शहनाज अज्जम की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। विजय सामिन सुनिए चंद कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर चंद नगमें।

0: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सामिन अभी आप सुन रहे थे चंद नगमे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। शब के 9:45 हो चुके हैं। ये वक्त होता है खबरों के बुलेटिन का।
1: आकाशवाणी है खबरों के साथ में अब्दुल वाहिद। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहबान का 3 रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौरखोज किया जा रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वजारत खारजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है, तमाम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर।

है। मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है। मणिपुर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चेन्नई मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स रुकन ममालिक और शराकतदार मुल्कों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सरबराहान और सीनियर अदालती हुक्काम शरीक हैं। फोरम के तहत भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान समेत कई मुल्कों के अदालती वफूद के सरबराहान के साथ दोतरफा मीटिंगें की। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी हुकूमत के इटली की तारीख में सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा मेलोनी ने इतमाद जाहिर किया कि भारत और इटली बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे और भारत मशरिक वस्ता यूरोपीय इकतसादी कॉरिडोर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहतरमा मेलोनी का यह रद्द अमल वजीर आजम मोदी की जानिब से उन्हें इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया। वजारत खारजा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल ने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाली हुकूमत के करीबी रबते में है और भारत इस बारे में नेपाली हुक्काम की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता है। जनाब जसवाल ने बताया कि 1907 भारतीय शहरी बहिफाजत नेपाल से चीन पहुंच गए हैं। जनाब जसवाल के मुताबिक चीन के तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते में कोई भारतीय सैयाह फंसा हुआ नहीं है। सैलाब से मुतासर नेपाल को भारत की इमदाद के बारे में बोलते हुए जनाब जसवाल ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक नेपाल की हुकूमत को इमदाद फराहम करता रहेगा। यूक्रेन दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जमान ने कहा कि वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कीव का दौरा किया और यूक्रेन के अपने हम मनसब आंद्रेई सिबिहा और सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वजीर खारजा ने लगातार भारत के इस मौकिफ को दोहराया कि यह जंग का दौर नहीं है और मैदान जंग से मसले का हल नहीं निकलेगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें चितवन में हुई हैं, जहां 359 अफराद की मौत हो गई है, जबकि मशरकी नवलपरासी जिले में 218 अमवात हुई हैं। भारत में सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी और बचाव कार्रवाईयों में मदद के लिए नेपाल को मजीद 2 तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजा है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों C-130 तैयारे मजमुई तौर पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर काठमांडू पहुंच गए हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। तमाम बड़ी नदियां जिसमें गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी में तुगयानी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले भी सैलाब का इताब झेल रहे हैं। भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल और गणपतियार मंदिर से लाल चौक तक जुलूस निकाला। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डिवेयर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ गहरी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल फरवरी में समंदर और बंदरगाहों के शोबे से वाबस्ता बेल्जियम के एक आला सतही वफद को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबे में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आज भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती समझौते पर मुंबई में मुनाकिदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेवर से मुलाकात की और शहरी हवाबाजी के शोबे में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने रास्त फजाई कनेक्टिविटी, आला कदर वाले फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए फजाई कार्गो और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जैसे शोबों में इश्तराक पर भी बातचीत की। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के जियारत और सराज जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेज पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है।

0: हमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी अहलकार मारे गए और दीगर कई जख्मी हो गए। बीएलए के दावे ऐसे वक्त सामने आए हैं जब पूरे बलूचिस्तान में बलोच मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से हमलों में फिलहाल इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के अशदार गली इलाके में आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया। श्रीनगर में वाकई चिनार कॉर्प्स के एक तर्जुमान ने बताया कि भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका खुफिया इत्तला की बुनियाद पर ये कार्रवाइयां शुरू की थी। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में मुल्कगीर कार्रवाई की और ऑपरेशन चक्र 6 के तहत 3 अफराद को हिरासत में लिया। मुल्क में डिजिटल अरेस्ट के मामलात में मुसलसल इजाफे के मसले पर सख्त कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने मुल्क की 20 रियासतों में 89 मकामात पर तलाशी कार्रवाई शुरू की। भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने कल मशरकी राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन के दौरान शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। उधर कौमी राजधानी नई दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की से शदीद बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कल भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने डेनमार्क के किम एस्टोप और एंडर्स एकरोप रसमैसन को 21-13, 16-21 और 21-18 से हराकर मुसलसल चौथी मर्तबा चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला आज शाम शेंजेन में हुआ। इससे कबल भारतीय जोड़ी ने गुज़श्ता शब फ्रांस के टोमा जूनियर पोपो और क्रिस्टो पोपो को 21-17, 22-24 और 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की थी। मर्दों के सिंगल्स में कदम्बी श्रीकांत की चाइना मास्टर्स मुहिम क्वार्टर फाइनल में ही खत्म हो गई। उन्हें शेंजेन में हांगकांग के ली चियोक्यू के हाथों 16-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारत के खवातीन के सिंगल्स की भी मुहिम अख्ताम पजीर हो गई थी जब तनवी शर्मा को जापान की तोमोका मियाज़ाकी ने 21-17, 18-21 और 21-16 से हरा दिया था। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खोज किया जा रहा है। इटली की वज़ीरे आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 186 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। तमाम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है और मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हेल्थ न्यूज में लीजिए सामने अब सुनिए फूड प्वाइजनिंग के हवाले से कुछ मालूमात।
2: जब खाना ही जहर के रूप में काम कर जाता है और हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने लग जाता है
3: जी।
2: तो उसे हम फूड प्वाइजनिंग कहते हैं। जब खाना जो हम खा रहे हैं उसमें किसी तरह के कीटाणु, किसी तरह की गलत चीजें या अगर वो स्वच्छ ना हो उसमें वायरस पैदा हो जाते हैं, तो वो शरीर में जाकर शरीर कोशिश करता है कि जो भी गलत चीज अंदर गई है उसे निकाल दिया जाए, या तो उल्टी के रूप में या दस्तों के रूप में।
3: अच्छा,
2: तो वो एक्चुअली लेमैन टर्म्स में फूड प्वाइजनिंग कहलाती है
3: जी।
2: इसको हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कह सकते हैं। एक्यूट क्योंकि ये अचानक हुई है किसी चीज के खाने की वजह से जिसने हमारे पाचन क्रिया को या पाचन जो तंत्र है, जो ऑर्गन्स है, उनको
0: जी
2: नुकसान पहुंचाया है। तो इसमें आपको उल्टियां भी लग सकती हैं, दस्त भी लग सकते हैं, पेट
0: जी
2: दर्द भी हो सकता है। देखिए, कोई भी खाना जो गलत है, उसको खाना खाने के बाद उसको पचाने में कुछ समय लगता है, कुछ
0: जी
2: घंटे लगते हैं। कभी कभी तो हमें खाते ही महसूस होने लग जाता है कि भाई गड़बड़ हो गई है, हमने कुछ गलत खा लिया है। बदहजमी होनी शुरू हो जाती है,
0: जी
2: खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, ऐसा लगता है कि पेट में अफारा आ गया है। लेकिन कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो 5 से 6 घंटे के बाद या 6 से 12 घंटे के बाद आपको
0: जी
2: नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं।
0: अच्छा
2: लक्षण वही होते हैं कि उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो खाया है गलत चीज, उसको शरीर कोशिश करता है निकाला जाए। दस्त लग सकते हैं, और अगर ज्यादा ही इन्फेक्शन हो गया है तो बुखार आ सकता है, तबीयत बिगड़
0: जी
2: सकती है, उल्टियां लगने से पानी की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, कमजोरी महसूस हो सकती है, मुंह में सूखापन आ सकता है। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर फूड पॉइजनिंग के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत
0: जी
2: है। पहले तो लक्षण आए तो जो भी ओवर द काउंटर आपके पास मेडिसिन है, घरेलू नुस्खे हैं, थोड़े बहुत आप वो कर सकते हो,
0: जी
2: कोशिश कर सकते हो। बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई, पेट में दर्द है तो पेट की दर्द की दवाई,
0: जी
2: उल्टी आ रही है तो उल्टी की दवाई, जो मामूलन हमारे पास घरों में रखी होती है, वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रेड हेरिंग साइंस कहते हैं,
0: जी
2: यानी इतनी उल्टी आ गई है कि आंखें अंदर धंसने लगी हैं, जीभ आपकी सूख गई है, आपको लग रहा है कि आपकी जो स्किन की टर्गर है, जो
0: टेक्सचर है
2: हाँ
0: जो
2: जो
0: वो
2: टेक्सचर है, वो
0: जी
2: सूख गया है, और आपको कमजोरी महसूस होने लगी है, बाथरूम तक आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो ये डिहाइड्रेशन के लक्षण है। पानी की
0: ओके
2: कमी वाकई में होनी शुरू हो गई है। तो जब अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है, तो ये समय ऐसा है कि आपको इस समय डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जो भी आसपास डॉक्टर हो उनसे मिले,
0: जी
2: ओआरएस का घोल घर में ही पीना शुरू कर दें,
0: जी
2: जिससे कि चाहे उल्टियां लग रही हो, ओआरएस पीते रहें, जिससे कि जो एटलीस्ट पानी निकल रहा है वो इतना ना निकले कि ज्यादा दिक्कत हो जाए। और फिर आपके पास जो भी नजदीकी डॉक्टर है, आप उससे मिले, वो आपको बताएंगे आगे क्या करना चाहिए।
0: अच्छा
2: पानी उबाल कर उसे ठंडा करके उसमें नमक चीनी का घोल मिला के पिया जा सकता है। और कुछ एज ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए ज्यादा घर में वेट नहीं करनी चाहिए अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए। जैसे जो छोटे
0: जैसे
2: बच्चे, जो बुजुर्ग, और जो लोग जिन्हें मधुमेह यानी शुगर और
0: डायबिटिक जो हैं
2: बीपी बीपी की अगर
0: जी
2: दिक्कत है, हार्ट के मरीज हैं या किडनी के मरीज हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो मैंने लक्षण बताए हैं,
0: जी
2: आपकी आंखें धंसने लगेंगी, आपको शरीर में कमजोरी महसूस होने लगेगी, आपकी जो स्किन है उसमें जो हम जो नॉर्मली स्किन को उठा के देखते हैं तो वो रुकती नहीं है इतनी देर।
0: जी
2: अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उठी रहेगी जहां
0: जी
2: स्किन है, तो वो चीज देख लेनी चाहिए। जीभ देखनी चाहिए, जीभ सूख तो नहीं गई है। और इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि पेशाब तो कम आना शुरू नहीं हो गया है,
0: जी
2: क्योंकि अगर पेशाब कम आ रहा है, इसका मतलब बॉडी में इतना पानी नहीं है कि किडनी उसको छान कर पेशाब बनाकर बाहर
0: जी
2: भेजे। तो इन सब चीजों पे देखिए, अगर ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो जैसा कि मैंने बताया, कुछ कीटाणु होते हैं जो बहुत ज्यादा आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा देते हैं।
0: जी
2: तो जो आंतों की छाल होती है वो लैटिन के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाती है, मल के साथ, और खून आना शुरू हो जाता है।
0: म्यूकस मेम्ब्रेन की बात
2: म्यूकस
0: कर रहे हैं आप।
2: मेम्ब्रेन्स जो होती है अंदर की सतह जो होती है इंटेस्टाइन की,
0: जी
2: उनको वो स्लफ होना शुरू हो जाती है और ब्लड और म्यूकस छाले बन जाते हैं अंदर,
0: जी
2: और ब्लड और म्यूकस बाहर आना शुरू हो जाता है। तो कुछ तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह की फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। और अगर खून आ रहा है तो ये गंभीर लक्षण है,
0: जी
2: और इसकी कोशिश कीजिए कि फटाफट डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और स्वयं इलाज करने की कोशिश ना करें। खाना हमेशा साफ खाएं, घर का बना हुआ खाएं। जो आजकल बहुत फैशन चल गया है बाहर का खाना खाने का, वो ना खाएं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कैसे बनाया गया है। घर में माँ बड़े प्यार से खाना बनाती हैं सबके लिए, और अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि अच्छे से अच्छा अपने परिवार को खिलाएं, जो घर की स्त्री होती है, धो के खाना बनाते हैं। तो घर का खाना खाएं, स्वच्छ खाएं, कम मात्रा में खाएं, और बाहर खाना खा रहे हैं तो देख के खाएं कि वो साफ सुथरा है, ढका हुआ है, कटी हुई चीजें तो नहीं है, बासी तो नहीं है। और खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हाथ धोएं।
1: सामीन हेल्थ टिप्स में भी आप सुन रहे थे फूड प्वाइजनिंग के हवाले से कुछ मालूमात। एक्सपर्ट थी डॉक्टर वैशाली भारद्वाज। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर और डी डी फ्री डिश पर।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी का स्वागत है कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम आगे और बात करें, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज रिबाउंड, सेंसेक्स एड्स ओवर 350 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट नियरली 23,900, India's foreign exchange reserves surged to a record high of over $740 billion last week and global crude oil prices declined.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 350 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 23,900 के आसपास बंद हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह 740 अरब अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: Views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक में आज तेजी लौटी और लगातार चार दिनों की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 363 अंक यानी आधा प्रतिशत की तेजी के साथ 76,515 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24 अंक यानी 0.1% ऊपर आकर 23,898 पर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिडकैप सूचकांक 0.2% नीचे आ गया, वहीं स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल देखा गया। इससे पहले वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच बाजार में गैपअप से शुरूआत हुई। दोनों मुख्य सूचकांक सत्र के दौरान बढ़त के साथ और एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के बाद इंडेक्स की बढ़त में कुछ कमी भी देखी गई।
0: द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रिबाउंडेड टुडे, स्नैपिंग अ फोर सेशन लूजिंग स्ट्रीक। द सेंसेक्स क्लाइम्ड 363 पॉइंट्स और हाफ अ परसेंट टू क्लोज एट 76,515, व्हाइल द निफ्टी एडेड 24 पॉइंट्स और 0.1% to settle at 23,898. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.2%, while the Nifty small-cap 100 index gained 0.2%. Earlier, the markets opened with a gap up amid positive global cues. Both the benchmark indices remained in the green throughout the session, trading within a narrow range. However, following the closing auction session, the indices paired some of the gains.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों में टाटा स्टील 2.9%, रिलायंस 1.6% और बजाज फाइनेंस 1.5% ऊपर चढ़े। इसके उलट भारती एयरटेल, एचसीएल, टेक में 1.2% और एटर्नल में 1.1%, वहीं एशियन पेंट्स में आधा प्रतिशत की गिरावट आई।
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 16 out of 28 sectors edged upwards. Among the top performers, housing finance, metal, telecommunications and insurance rose 1.4%, commodities and financial services gained 0.6%, and private banks index added 0.5%. In contrast, realty and capital goods declined 0.7%, healthcare fell 0.5%, and hospitals lost 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,388 companies advanced, 1,991 declined, and 239 remained unchanged. Under banking

0: the right level. Thirdly, of course, is the rupee, because although the rupee, we have talked about the fact that it is constantly depreciating, there's always been a lot of concern, but there again has been a feeling that the rupee needs to reach its right valuation. And of course, there's a lot of concern over rupee, but you and I both know that countries like China actually depreciate their yuan to gain benefits, and that's one of the reasons for the friction between the US and China. So I think the fact that the rupee also has come to more realistic levels, all these, the combination of these three factors, I think.
1: Right. You talked of valuations. Sushma, do you really think that the Indian market's valuation has really moderated as of now?
0: Well, to some extent.
1: To some extent.
0: I won't say, moderated completely, but to some extent, comparatively.
1: There have been reports and all that it's quite heated up, even now.
0: Yes, correct.
2: Sushma, aaj mid cap aur small cap mein giravat ka rukh hame dekhne wala, jabki large cap mein badhat ka rukh dekhne wala, to ek investor ke point of view se kya ye chinta ka vishay ho sakta hai ya ise ek certain aise hi normal cheez maan karke rakha jaye?
0: देखिए इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए जो उसका जहां वो इन्वेस्ट करे, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उस कंपनी की जो वायबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, उसको वो देखना चाहिए और उस हिसाब से उसको देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो देखना चाहिए इन्वेस्टर को, क्योंकि कभी कबार एक कंपनी जो है आप स्टॉक मार्केट्स में देखें इतना अच्छा नहीं करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ज्यादा देखना चाहिए इन्वेस्टर को.
2: और आगे बढ़ते हैं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में 11.4 अरब अमरीकी डॉलर बढ़कर 740.8 अरब अमरीकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 9.3 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 600.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है. वहीं सोने का भंडार 2.1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर 116.4 अरब अमरीकी डॉलर हो गया. हालांकि विशिष्ट आहरण अधिकार 430 करोड़ डॉलर से घटकर 18.8 अरब अमरीकी डॉलर रह गए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास देश की रिजर्व स्थिति 11 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 4.9 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है. सुषमा, ये जो आंकड़े हैं हमारे लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण लेकर के आते हैं. भविष्य की बात अगर ना करते हुए प्रेजेंट की बात करें, जैसे कि हालात चल रहे वैश्विक स्तर पर, हमारी अर्थव्यवस्था इन आंकड़ों के साथ मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है?
0: बिल्कुल खड़ी नजर आती है. ये अभी मैंने एफसीएनआरबी की बात की तो 136 बिलियन डॉलर आ गए हैं, तो ये जो रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका हमारा बहुत बढ़ गया है इसके आने से. और खैर, सोने का जो रिजर्व है, मेरे ख्याल उसकी वैल्यूएशन से ही, क्योंकि सोने का जो दाम है वो बढ़ गया है, तो ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है ये हमारे रिजर्व. एक जमाने में इंडिया का ये होता था कि कितने महीने का इम्पोर्ट हमारे पास रिजर्व्स हैं, और अब हमें कोई चिंता ही नहीं है. तो ये और एक और चीज, खैर हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारे डायस्पोरा से आते हैं, वो बहुत बड़े हैं. इसके बारे में शायद थोड़ी सी हमें चिंता होगी, क्योंकि और सरकार को चिंता होगी क्योंकि वेस्ट एशिया से हमारे बहुत सारे ये रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं इस वक्त, उनका देखना है कि अब कितना वहां से आएगा. ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पर, यूएई में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कितना इसके ऊपर असर पड़ेगा वो आगे के दिनों में.
2: ये जो आंकड़े आज हमारे सामने रखे हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है?
0: बिल्कुल आकर्षक तो है, लेकिन जो निवेशक है वो और भी चीजें देखता है. वो सिर्फ ये नहीं देखता कि भाई आपके पूरे देश में आपके रिजर्व्स हैं, वो देखता है कि भाई मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो मुझे कितनी आसानी होगी, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये चीजें उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है. हाँ, ये बेसिक फंडामेंटल चीजें तो होनी ही चाहिए किसी भी देश में अगर वो निवेश
2: करे. इम्पैक्ट तो डालते ही कहीं ना कहीं.
0: बिल्कुल.
1: With this uptick in the forex reserves, Sushma ji, do you also see this having some effect on the rupee as well?
0: Yes, yes, of course. It has had an impact on the rupee. The rupee has already come to 94.
1: Yes.
0: It's, I mean, amazing from, nearly 96, it's back to 94.

0: we are not going to sign the deal unless we have certain areas that are suitable for us.
1: Of course, there is much brought into it. Of course, there is much relief when you compare it with the Mexico trade deficit,
0: $27.5 billion.
1: Vietnam, Taiwan, China, South Korea, so on and so forth. So yes, $5 billion. Right. And moving on to the crude now. The global crude oil prices declined today. The Brent crude was trading 0.4% down at $95.10 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 0.6% lower at $90.76 per barrel when reports last came in. What direction, what trajectory this crude is going to take?
0: That's a very difficult question to answer, because it really depends on global developments, especially geopolitical tensions. As I mentioned earlier, when there was a MOU signed between Iran and the US, and we thought, okay, now another 2-3 weeks everything is going to be wrapped up. Prices suddenly fell to about $70, $75 Brent crude. But now when it is clear, then of course there are hostilities continuing between Iran and the US, and there is constant friction over the vessels passing, merchant vessels passing through the Strait of Hormuz. Brent crude has gone up to $95. And $95 is not a price that is sustainable for a country like ours.
2: श्रोताओं को बता दें, भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज 0.6% बढ़कर 1,54,884 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमत 1.2% ऊपर आकर 2,35,456 रुपये प्रति किलोग्राम पर हो गई है। सोशल जी, बहुत ही कम शब्दों में सोने की बढ़ती कीमतों पर आपके क्या विचार होंगे?
0: देखिए, जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती रहेंगी, सोने के दाम बढ़ते रहेंगे और चांदी के भी, क्योंकि ये सेफ हेवन एसेट जाते हैं। जब कोई भी तकलीफ हो, कोई भी क्राइसिस हो, तो लोग सोना ही खरीदते हैं।
2: सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू वेरी मच सुषमा जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रिबाउंड, सेंसेक्स एड्स ओवर 350 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट नियरली 23,900, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर $740 बिलियन लास्ट वीक, एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन। And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब हैं।

स्वामी निषाद प्रोग्राम का पहला नगमा आपने सुना कृष्ण भक्ति पर। फिल्म हरे कृष्णा से आवाजें मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की, नगमा निगार बीडी मिश्रा तर्ज बनाई है एस एन त्रिपाठी ने। और सुनने के ख्वाहिशमंद थे आप सभी दोस्त इस नगमे को। अनिका डवाली से वसंत चिंचन राजकुमार और कुलदीप गांधी, सदन शहर राजस्थान से राजकुमार रेवाड़ और चंद कला रेवाड़, मोताला महाराष्ट्र से विजय सोलरकर रतनमाला सोलरकर और सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर शुभम वडतकर और पुत्र वडतकर, ग्राम अलीनगर बरेली से मोहम्मद उमर रैना निसार अहमद और इसरार अहमद, करनाल से बलविंदर सिंह सोटी और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश, कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू, केतु हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, भगवानपुर दाका से राजेश जैन बिट्टू जैन और संजीव जैन, और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर सना डॉक्टर अदीवा की ये फरमाइश थी। सुनने के ख्वाहिशमंद थे दिलावर खान हसीना बानो अलीजा नायब आप हैं रघुवीर नगर से, सुदेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके यशोधर राम टेके शरीर राम टेके भी सुनना चाहते थे इस नगमे को और फरमाइश भेजी थी ग्राम पोस्ट हजरपुर मटकली जिला बरेली से शाहनूर अंसारी और फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद दिदरीसी ने, और गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से शेख शर्मा परवीन एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान, शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला मनवर और बेबी प्रियांशी की फरमाइश, और शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर, कार्तिक आर्यन और प्रीति वर्मा साथ में राजेश कुमार वर्मा आप हैं मौनत भंजन उत्तर प्रदेश से, और नई दिल्ली से इंद्रजीत छावड़ा स्वीटी छावड़ा और रविंदर छावड़ा, डुंडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन अलकमर जहां और शिफा सिमरन, गाजीपुर सुबह तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी साराबानु शेख और करिश्मा शेख, और महेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नौहाकर निर्मला नौहाकर और विशाल नौहाकर, सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर श्रीमती वंदना गौहर और जयपाल यादव, संजय ढींगा नवन ढींगा और अपरा ढींगा बागपत उत्तर प्रदेश से, भोजपुर तागा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार मोहम्मद जावेद और राहत अली, केसरजी डावेराव डॉक्टर रसिका डावेराव और डॉक्टर कुस्तुब डावेराव इधर अकोट से। आइए दोस्तों आप सुनते हैं एक और कृष्ण भक्ति मामा बनी ये नगमा, फिल्म है मुगले आजम, नगमानिगार शकील बदायूनी तर्ज बनाई है, नौशाद ने आवाज लता मंगेशकर की, इंतजार आप दोस्तों को इस नगमे का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, और कालका से सुभाष चंद्र बजाज साहिल बजाज और बिटा बजाज, पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन, नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे रामाताई डोंगर दिवे और दीक्षा डोंगर दिवे, पलसी बुजुर्ग से विजय शोगेकार गुरुजी जयश्री शोगेकार और ऋषिकेश शोगेकार, भोला कॉलोनी गोंडा जिला करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार जयजान कांता रानी और गुंजन, भाटापाड़ा से बचकमल डॉ वसंत वीरगो मोतीलाल यादव, और पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत की सुत्तासु, पुराना तालाब डूंगा से वलूल अंसारी आसमान आज अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी भी सुनना चाहते हैं इस नगमे को, और मान्यवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर सुशीला भटकर और अंकिता अंकित भटकर, हेमंत कुमार भारशंकर श्रीमती प्रिया भारशंकर मास्टर उमी भारशंकर बलारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से, और खेल बाजार पानी पश्चिम नरेश मल्होत्रा नीटू लाडो कोल मल्होत्रा और पापाजी नानंद चंद मल्होत्रा, आपकी फरमाइश आपकी नजर।

आइए साथियों सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा यह नगमा, जिसकी तर्ज बनाई है हेमंत कुमार ने फिल्म मिस मैरी से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, पसंद आप दोस्तों की। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनिजा, बिमला अनिजा, किशोर नगर अमरावती महाराष्ट्र से हीरामन शिंदे, श्रीमती शीला देवी शिंदे और सिद्धार्थ गोदानी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, बगबड़वा पथरिया से नेताम और कुसुम नेताम और जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, आप हैं बागपत से। पहला जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलक्षणा भगत का ईमेल हमें मिला और इसी नगमे को पसंद करते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टीनू नायक, चौटाला हरियाणा से दादा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा, और महनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहंकराई, श्रीमती सरिता गोहंकर और अर्जुन गोहंकर दुग्गू, देवी भाटापारा से क्यार साहू, आकाश और कमलेश का ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए, और एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और निखिल कांगड़ा, लक्ष्मीपुर से रामजी साहू और अकोला महाराष्ट्र से गजानन कुम्हार, पद्मावती कुम्हार और मधुरा, मंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और राजावत कम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधुर राजावत और सुरक्षित। वार्ड नंबर एक पोपाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगांकर, दिशांत कुमार सिंगांकर और अर्पिता, साईनगर अरबी महाराज से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका कालपांडे, और किश्ता बुजुर्ग अमरावती महाराज से प्रवीण हागोने, निकिता हागोने और कुमारी प्रियाली हागोने, तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा का ईमेल हमें मिला, और मंसूरी रेडियो लिसनर

प्रियंका पंचोली और संप्रीत पंचोलिया सुनना चाहते इस नगमे को। नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज तल जहानाज और फुरा जहानाज कृपया मदन झा मानव मैं का ईमेल पता है ये 27 निर्मल अपार्टमेंट नरोली फाटक विराट वापी गुजरात और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और कुलदीप सिंह होरा। सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन पूनम सेन और दीपक सेन और ये है इरशाद अहमद शाह अशफाक अपनी जगह का नाम नहीं लिखा दोस्त और फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा अफसरी मोगा और अहमद मोगा। स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नगली डेरी नजफगढ़ से नकली कुमारी लड्डू कुमारी और टुक टुक और गांव डागर नूनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जयवीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर और गुरप्रीत सिंह। अच्छा मौसम आशिकाना ये फिल्म का नगमा मोहम्मद इश्रम से रजा मोहम्मद अर्शी आप हैं जेनियो नई दिल्ली से तो आपका नाम शामिल प्रोग्राम हुआ नगमे का इंतजार करें। झज्जर हरियाणा से बीटू भाटिया रीटा भाटिया और जित भाटिया मोहाली महाराज से अनु कुमार और उद्धव पाटिल राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार की ये पसंद और सुनना चाहते हैं इस नगमे को रजाक मोहम्मद इमरान खान और इरफान खान हनुमानगढ़ राजस्थान से।

पीछे थारे ना ना ना पीछे थारे ना जाओ शाम पैया परू पीछे थारे ना जाओ शाम पैया परू।

में राहत और बचाव की कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्योहार मजहबी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम का 3 रोजा इजलास नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स रुकन ममालिक और शराकतदार मुल्कों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सरबराहान और सीनियर अदालती हुक्काम शरीक हैं। फोरम के तहत भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान समेत कई मुल्कों के अदालती वफूद के सरबराहान के साथ दोतरफा मीटिंगें की। इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी हुकूमत के इटली की तारीख में सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा मेलोनी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत और इटली बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे और भारत मशरिकी वस्ती यूरोपी इक्तिसादी कॉरिडोर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहतरमा मेलोनी का ये रद्द अमल वजीर आजम मोदी की जानिब से उन्हें इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि ये कामयाबी इतालवी आवाम के उनकी क्यादत पर एतमाद और भरोसे को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मेलोनी की दोस्ती ने भारत और इटली के दरमियान खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने में भी अहम रोल अदा किया है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ बहरी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल फरवरी में समंदर और बंदरगाहों के शोबे से वाबस्ता बेल्जियम के एक आला सतही वफद को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबे में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो आज भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती समझौते पर मुंबई में मुनक्किदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वीवर से मुलाकात की और शहरी हवाबाजी के शोबे में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने रास्त फिजाई कनेक्टिविटी, आला कदर वाले फार्मास्यूटिकल शोबे के लिए फजाई कार्गो और एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जैसे शोबों में इश्तराक पर भी बातचीत की। वजारत खारजा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाली हुकूमत के करीबी राबते में है और भारत इस बारे में नेपाली हुकाम की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जमान ने मजीद कहा कि वजारत खारजा बचाए गए भारतीय शहरियों के नाम लगातार जारी कर रही है। जनाब जायसवाल ने बताया कि 1907 भारतीय शहरी बाहिफाजत नेपाल से चीन पहुंच गए हैं। जनाब जायसवाल के मुताबिक चीन के तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते में कोई भारतीय सयाह फंसा हुआ नहीं है। सैलाब से मुतासिरा नेपाल को भारत की इमदाद के बारे में बोलते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक नेपाल की हुकूमत को इमदाद फराहम करता रहेगा। नेपाल के वजीर खारजा के बयान पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली सभी के लिए चैलेंज है और इस बारे में कार्रवाई मुश्तरका जिम्मेदारियों और मुतालिका सलाहियतों के नजरिए पर मबनी होनी चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर के यूक्रेन दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जमान ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने कीव का दौरा किया और यूक्रेन के अपने हममनसब आंद्री सियाबीहा को और सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वजीर खारजा ने लगातार भारत के इस मौकफ को दोहराया कि ये जंग का दौर नहीं है और मैदान जंग से मसले का हल नहीं निकलेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1282 हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें चितवन में हुई हैं, जहां 359 अफराद की मौत हो गई जबकि मशरकी नवल

0: वाराणसी जिले में 218 अमवात हुई हैं। इस दौरान मजीद दो अफराद की मौत काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान हो गई। भारत ने सैलाब से मुतासर इलाकों में जारी इमदादी और बचाव कार्रवाईयों में मदद के लिए नेपाल को मजीद दो तैयारों के जरिए इमदादी सामान भेजा है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों C-130 तैयारे मजमुई तौर पर 21.5 टन इमदादी सामान लेकर काठमांडू पहुंच गए हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल तश्वीशनाक बनी हुई है। तमाम बड़ी नदियां जिसमें गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी में तुहियानी है। पटना, भोजपुर, भागलपुर और मगरबी चंपारण समेत शुमाल वस्ती और जुनूबी बिहार के 16 जिले सैलाब की जद में हैं। साहिली और नशेबी इलाकों में सैलाब का पानी दाखिल होने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुतासिरा इलाकों में कुदरती आफात से निमटने की अथॉरिटी की जानिब से जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। किसी भी नागुहानी सूरतहाल से निमटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमें तैनात की गई हैं। मुतासिरा खानदानों में राशन भी तकसीम किया जा रहा है, जबकि महकमे सेहत की टीमें मुतासिरा इलाकों में सरगर्म हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलोचिस्तान की ज़ियारत और सुराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेस पर हुए दो हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी अहलकार मारे गए और दीगर कई जख्मी हुए। अपने बयान में BLA ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने ज़ियारत क्रॉस पर फौजी काफिले की 4 गाड़ियों को निशाना बनाया। वहीं इसके स्पेशल ऑपरेशन के अमले ने सुराब के हाजिका में धमाका खेज अशिया से भरी गाड़ी के जरिए हमले की कार्रवाई अंजाम दी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल मशरकी राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन के दौरान शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कृष्ण से जुड़ी मिठाइयां और खाने पीने की दूसरी चीजें भी भगवान कृष्ण को पेश की जाती हैं। इस मौके पर दिन भर और देर रात तक मजहबी गीत बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की मर्दों की डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने डेनमार्क के किम आस्ट्रप और एंडर्स स्कारप रामुजेन को 21-13, 16-21 और 21-18 से हराकर मुसलसल चौथी मर्तबा चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला आज शाम शेंजन में हुआ। इससे कबल भारतीय जोड़ी ने गुजश्ता शब फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और किस्टो पोपोव को 21-17, 22-24 और 21-19 से हराकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की थी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वजारत खारजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है और बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: डीडी वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम अपने तमाम सामईन का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। पेश है प्रोग्राम तामिल इरशाद के बाकी नगमे।

बिल्कुल, दिल्ली का मौसम तो आशिकाना हो ही चुका है। नगमत है फिल्म पाकिजा से आवाज लता मंगेशकर की, नगमा निगार कमाल अमरोही और तर्ज बनाए थे गुलाम मोहम्मद ने। पसंद किया था आप दोस्तों ने। ये फरमाइश आई थी दरअसल जेएनयू नई दिल्ली से मोहम्मद अरशद होनी चाहिए अरशद और मोहम्मद शम्स रजा की जानिब से। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से नाजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी, मोहम्मद कलीम जख्मी। फुलौन निजामाबाद तेलंगाना से ए मोहित रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी। बदलापुर मुंबई से परिता गांवकर, सिद्धांत गांवकर, लाडला टुकटुक गांवकर। और कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल,

दोस्तों आप सुनते हैं हकीकत फिल्म का ये नगमा। मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा निगार है, कैफी आजमी तर्ज बना यह खयाम ने, पसंद किया आप दोस्तों ने। वह है आनंदराज सागर तरुलता सागर चमखेड़ा अहमदाबाद से आपने ईमेल किया। पुरानी भिलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और जवानगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी, बांदा उत्तर प्रदेश से फहीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी और मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन, श्याम जैन और मास्टर जीवम जैन, और खंडवा से मोहम्मद हसनैन, हसुबाबा और सफिया अरहान खोकर, जयराज प्लॉट से ये मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट, जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डी क्रिस्टो, रोजी डी क्रिस्टो, विलियस डी क्रिस्टो। तो सुनिए सामने अपनी पसंद का ये हकीकत फिल्म का नगमा, और इस नगमे के साथ ही आज का टाइम निशा प्रोग्राम खत्म करने की अपने मेजबान मोहम्मद इमरान को दीजिए इजाजत।

0: जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो वहां से हम लॉन्च कर सकते हैं। अगर आज देखें तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की भी बहुत जरूरी है, और वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी इसरो ने डेवलप की थी वो इंडस्ट्री को ट्रांसफर हो गई है। इसी तरह से हमारे जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को दे दी गई है। अभी ये इस साल में ही विक्रम 1 जो स्काई रूट दी गई है, इंडस्ट्री ने बताया था, वो सफलतापूर्वक कक्षा में उसने सैटेलाइट छोड़े हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है, और मुझे खतरी है कि ऐसे काम करने वाले जो और भी दो वो आगे जाकर इस तरीके का काम कर सकेगा, और इसरो जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए इस सब लोगों की मदद होगी।
1: जी प्रमोद जी, सरकार ने निजी कंपनियों को अनुमति दी है और अंतरिक्ष क्षेत्र नियामक संस्था तथा अंतरिक्ष विभाग की जो कमर्शियल भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में सरकार ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है कि जिससे कि सभी को इस क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हो, और ऐसे समय में जब लगातार हम इसमें निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, लगभग मार्च 2026 तक $618 मिलियन का निवेश इसमें हुआ निजी क्षेत्र से, ये सफलता आपको कैसी लगती है?
0: ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इतने सब लोगों ने और इतने से पैसे खर्च करके वो आगे जा रहे हैं। इसको सफल होने के लिए उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया है इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, नई पॉलिसीज बनाई है, और ये पॉलिसी का जो उपयोग करके जो कुछ आगे करना होगा तो इसके लिए हमारे जो एजुकेशनल क्षेत्र है, जो यूनिवर्सिटीज है, वहां भी इस तरीके का काम और होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हमें ये सब काम करने के लिए लोगों की भी बहुत जरूरी पड़ेगी, और इंजीनियर और बाकी सब लोगों की।
1: प्रमोद जी, विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है। जनवरी 2026 तक ऐसे प्रक्षेपणों की संख्या लगभग 400 तक पहुंच चुकी है, और हमारे लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी एक तरह से रहती है। तो ये जो हमारी कम लागत में अधिक प्रक्षेपण करने की संख्या है, हमारी तकनीक है, आधारभूत ढांचा है, ये हमारी क्षमताओं को किस तरह से प्रदर्शित करता है वैश्विक स्तर पर?
0: 2025 को मेरे ख्याल से दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक सबसे भारी, सबसे वजनदार ऐसा एक अमेरिकन उपग्रह हमने यहाँ से लॉन्च किया था MM-3 का उपयोग करके, उसी तरह यह निसार जो सैटेलाइट है उसका भी लॉन्च किया है। मुझे खतरी है कि इस तरीके के काम हम जो अगर और भी कर सके तो बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और
1: प्रमोद जी, चंद्रयान की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1 से चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज और चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 4 में चंद्रमा से नमूने लाने की योजना भी बनाई गई है, ये जो भारत के बढ़ते हुए कदम है ये आपको कहां तक पहुंचते हुए दिखाई देने कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में कहां तक अपने कदम रखेगा, किस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे?
0: उम्मीद है कि ये जो चंद्रयान 4 का जो कार्य है वो बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाएगा, और चंद्रमा के जो ऊपर के जो नमूने है वो लेके आएंगे। इसी तरह हम आगे जाकर गगनयान भी जो प्रक्षेपण होगा जिसमें क्रू नहीं होगा मगर वो 2027 भी हो जाएगा, और उसके बाद जो गगनयान अच्छी तरह से चले तो उसके बाद जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी अच्छी तरह से काम कर सकेगा आगे जाकर, और ऐसा जो अंतरिक्ष स्टेशन जब हम बना सकेंगे तो उसके लिए ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो सबका सहभाग होना चाहिए।
1: गगनयान कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका कुल परिव्यय बढ़ाकर 20,193 करोड़ रूपये किया गया है, और पहला मानव रहित परीक्षण अभियान 2026 की चौथी तिमाही और मानव युक्त अभियान 2027 तक लक्षित है। तो ये हमारे लिए उड़ान के दो महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि तय समय सीमा में काम करना और सुरक्षा मानकों के साथ में काम करना। तो सरकार की इस व्यापकता यानी कि सरकार की ये जो उपलब्धियां हैं, सरकार जिस तरह से इस दिशा में काम कर रही है, तो गगनयान अभियान हमें कहां तक पहुंचाएगा, क्या सफलता हमारे लिए इसकी मायने रखती है?
0: गगनयान जो ऐसा है कि कोई भी आज बच्चे के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है। क्यों बनना है? तो उसको देखना है कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। सिर्फ इतना नहीं मगर ये जो काम हम कर सके तो आगे जाकर इसका उपयोग हम मेडिसिन के लिए, वहां कुछ सामग्री बनाने के लिए भी कर सकते हैं, तो जैसे कि जीरो ग्रेविटी में जाकर किस तरीके से हम कोई भी मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि गगनयान जैसा प्रयोग हम करें और आगे जाकर जितने बच्चे हैं उनके सबके जो सपने होंगे वो हम पूरे कर सकेंगे।
1: स्पेडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेडेक्स के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में स्वचालित डॉकिंग की अनडॉकिंग की क्षमता प्रदर्शित की है, जो चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या भारत अब अंतरिक्ष में उपग्रहों की मरम्मत, ईंधन भरने, नमूने स्थानांतरित करने और अंतरिक्ष यात्रियों के स्थानांतरण जैसी जटिल गतिविधियों की तकनीक विकसित करने की स्थिति में है? इन तकनीकों को

0: में भारत के द्वारा दूसरे देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है?
1: कर सकते हैं, मगर इसके लिए ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि जैसे कि आज हमारा एक उपग्रह है ऊपर, उसको जाके मिलकर उसमें ईंधन भरना है, तो ये दोनों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जो एक प्रोटोकॉल होता है, उसी प्रोटोकॉल से हम आगे जा सकते हैं। और ऐसे प्रोटोकॉल बाकी सब देशों के साथ भी जो हो सके, तो एक दूसरे को किसी का भी जो उपग्रह हो उसको जाके हम डॉक कर सके और जो अगर ईंधन भरना है तो भर सकेंगे। इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके लिए बाकी की और भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होने चाहिए कि जैसे उनके उपग्रह उसका एक्सेस मिलना चाहिए, तो इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए और भी हमें करार करने पड़ेंगे और आगे जाकर हमें काम करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। अब प्रमोद जी, मंगलयान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे निर्धारित 6 महीने के कार्यकाल के मुकाबले 8 वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाला यान था, जबकि आदित्य L1 और एक्सपोसेट ने सूर्य तथा दूरस्थ खगोलीय पिंडों के अध्ययन में भारत की क्षमताएं बढ़ा दी हैं। तो गहरे अंतरिक्ष अभियान में इस तरह की जो हमारी व्यवस्था की जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो तकनीकी रूप से काफी ये जटिल होते हैं, तो इस तरह के अभियानों को प्राथमिकता देना हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह की दिशा तय करेगा? खासतौर पर अगर एजुकेशन की फील्ड से हम बात करते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगी?
1: एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, ये दोनों के लिए बात की आपने, उसकी बहुत जरूरत है कि आगे जाकर जो हमें देखना है कि मार्स पे जीवित व्यवस्था थी कि नहीं, क्यों वो चली गई, वीनस में क्या हो रहा है, तो ये सब के लिए उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए एजुकेशनल फील्ड रिसर्च करने वाले जो है उनको ये संसाधन हम दे सकते हैं, जैसे आपने कहा कि मंगलयान है, आदित्य है, एक्सपोसेट है, तो हम देखते हैं कि हबल टेलीस्कोप ने कैसा काम किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैसा काम किया, अभी जो नया जो है ग्रीस रोमन टेलीस्कोप है, तो इन सबका उपयोग करके बाकी के देशों से जिस तरीके से काम हो रहा है उसी तरह हम अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट है, अपने यहाँ के इंजीनियर से, उनके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं।
0: प्रमोद जी, अभी हाल फिलहाल की देखें कि बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटी हैं, तो ऐसे में ये समझना और जानना बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि पृथ्वी का अवलोकन और बेहतर तरीके से हो ताकि हम अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकें। तो पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लगभग 1200 करोड़ रुपए के निजी निवेश प्रतिबद्धता के साथ पहला निजी स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह विकसित किया जा रहा है। तो ये जो भागीदारी की जा रही है इसमें मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन, संचार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, तो कैसे ये सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगी?
1: आज का जो उपग्रह छोड़ा है उसे हम देखते हैं तो जो इतना जो रेजोल्यूशन मिल जाए कि कोई 50 मीटर का रेजोल्यूशन होगा और हम पूरी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। आज हम अपने जो मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है, इनसैट सैटेलाइट के जो है, वहां से हम देख सकते हैं आज के मौसम क्या है, किस तरीके पूर्ण होने वाला है। अगर हम जो पूरी तरह से निगरानी कर सके तो हमें अभी तो पता चलता है कि कहाँ कुछ हो गया है, मगर वो हो जाने के पहले उसके जो कुछ संकेत हम मिला सके तो उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हो जा सकता।
0: प्रमोद जी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारे पास श्रीहरिकोटा और तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में प्रक्षेपण स्थल है, तो इनसे क्या छोटे उपग्रहों और निजी क्षेत्र के प्रक्षेपणों को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे देश जो अपने यहाँ के बजाय हमारे यहाँ से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करना चाहते हैं उनके लिए कितनी सुविधा होगी इससे?
1: एक तो श्रीहरिकोटा आइलैंड, वहां से हम जो ये बड़े लॉन्च व्हीकल लॉन्च करते हैं, PSLV है, GSLV है, LVM3 है, और वहां से अगर जो हम आगे जाकर गगनयान को भी लॉन्च करना है तो वो उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और वहां का काम बढ़ जाएगा। और इसी के दौरान में जो कोई छोटा उपग्रह होता है तो उसको हम दूसरे लॉन्च व्हीकल जो प्रक्षेपण क्षेत्र है वहां से लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसा ही ख्याल आता है कि दोनों जगह से हम आगे जाकर और भी ज्यादा उपग्रह छोड़ सकते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इसरो ने बनाया था, इसी तरीके की जो विक्रम 1 जो ये लोगों ने बनाया है, ये Skyroot 1, वो हम वहां से पूरी तरह से लॉन्च कर सकते हैं।
0: प्रमोद जी, भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने और उससे पहले हिस्से को 2028 तक अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखता है, तो इतने बड़े अंतरिक्ष ढांचे का निर्माण, रखरखाव, अंतरिक्ष यात्रियों के आवागमन, लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के लिए भारत व्यवस्था किस तरह से आपको समझ में आती है आज के समय में?
1: सबसे महत्वपूर्ण उसका जो प्रोपेलेंट के लिए जो ईंधन लगता है ये हम यहाँ ही बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। एक 90 से 95% तक का काम हम स्वदेशी पूरी तरह से कर सकते हैं। मुझे पूरी खात्री है कि इसी तरीके से हम आगे जाकर और भी काम कर सकेंगे। मैंने अभी पहले

0: एग्रीकल्चर, ताकि कुछ बात ऐसी होती कि जिसे टाइम सर करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्ट करना लगता है। वो अच्छी तरह हो सकता है कि अगर जो हम उनके उपग्रह से लॉन्च करते हैं तो वो हमें फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, इसी तरह हमें भी कुछ बाहर से खरीदना पड़ सकता है। ये तो पूरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो गई।
1: प्रमोद काले जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
1: सामिन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। वक्त हो चुका है कवालियों का, तो लीजिए सुनिए राजा बाबू कवाल और हमनवा से कवालियां।

0: सामीन अभी आप राजा बाबू कौल और साथियों से कवालियां सुन रहे थे। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12 बज चुके हैं। वक्त होता है आलमी खबरों के बुलेटिन का।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप तनवीर से आलमी खबरें सुनिए। पहले खबरों की सुर्खियां। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खोज किया जा रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। वजारत खारजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है, ताहम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के जियारत और सुराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेस पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मुल्कभर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम का 3 रोजा इजलास नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में ब्रिक्स रुकन ममालिक के और शराकतदार मुल्कों के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के सरबराहान और सीनियर अदालती हुक्काम शरीक हैं। फोरम के तहत भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कल रूस, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूबी अफ्रीका, ईरान और उज़्बेकिस्तान समेत कई मुल्कों के अदालती वफूद के सरबराहान के साथ 2 तरफा मीटिंगें की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे।

यूनिवर्सिटी का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क के आला तालीमी इदारों में एक मुमताज नाम है और कॉमर्स मुआशियात और मैनेजमेंट के शोबों में तालीम और तहकीक का एक अहम मरकज है। इस कॉलेज की सरसाला तकरीबात यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, इसलिए यह मौका मजीद अहमियत का हामिल है क्योंकि इस दिन मुल्क आने वाली नस्लों की सलाहियत साजी और मुआशरे की बुनियादों को मजबूत बनाने में असातिज़ा और माहिरीन तालीम के रोल को खराज तहसीन पेश करता है। बेल्जियम के वजीर आजम बार्ट डी वीवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ बहरी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगले साल फरवरी में समंदर और बंदरगाहों के शोबे में वाबस्ता बेल्जियम के एक आला सतही वफद को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबे में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो कल भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती समझौते पर मुंबई में मुनक़िदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी हुकूमत के इटली की तारीख में सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा मेलोनी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत और इटली बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे और भारत मशरिकी वस्ता यूरोपी इकतसादी कॉरिडोर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहतरमा मेलोनी का यह रद्द अमल वजीर आजम मोदी की जानिब से उन्हें इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि यह कामयाबी इतालवी आवाम के उनकी कयादत पर एतमाद और भरोसे को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा मेलोनी की दोस्ती ने भारत और इटली के दरमियान खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने में भी अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम ने दोनों ममालिक के आवाम की खातिर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए करीबी ताउन जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की और आने वाले बरसों में मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी की मुसलसल कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने सैटेलाइट EOS 05 के साथ खलाई रॉकेट F-17 GSLV को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। खलाई तहकीक के भारतीय तंजीम इसरो ने कल सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से GSLV F-17 रॉकेट के जरिए EOS 05 अर्जियाती मुशाहदाती सैटेलाइट को कामयाबी से लॉन्च किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की अर्जियाती मुशाहदे की सलाहियतों को मजीद मजबूत करेगा और अर्जियाती मुशाहदे की खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाली हुकूमत के करीबी राबते में है और भारत इस बारे में नेपाली हुक्काम की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जमान ने मजीद कहा कि वजारत खारजा बचाए गए भारतीय शहरियों के नाम लगातार जारी कर रही है। जनाब जायसवाल ने बताया कि 1907 भारतीय शहरी बाहिफाजत नेपाल से चीन पहुंच गए हैं। जनाब जायसवाल के मुताबिक चीन के तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते में कोई भारतीय सयाह फंसा हुआ नहीं है। सैलाब से मुतासर नेपाल को भारत की इमदाद के बारे में बोलते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक नेपाल की हुकूमत को इमदाद फराहम करता रहेगा। नेपाल के वजीर खारजा के बयान पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली सभी के लिए चैलेंज है और इस बारे में कार्रवाई मुश्तरका जिम्मेदारियों और मुतल्लिका सलाहियतों के नजरिए पर मबनी होनी चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर के यूक्रेन दौरे से मुतल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जमान ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने कीव का दौरा किया और यूक्रेन के अपने हमनसब एंड्री साइबिया और सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वजीर खारजा ने लगातार भारत के इस मौकफ को दोहराया कि यह जंग का दौर नहीं है और मैदान जंग से मसले का हल नहीं निकलेगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आए तबाहकुन सैलाब से हलाकतों
की तादाद बढ़कर 1282 हो

0: हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें चितवन में हुई है, जहां 359 अफराद की मौत हो गई, जबकि मशरकी नवलपरासी जिले में 218 अमवात हुई हैं। इस दौरान मजीद 2 अफराद की मौत काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान हो गई। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के ज़ियारत और सुराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेस पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी अहलकार मारे गए और दीगर कई जख्मी हो गए। अपने बयान में BLA ने कहा कि उसके लड़ाकों ने ज़ियारत क्रॉस पर फौजी काफिले की 4 गाड़ियों को निशाना बनाया, वहीं उसके अस्पताल स्पेशल ऑपरेशन के अमले ने सुराब के हाजिका में धमाका खेज अशिया से भरी गाड़ी के जरिए हमले की कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें 7 अहलकारों की मौत हो गई। BLA की मीडिया शाख ने ज़ियारत हमले के बाद की सूरत हाल पर वीडियो फुटेज भी जारी किया है। BLA के ये दावे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पूरे बलोचिस्तान में बलोच मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से हमलों में फिलहाल इजाफा हो गया है। BLA ने मजीद कहा कि इसने गुज़श्ता महीने 36 कार्रवाइयां अंजाम दी, जिसमें 33 पाकिस्तानी अहल कारों की मौत हो गई। BLA ने बलूचिस्तान की कौमी आजादी तक अपनी मुहिम जारी रखने का अज़्म किया है। भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कृष्ण से जुड़ी मिठाइयां और खाने पीने की दूसरी चीजें भी भगवान कृष्ण को पेश की जाती हैं। इस मौके पर दिन भर और देर रात तक मजहबी गीत बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की मर्दों की डबल्स की जोड़ी सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने डेनमार्क के किम आस्ट्रप और एंडर्स स्कारप रामोजेन को 21-13, 16-21 और 21-18 से हराकर मुसलसल 4थी मर्तबा चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला कल शाम शेंजन में हुआ। इससे कबल भारतीय जोड़ी ने गुजश्ता शब फ्रांस के टोमा जूनियर पोपो और क्रिस्टो पोपो को हराकर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की थी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खौज किया जा रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के ज़ियारत और सुराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेस पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की और मुल्क भर में जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। क्लास की मौसीकी के बज़्म में लीजिए सामने नब सुनिए उस्ताद अल्लाह रखा और फजल कुरैशी से तबले पर बजाया हुआ राग 3 ताल। इसके बाद आप सुनेंगे उस्ताद अल्लाह रखा का तबले पर बजाया हुआ राग 8 ताल।

हेलो दोस्तों, सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म अनोखी अदा से नगमा, जिसकी तर्ज बनाई है नौशाद ने, बोल हैं शकील बदायूनी के।

0: भेजने की तैयारी की जा रही है। इस शोबेस में ठोस कार्रवाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती समझौते पर मुंबई में मुनक़िदा भारत बेल्जियम आला सतही मुजाकरात से खिताब कर रहे थे। इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी हुकूमत के इटली की तारीख में सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली हुकूमत बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी। एक्स पर एक पोस्ट में मोहतरमा मेलोनी ने एतमाद जाहिर किया कि भारत और इटली बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे और भारत मशरिकी वस्ता यूरोपी इक्तिसादी कॉरिडोर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मोहतरमा मेलोनी का यह रद्देअमल वजीर आजम मोदी की जानिब से उन्हें इटली की दूसरी जंग अजीम के बाद की तारीख में सबसे ज्यादा अरसे तक मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाली वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने के बाद सामने आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम मोदी ने कहा है कि ये कामयाबी इतालवी आवाम के उनकी क्यादत पर एतमाद और भरोसे को उजागर करती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सैटेलाइट ईओएस 05 के साथ खलाई रॉकेट F-17 GSLV को कामयाबी के साथ छोड़े जाने की सताइश की है। खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने कल सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के जरिए ईओएस 05 अर्जियाती मुशाहिदी सैटेलाइट को कामयाबी से लॉन्च किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि ये मिशन भारत की अर्जियाती मुशाहिदे की सलाहियतों को मजीद मजबूत करेगा और अर्जियाती मुशाहिदे की खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए अचानक सैलाब के बाद से अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाली हुकूमत के करीबी राब्ते में है और भारत इस बारे में नेपाली हुक्काम की कोशिशों को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जमान ने मजीद कहा कि वजारत खारजा बचाए गए भारतीय शहरियों के नाम लगातार जारी कर रही है। जनाब जायसवाल ने बताया कि 1907 भारतीय शहरी बाहिफाजत नेपाल से चीन पहुंच गए हैं। जनाब जायसवाल के मुताबिक चीन के तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते में कोई भारतीय सयाह फंसा हुआ नहीं है। सैलाब से मुतासिरा नेपाल को भारत की इमदाद के बारे में बोलते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक नेपाल की हुकूमत को इमदाद फराहम करता रहेगा। नेपाल के वजीर खारजा के बयान पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली सभी के लिए चैलेंज है और इस बारे में कार्रवाई मुश्तरका जिम्मेदारियों और मुतालिका सलाहियतों के नजरिए पर मबनी होनी चाहिए। वजीर खारजा डॉ जयशंकर के यूक्रेन दौरे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जमान ने कहा कि डॉ जयशंकर ने कीव का दौरा किया और यूक्रेन के अपने हममनसब एंद्री साइबिहा और सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। बातचीत के दौरान वजीर खारजा ने लगातार भारत के इस मौकफ को दोहराया है कि यह जंग का दौर नहीं है और मैदान जंग से मसले का हल नहीं निकलेगा। नेपाल और तिब्बत में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1282 हो गई है। नेपाल पुलिस के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें चितवन में हुई हैं, जहां 359 अफराद की मौत हो गई, जबकि मशरकी नवलपरासी जिले में 218 अमवात हुई है। इस दौरान मजीद 2 अफराद की मौत काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान हो गई। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के ज़ियारत और सुराब जिलों में पाकिस्तानी हिफाजती फोर्सेस पर हुए 2 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हमलों में 25 फौजी अहलकार मारे गए और दीगर कई जख्मी हो गए। अपने बयान में BLA ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने ज़ियारत क्रॉस पर फौजी काफले की 4 गाड़ियों को निशाना बनाया। वहीं उसके स्पेशल ऑपरेशन के अमले ने सुराब के हाजिका में धमाका खेज अशिया से भरी गाड़ी के जरिए हमले की कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें 7 अहलकारों की मौत हो गई। BLA की मीडिया शाख ने ज़ियारत हमले के बाद की सूरत हाल पर वीडियो फुटेज भी जारी किया है। BLA के ये दावे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पूरे बलोचिस्तान में बलोच मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से हमलों में फिलहाल इजाफा हो गया है। BLA ने मजीद कहा कि उसने गुज़श्ता महीने 36 कार्रवाइयां अंजाम दी हैं, जिसमें 33 पाकिस्तानी अहलकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। गेले ने बलूचिस्तान की कौमी आजादी तक अपनी मुहिम जारी रखने का अज़्म किया है। भगवान कृष्ण की यौम पैदाइश जन्माष्टमी मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जन्माष्टमी के दिन अकीदतमंद व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं। कृष्ण से जुड़ी मिठाइयां और खाने पीने की दूसरी चीजें भी भगवान कृष्ण को पेश की जाती हैं। इस मौके पर दिन भर और देर रात तक मजहबी गीत बजाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की मर्दों की डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने डेनमार्क के किम आस्ट्रप और एंडर्स रामुजेन को 21-13, 16-21 और 21-18 से हराकर मुसलसल चौथी मर्तबा चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह मुकाबला आज कल शाम शेंजन में हुआ था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का 3 रोजा फोरम नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खोज किया जा रहा है। इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया है। वजारत खारजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के मर्दों डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, सबका एक बजा चाहता है। अब उर्दू सर्विस की आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरात इख्तिताम पज़ीर होती है। सुबह 9:30 पर हम अपनी पहली मजलिस की नशरात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 1:10 और पूरे हो गए 10 सेकंड। श्रोताओं, ये वक्त है हमारे कार्यक्रम गीत सुनहरे का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ब्रिक्स देशों के प्रमुख मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विजय मेहरा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने नीदरलैंड में भारत के राजदूत कुमार तुहिन के साथ

0: वो सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना, सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी, मेरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 3 बजने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। ये कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 स्कूली शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से 12 शिक्षक और संकाय सदस्य, 5 राज्य विश्वविद्यालयों के 3 सरकारी और 2 निजी कॉलेज और 4 पॉलिटेक्निक के 2 सरकारी और 2 निजी विश्वविद्यालयों को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी

0: भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गोवा के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह रविवार सुबह गृह मंत्रालय के अलग अलग विभागों में गोवा से जुड़े मामलों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रविवार दोपहर को नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। शाम को श्री शाह अटल भवन में बीजेपी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी जोन परिषद की बैठक और गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल वार्सो में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नवरो की मुलाकात की और भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी की सकारात्मक दिशा पर चर्चा की। उन्होंने भारत पोलैंड संसदीय समूह के सदस्यों से मुलाकात की और मौजूदा भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने संयुक्त कार्य योजना 2024-28 की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 9 और 10 तारीख को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के विषयों के पेपर में गलतियां की शिकायत के बाद दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वी राज्यों बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बिजली चमकने और तूफान आने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by a killer. The 3-day BRICS Chief Justices Foreigners begin in New Delhi. The foreigners brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries. The discussions were held for strengthening of judicial cooperation among countries, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes, and best legal practices of different countries. Prime Minister Narendra Modi will participate in centenary celebrations at Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The centenary celebrations coincide with Teachers' Day, making the occasion particularly significant as the nation honours the contribution of teachers and educators in shaping generations and strengthening the foundations of society. President Draupadi Murmu will today confer National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The 48 selected school teachers are from 27 states.

0: अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित ये प्रोग्राम। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तालावाद्य कचेरी। येल्ला वेंकटेश्वरा कलाकार है, राग है तालमादी।

Gamma,

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आपने सुना ताला वाद्य कचेरी और येल्ला वेंकटेश्वरा को राग आदि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 सितंबर 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पे आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम में आज का विषय है योग, तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास परीक्षा। इसके बाद 5:20 पर प्रसारित करेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। 6:00 हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनिए। 6:40 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे चिंतन डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के विचारों पर। 6:45 पर रामचरित मानस का समय रहेगा, इसमें आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड। 6:55 पर संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी समाचारों का समय रहेगा और 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे लक्ष्मी मधुसूदन के गाए कुछ भजन। गीतों भरे गुड मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। 8:00 का समय रहेगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुनिए इंग्लिश न्यूज। 8:30 पर उर्दू समाचार सुनेंगे। 8:45 पर सुनिए स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम हमारी सेहत। 9:15 पर कार्यक्रम रहेगा धरती आकाश। 9:30 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक वार्ता अध्यापक राष्ट्र के निर्माता। 10:00 का समय हिंदी समाचार का और 10:05 पर आप सुनेंगे इंग्लिश न्यूज। 10:10 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10। इसके बाद आपके लिए प्रसारित करेंगे 11:25 पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट। विज्ञान भवन से महिला कार्यक्रम घर आंगन का समय रहेगा 12:10 और 1:05 पर हम आपके लिए प्रसारित करेंगे इंग्लिश न्यूज। 1:10 पर कार्यक्रम सुनिए एक ही फिल्म से और आज की फिल्म है अब्दुल्ला।
1: एक अरदास पाठ कीरत की भोले राम दास राखो सरना। एक अरदास पाठ कीरत की गोरे

ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ।

तन उस जन्म नानक तुस बलिहारी।

अन्न उस जन्म नानक प्रसव बलिहारी।

के फल है ठोडी महल्ला पंजवा हार बिसरत सदा खुआरी ताको तोखा कहां ब्यापन जाका।

पीतंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे, सबको सच समावे रिक कह रहे प्रभु राम नाम देवा में सो नायले प्रास्या है नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया बिंद्रावन में कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ ना उखदाई अलहो भया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे चर पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्चार पड़े गुणे तन चार विचार भाव पद कनी सदाए तो नानक मोखंतर पाए पौड़ी सब

पौड़ी कपड़ू सुहाव न छड़ दुनिया अंदर जावना मंगा चंगा अपना पे ही किता पावना हुकम की आर पाव दे रहे पीड़े के जावना नगद जग जा लिया दिशा खराड़।

दया कृपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जनेऊ जी का हई का पांडे कहत नाय।

0: सच सू दरगह अंदर पाई है तगना तू डस्पूत महला पहला
1: तगना इंद्री तगना नारी तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवन दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना अखी बेतगाया पेवत वरता।

0: अंतर पूजा भड़कते बासन जो दुर्गा भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जय तरन दा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास शरीफ गाये तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साथ। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर। मथे टिका तेर धोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेश तान ले पूजे पुराण। पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर कसैना जाना देखे चौका कड्डी कर उपराए बैठे कूड़े आर मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असादा फिटे तन फिटे फेर करे मन जूठे चली परे कहो नानक सच त्याई।